0: में जाकर ही सेवा करें, नहीं ऐसा नहीं है। किसी की भी कोई भी मदद कर दिया आपने अपने घर में, आप और कोई ऐसा काम करने की कोशिश करना जिसमें कोई इस तरह से कोई सर्विस टू द पीपल, सेवा भाव आपके काम में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मैं ये नहीं कहता कि सेवा भाव मतलब आप ओल्ड एज होम में जाकर ही सेवा करें, नहीं ऐसा नहीं है। किसी की भी कोई भी मदद कर दिया आपने अपने घर में, आपके मेड आती है काम करने, उन्हें किसी चीज की समझ नहीं है तो आपने उसको कुछ समझा दिया, भाई देखो ऐसे करो ये ठीक रहेगा, और किसी की पैसे से मदद कर दी, किसी की कुछ सामान दे के मदद कर दी। जैसे हमारा तो जो म्यूजिक ग्रुप है तो हम तो चैरिटी के लिए गाते हैं, तो ये एक मदद हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से तो जो मेरा दैनिक जीवन है उसमें तो मैं अध्यात्म को इस तरह से फॉलो कर रहा हूँ।
1: जी मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। किसी भी तरीके की जो डेली प्रैक्टिस होती है, अभ्यास होता है, जैसा कि दोस्तों आपने सुना चांद माथुर साहब ने यहां पर बताया कि किसी की भी मदद करना, और जैसे वो तो संगीत के ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो लोगों की संगीत के मार्फत एक मदद जो करते हैं वो भी उनका एक डेली अभ्यास है, डेली आध्यात्म का एक तरीका है। देखने वाली बात यह है दोस्तों कि किसी भी तरीके को अपनाकर आध्यात्म की प्रैक्टिस की जा सकती है। मुद्दा यह है, पर्पस ये है इस कार्यक्रम का कि हम अपनी प्रैक्टिस को बताएं कि हम इस तरीके से अध्यात्म को प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सुंदर। तो
0: सर इसी के बारे में मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहता हूं।
1: प्लीज प्लीज।
0: जो मैंने प्रैक्टिस करी है और सफल भी हुआ हूं, और वो एग्जांपल ये है कि हमारे घर में जो मेड काम करने आती हैं, जनरली ये जो लेवल 4 के जो एम्प्लॉइज होते हैं ये ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते, उनमें बुरी आदतें बहुत होती है इनके पेरेंट्स में, उनमें नहीं होती है लेकिन उनके पेरेंट्स में बुरी आदतें बहुत होती हैं।
1: जी।
0: तो हमारी जो मेड आती है उसके फादर को दारू पीने की, तंबाकू खाने की बहुत आदत थी।
1: जी।
0: तो बहुत बीमार रहता था, घर पे मारपीट करता था। तो उसने मुझे बताया कि सर आप कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ बताइए दवाई। तो मैं साथ साथ होम्योपैथी की प्रैक्टिस भी करता हूँ, मैं होम्योपैथिक पढ़ता हूँ।
1: जी।
0: मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन होम्योपैथी की बुक मेरे पास है, मैं पढ़ता हूँ। तो उससे पढ़ के मैंने उसको एक मेडिसिन खरीद कर दी। मैंने कहा ये अपने फादर को देखे, देखो आप यकीन मानेंगे 3 महीने के अंदर अंदर उसके फादर बिल्कुल ठीक हो गए।
1: ओहो, क्या
0: इस तरह की मदद। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो इनको इस तरह की मदद करके हम एक तरह से आध्यात्म की ही को फॉलो करते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों ये भी कितना एक खूबसूरत रूप है आध्यात्म का जो माथुर साहब ने आज हमें बताया। बहुत सुंदर। चलिए फिर माथुर साहब की ही आवाज में इस भजन का आनंद लेते हैं और विचार करते हैं।

0: बहुत प्यारी बात, बहुत ही प्यारा भजन। माथुर साहब, जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वहां दो शब्द और आ जाते हैं, मेडिटेशन और प्रेयर, ध्यान लगाना और प्रार्थना करना। तो सर आपके हिसाब से ध्यान लगाने में, मेडिटेशन करने में और प्रार्थना करने में, प्रेयर करने में क्या अंतर है सर?
1: सर ये मेडिटेशन या ध्यान लगाना एक तरह से एक अपने अंदर जाने की एक प्रैक्टिस है। मतलब जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप बाहर की दुनिया से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है मेडिटेशन करना, इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं। और अगर आपने समझिए 10 मिनट मेडिटेशन किया है तो हो सकता है उसमें से 2 या 3 मिनट ही आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरी बाहर की दुनिया से अलग हो गए हैं, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो दिन रात होता रहता है वो दिमाग आपके ख्याल आपके दिमाग में आते ही रहते हैं, आप कितना भी अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश करें। मेरा ये अनुभव है कि वो जो ख्याल है, जो दिन भर की बातें, वो आपको परेशान करती ही रहती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रोज मेडिटेशन की, तो उसमें एक एक दो पल ऐसे आते हैं कि आपको ये लगता है कि आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, तो वो तो हो गया मेडिटेशन। अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ काफी है, क्योंकि जो संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, जब पहाड़ों पर जाकर मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो वो लोग इसीलिए अपने आप को दुनिया से अलग करके बाहर बैठ जाते हैं ताकि उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते, हम तो एक साधारण आदमी है जो दुनिया में रहते हैं। तो मेडिटेशन तो ये हो गया, और जो प्रेयर है, वो प्रेयर तो हम लोग जो रोज पूजा में करते हैं, वो एक एक्सटर्नल चीज है, एक एक्सटर्नल डायलॉग है जो हम भगवान से अपने अपने तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं, अपनी ग्रेटफुलनेस, अपनी ग्रेटिट्यूड, अपनी एक जो भी हम भगवान से मांगना चाहते हैं, जो हम निवेदन करना चाहते हैं, अपनी जो फीलिंग्स है, वो हम भगवान को प्रार्थना के रूप में हम लोग देते हैं, हम लोग अपना अर्पण करते हैं उनको, और उसके बदले में आपको आपकी जिंदगी में अच्छा भी होता है सब कुछ। और मैं ये नहीं कहता कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनका अच्छा नहीं होता, उनका भी अच्छा होता है। तो अपने अपने तरीके हैं प्रार्थना करने के, लेकिन हमारा तरीका जो है प्रार्थना करने का वो पूजा से है, मतलब फिजिकल पूजा, पूजा में बैठकर, चाहे आप 5 मिनट ही सुबह उठ के पूजा करें या दिन में करें, लेकिन करना जरूरी समझते हैं हम इसको। तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन में और प्रार्थना में ये फर्क है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं सच कहूं चांद साहब, जैसा आपने हमारी बातचीत के दौरान पहले कहा कि इस कार्यक्रम की वजह से हम अपने आप में बहुत कुछ सीखने को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब हम इन सवालों के बारे में डिस्कशन करते हैं, जवाब ढूंढते हैं, आपने बड़ी ही प्यारी बात कही, हम लोग जब बात कर रहे थे कि पहले हमें लगा करता था कि साहब अध्यात्म तो साधु संत लोगों की चीज है, हमारी तो है नहीं, लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस जरूर करते हैं, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है। तो आज जब आप मुझे बता रहे हैं कि ध्यान और प्रार्थना में क्या अंतर है, तो बिल्कुल एक नया आयाम मेरे सामने खुल रहा है, एक नई चीज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे धुंध सी थी जो अब हट रही है, जो अब कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या था और क्या हम समझे बैठे थे। भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद चांद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों विचार कीजिए, एक बड़ी ही खूबसूरत चीज, बड़ी ही सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में, इसमें कोई साधु संतों की और बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की भाषा नहीं है, ये एक नॉर्मल साधारण से इंसान की भाषा में चांद साहब ने हमें बताया है क्या फर्क है ध्यान का और प्रेयर का। चलिए इसी बात पर माथुर साहब की ही आवाज में ये प्यारा सा भजन सुन लेते हैं।

0: बहुत सुंदर। माधव साहब, क्या आप मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी अपनाने से, यानी कि मान लीजिए आपकी सारी बातें सुनकर मुझे बड़ी चीजें समझ में आ गई, मेरे दोस्तों को भी समझ में आ गई और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो क्या मुझे शांति मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी? इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है, मतलब वो बताइए।
1: सर, मेरा ये मानना है कि पिछले 3 साल से मैं प्राणायाम कर रहा हूं
0: जी।
1: और उसका एक खास कारण है, क्योंकि जब 3 साल पहले जब मुझे शिंगल्स का अटैक हुआ था तो उसमें मैंने अपने हाथ की और लेफ्ट लेग की और लेफ्ट हैंड की मोबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई थी। शिंगल्स में होता है कि ये आपकी मसल्स को और नर्व्स को अटैक करता है, मतलब उसकी पूरी जो क्षमता है आपकी नर्व्स की और मसल्स की वो पूरी चली जाती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करने से उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन मैं पता नहीं किस तरीके से मेरा एक जुड़ाव हो गया एक रेकी की जो टीचर थी, जो कोच थी, उन्होंने मुझे बताया कि आप ये शुरू कीजिए, प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया शुरू कीजिए, आपको और आराम मिलेगा। तो समझिए मैं पिछले 2 या 2.5 साल से इसको कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं अपनी बीमारी के बाद में बारे में बहुत ज्यादा टेंस रहता था, बहुत डिप्रेशन रहता था, बहुत टेंशन रहती थी दिमाग में, कह रहे मुझे क्या हो गया, ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब से मैंने स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाया है, मतलब अपने तरीके से लोगों की मदद करना और मेडिटेशन करना और प्राणायाम करना, सुदर्शन क्रिया करना, तो मेरा मेंटल स्ट्रेस बहुत कम हो गया। मुझे अब कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मैं अंदर से इंटरनली, जो कि दवाइयों से नहीं हो सकता था। और तो ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि स्पिरिचुअलिटी से डेफिनेटली आपकी मेंटल टेंशन जो है वो कम होती है, और मेरी तो हुई है। और जो सिचुएशंस जैसे जैसे आपके सामने आती हैं, उन सिचुएशंस को आपको एक्सेप्ट करना है। मतलब ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये बीमारी मुझे क्यों हुई, अब हुई तो हुई, मतलब हर एक की जिंदगी में खुशी और गम तो आते ही रहते हैं, हर एक को अपना अपने दुख सुख का हिस्सा मिल जाता है अपनी जीवन में, तो ये मुझे मिलना था तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरा फर्ज क्या है कि मैं उसका सामना कैसे करूं।
0: जी जी,
1: ये मेरे बस में है, इसको उसका सामना कैसे करूं
0: जी,
1: तो मैंने ये किया, तो मुझे तो बहुत मेंटल रिलीफ मिला इससे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों देखिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द साधु संत और जो भी हमारे महात्मा गुरु लोग हैं जो हमें तमाम तरीके के प्रवचन देते हैं, मैं उन सब की तरफ हाथ जोड़ते हुए, उनको रेस्पेक्ट पे करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो चांद माथुर साहब बता रहे हैं वो एक हमारे आपके जैसे इंसान के भाव और एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जो ये महात्मा लोग बताते हैं उसमें वो उनके विचार होते हैं जिसे हम मानते हैं, लेकिन आज माथुर साहब का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कैसे आध्यात्म ने उनकी बीमारी से, उनकी फिजिकल बीमारी से यानी कि शारीरिक बीमारी से उनको आराम पहुंचाया, दूर कर दिया, स्वस्थ बनाया। इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं सचमुच आज बहुत बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं चांद माथुर साहब कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य साबित हो रहा है, सार्थक हो रहा है आपकी इन बातों से, कि लोग समझ पाए कि कोई एक साधारण इंसान कैसे लाभान्वित होता है इन चीजों से। चलिए,
1: मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताया आपको।
0: जी जी, जी।
1: मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ आपके साथ।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है,
1: और मैंने इसीलिए बहुत सोच समझ के आपको उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कितने लोग इससे एग्री होंगे या नहीं होंगे,
0: ऐसे
1: लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है।
0: ऐसी बात नहीं है चांद साहब, देखिए आपने भी बहुत बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव इकट्ठा किया है जिंदगी में, लाखों करोड़ों लोगों से आपने भी मुलाकातें की होंगी। जो व्यक्ति सच बोल रहा होता है ना, दिल से बोल रहा होता है, वो लोगों के दिल तक जाता है। लोग चाहे ना चाहे उस व्यक्ति की आवाज में, उसके मैनरिज्म में, उसके बॉडी लैंग्वेज में समझ ही जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ तो नहीं बोल रहा, वो आवाज में सुनाई दे जाता है साहब, चिंता मत करिए। तो लोग बाग आज आपकी बात सुनकर, आपकी आवाज के टेक्सचर सुनकर, आपकी आवाज का जो भाव है ना वो सुनकर समझ पा रहे होंगे कि ये आदमी बनी बनाई बात नहीं बोल रहा, जो दिल से आ रही है वो बोल रहा है।
1: जी,
0: बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और चांद माथुर साहब का ही गाया हुआ, जी हाँ, उन्हीं की आवाज में एक प्यारा सा भजन सुन लें।

0: बहुत प्यारा भजन। माथुर साहब, अब एक और बड़ी टफ सी, बड़ी क्लिष्ट, बड़ी मुश्किल, लेकिन बड़ी ही कॉमन, बहुत ही कॉमन बात करते हैं, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन वगैरह से जुड़ी हुई
1: जी।
0: आत्मा के बारे में क्या विचार है आपका? आपको लगता है आत्मा होती है?
1: सर ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो कहीं किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन अपनी सोच मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं
0: जी।
1: मुझे लगता है कि आत्मा यानी सोल ये एक तरह का एक्सपीरियंस है और ये एक सोचने का विषय है। तो मुझे लगता है कि आत्मा जो है वो शरीर से और आपके मन से ये एक परे चीज है जिसके बारे में हम कोई नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जब मनुष्य की मौत होती है तो शरीर चला जाता है, लेकिन आत्मा जो है वो किसी और शरीर में प्रवेश कर जाती है, इतना ही हम लोग जानते हैं। मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो सुनते हैं, जो कभी किसी की मौत होती है, जब कभी आप प्रेयर मीटिंग में आप अटेंड करते हैं तो जो भी लोग प्रेयर मीटिंग में जो ज्ञानी लोग आके बोलते हैं वो यही बोलते हैं कि शरीर आपका बदलता रहता है और आपकी जो आत्मा है वो किसी दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन किसी ने आत्मा को आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो हमें भी नहीं पता हम कहाँ जाते हैं। तो ये एक इंटरनल एक पर्सनैलिटी है, ये जो मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा जो है एक इंटरनल पर्सनैलिटी है और इसको एक्सपीरियंस करने की बात है। इसमें कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है आत्मा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ख्याल है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, मैं कुछ बड़ा ज्यादा इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं कर पाया हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ज्ञानी लोग कहते हैं तो कोई ना कोई तो इंटरनल फीलिंग होती है। जब आप सुने गुरु रविशंकर जी को सुने या किसी और को सुने, तो ऐसा मुझे लगता है कि कोई इंटरनल चीज है जो आपको पता नहीं है। हम तो सिर्फ अपना हार्ट, अपना दिल, अपने हाथ पैर, यही सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वो नष्ट हो जाता है, जब आप खत्म हो जाता है, उसके बाद में जो चीज आपके शरीर से दूसरे शरीर में जाती है उसे शायद आत्मा कहते हैं, और वो जाती ही होगी ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको इसके बारे में भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर सकता हूँ, जो मैं आज कह रहा हूँ उसको वो एक मेरे बिलीफ में कन्वर्ट हो गया है। वो इस तरह कन्वर्ट हो गया, जब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया, आपने जो प्रश्न पूछा मुझसे, तो मैंने बहुत साल पहले जब मैं बच्चा था तब मैं यूपी में रहता था, मतलब हमारे नाना के घर में मेरठ में मैं रहता था। तो हम लोग ऐसी छत पे बैठे हुए थे, तो हमारी एक बहुत ही ओल्ड ग्रेट ग्रैंड मदर थी जो छत पे बैठी हुई थी, बहुत ही बुढ़ी थी। उनके इनकी एक आदत थी कि जब भी उनको कोई नमस्कार करता था तो वो राम राम, मतलब सैकड़ों आशीर्वाद आपको दे देती थी
0: जी।
1: तो इट सो हैपेंड ऑन वन डे कि मैंने उनको राम राम कहा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, राम राम बोला मुझे, और उस दिन उनकी मेरे सामने उनकी डेथ हो गई। मुझे पता नहीं था कि डेथ किसे कहते हैं, और वो एक तरफ को पता, वो बिस्तर पे बैठी थी, एकदम लुढ़क गई बिस्तर के ऊपर, और उनके शरीर में से एक नीले रंग की कोई चीज निकली जो ऊपर गई,
0: उत्तरी की। ओह माय गॉड।
1: हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब मुझे वो बात रियलाइज हुई सुनकर, फिर मैंने जाते ही नीचे अपनी मदर को बताया ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो तो मदर तो बहुत बड़ी है, तो उन्होंने समझ गई इसका मतलब उनकी डेथ हो गई, उनकी आत्मा निकल गई। तो इसको मैं कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं आत्मा होती है, लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उसको उनकी शरीर से निकलते हुए देखा।
0: माय गॉड
1: जी।
0: आज जब
1: तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये कहते हैं, ये भी सुना है हमने, मुझे पता नहीं कितना सच है, कि आत्मा जब निकलती है तो किसी ना किसी रास्ते से निकलती है। तो जब इंसान की डेथ होती है तो उसका कोई ना कोई शरीर का अंग जो है वो खुला रहता है, या तो आंखें, या तो नाक, या तो मुंह, इन तीन जगह से, या आपकी जो मलमूत्र की जगह होती है वहां से भी आत्मा निकलती है, जहां से उसको जगह मिलती है।
0: दोस्तों, अगर आपने गौर किया तो जान माथुर साहब ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताए हैं, और खास करके ये वाला जो एक्सपीरियंस इन्होंने बताया कि उस महिला की उनके सामने निधन हुआ और उन्होंने वो चीज देखी और जाके, ठीक है उस वक्त माथुर साहब उतना मतलब छोटे थे, उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं ले पाए, उन्होंने जाके अपने माता जी को बताया और माता जी ने उस चीज को समझाया। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मुझे ऐसा लगता है करोड़ों लोगों में से किसी एक को होता होगा। और आपने बिल्कुल सही सही
1: जी
0: बात फरमाई है माथुर साहब, ये सचमुच ही चमत्कार है। आप बहुत मतलब फॉर्चुनेट हैं, जिसको कहा जाए सौभाग्यशाली
1: जी
0: हैं,
1: हाँ जी हाँ
0: जिन्होंने जिंदगी के एक सबसे मतलब महत्वपूर्ण पहलू को अपने सामने घटित होते हुए देखा। ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। फिर वो चाहे
1: जी
0: जन्म हो चाहे मृत्यु, दोनों ही इवेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है और बहुत जरूरी है। ये सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। कहें कि साहब हम मृत्यु के बारे में बात नहीं करेंगे, डर लगता है वगैरह वगैरह, तो ये उस कबूतर की तरह है जिसने बिल्ली देखकर आंखें मूंद ली, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने
0: उचित तो
1: जी
0: नहीं
1: हाँ
0: है ये। तो चलिए, आज एक नया आयाम खुला आत्मा के बारे में, चांद साहब ने अपना पर्सनल अनुभव बताया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन, इसे सुनिए और विचार कीजिए।

0: बहुत सुंदर। माधुर साहब
1: जी,
0: जो लोग आपने अभी जब हम लोग ये बातचीत शुरू हुई तो आपने बहुत सारा विचार किया, कुछ समझा और हम लोगों के साथ अपने अनुभव शेयर किए, आपको अब क्या लगता है कि अगर कोई इंसान अध्यात्म को अपनाना चाहे, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहे, तो उसे क्या करना चाहिए? सर
1: मेरा ख्याल ये है कि उसको एक बहुत ही सिंपल सी शुरुआत करनी चाहिए, जैसे रोज डेली कुछ मिनट के लिए साइलेंस को फॉलो करना चाहिए, मतलब मौन रखना या अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना और अपना जो एक्सपीरियंस है उसमें आपने क्या, आपका एक्सपीरियंस क्या अच्छा रहा क्या खराब रहा, तो जो अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसको दूसरों से साझा करें, दूसरों को भी स्पिरिचुअलिटी के लिए मोटिवेट करें और थोड़ा दिखावे से थोड़ा दूर रहें। मतलब दिखावे की जिंदगी आजकल बहुत है कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है, तुम्हारे पास नहीं है, उससे जरा दूर रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पेशेंस इंसान को रखनी चाहिए हर चीज में। ऐसा नहीं कि मैंने ये किया है तो मुझे कल से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाना चाहिए, ये नहीं होता है। तो थोड़ा पेशेंस रखें और लव एंड कंपैशन को फॉलो करें, और जब किसी चीज के बारे में आपको ज्ञान ना हो तो पूछने में कभी संकोच ना करें। मतलब कोई होगा जो ज्ञानी होगा तो आपको वो गाइड ही करेगा। अगर आपको कुछ दिमाग में आपके कुछ कोई परेशानी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो दूसरों से पूछें, सलाह करें, उनकी सलाह को समझने की कोशिश करें। और आपका जो डेली, जो आपके जीवन है, जो आपका डेली लाइफ है, उसको ही अपना उद्देश्य बना के रखें। मतलब उसको जितना सिंप्लिसिटी के साथ आप जिएंगे, बजाय इसके कि आप मेटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा ध्यान दें, अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दें, अपनी सेहत, अपना वेलबींग, अपने पार्टनर की केयर, अपने बच्चों की केयर, अपने घर की केयर, इन सब बातों पे ध्यान दें, बजाय इसके कि आप दुनिया को देखें, देखो उसके पास ये है लेकिन मेरे पास नहीं है, उसको कंपैरिजन ना करें कभी भी। तो मेरे हिसाब से ऐसी एक शुरुआत करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, ये चांद माथुर साहब की प्रैक्टिकल एडवाइसेस हैं, डेली रूटीन में जो उन्होंने अध्यात्म को समझा है, अपने जीवन को जिस भी तरीके से उन्होंने संभाला, उसे सुधारा, उनके हिसाब से, उनकी परिभाषा के हिसाब से उसे सुंदर बनाया, उस अध्यात्म को, उन प्रैक्टिसेस को, उन तरीकों को आज चांद माथुर साहब ने आपके साथ शेयर किया, बताया कि साहब मैंने ये किया था, उसकी वजह से मेरी जिंदगी सुंदर हुई। अब ये निर्णय जो है ये आपको लेना है दोस्तों, कि आपको चांद माथुर साहब के जो तरीके हैं वो अच्छे लग रहे हैं, सरल लग रहे हैं, अपनाने लायक लग रहे हैं, तो अपनाइए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए जैसा माथुर साहब ने किया।
1: सर एक और बात मैं यहाँ पर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग,
0: नो प्रॉब्लम,
1: एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो हमेशा अपने से छोटे को देखें। मतलब जिसके पास आपसे कम है,

0: जो खुशी आपको मिलेगी वो आपकी आंतरिक खुशी है।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने प्रस्तुत किया, सही फरमाया साहब आपने। अपने से नीचे वालों को, अपने से छोटे, अपने से गरीब, या थोड़ा सा उनको देख लीजिए तो आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको लगेगा कि आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं। आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जो भी शक्ति है उसका आप धन्यवाद करेंगे और उनकी मदद करने की कोशिश में तत्पर होंगे, तभी मजा आएगा
0: जी।
1: बहुत सुंदर मथुर साहब, मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे इस प्रोग्राम में और आपसे बातचीत की। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। मेरे को तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी कितनी नॉलेज बढ़ी है इन इसका उत्तर खोजने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन FM रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगर हर जोडियक साइन, हर राशि एक पेट होता। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा फनी, थोड़ा रिलेटेबल, और थोड़ा सा अरे ये तो मैं हूं वाला फील देने वाला। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हर जोडियक साइन एक पेट होता तो वो कैसा होता। सोचिए, अगर एरीज, टॉरस, जेमिनी ये सब इंसान नहीं पेट्स होते, तो उनका एटीट्यूड, उनकी आदतें कितनी इंटरेस्टिंग होती। तो चलिए एक इमेजिनरी पेट वर्ल्ड में चलते हैं। सबसे पहली राशि एरीज, द हाइपर पपी। एरीज एक छोटा सा पपी है, इतनी एनर्जी कि आप थक जाओ पर वो कभी नहीं। सुबह 6 बजे ही उठो उठो उठो खेलते हैं, अगर बॉल फेंक दो तो वो बॉल लेके वापस आएगा, लेकिन कभी कभी खुद ही भूल जाएगा कि बॉल कहाँ है। एरीज पेट का रूल सिंपल है, एक्शन पहले, सोच बाद में। टॉरस, रॉयल कैट। टॉरस एक क्लासी कैट है, जिसे कंफर्ट सबसे ज्यादा पसंद है, सॉफ्ट कुशन, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट एस्थेटिक्स, और खाना टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर मूड नहीं है तो आप बुलाते रहो, वो सिर्फ आपको देखेगा और इग्नोर करेगा विद एटीट्यूड। जेमिनी, द टॉकिंग पैरट, बोलता तोता। जेमिनी एक तोता है जो सिर्फ बोलता नहीं, नॉन स्टॉप बोलता है। आप कुछ भी बोलो वो

उसका रिप्लाई देगा और फिर उसका भी रिप्लाई देगा और कभी कभी खुद से ही बात करता रहेगा। कैंसर, इमोशनल टर्टल। कैंसर एक प्यारा सा टर्टल है, थोड़ा स्लो लेकिन बहुत इमोशनल। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो तो अपने शेल में चला जाएगा, लेकिन प्यार मिले तो आपके पास ही चिपक के बैठ जाएगा। लियो, ड्रामा किंग लायन। लियो ऑब्वियसली लायन ही होगा। एंट्री ऐसी जैसे स्टेज पर आ रहा हो, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, और अगर इग्नोर कर दिया तो ड्रामा गारंटीड है। वर्गो, परफेक्शनिस्ट रैबिट। वर्गो एक रैबिट है जो हर चीज परफेक्टली चाहता है। फूड भी अलाइन होना चाहिए, स्पेस क्लीन होना चाहिए, और अगर कुछ भी ऑफ हो गया तो वो खुद ही ठीक करेगा। लिब्रा, स्टाइलिश स्वान। लिब्रा एक स्वान है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल और हमेशा बैलेंस में, लेकिन उनके डिसीजंस उसमें खैर टाइम लगता है। ये खाना या वो खाना, ये ड्रेस या वो ड्रेस, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन, और वो बस सोचता ही रहेगा। स्कॉर्पियो, द मिस्टीरियस स्नेक। स्कॉर्पियो एक स्नेक है, इसमें कोई दोराहे नहीं है। साइलेंट, ऑब्जर्वेंट, थोड़ा ज्यादा इंटेंस, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से इनकी पटती भी नहीं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सब कुछ, जान भी हाजिर है। सैजिटेरियस, द फ्री हॉर्स। सैजिटेरियस एक हॉर्स है जो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं करता, खुला मैदान, फ्रीडम और एडवेंचर। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये सीधा भाग जाएगा। केप्रिकॉन, द वाइज एलिफेंट। केप्रिकॉन एक एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग, काम, इंटेलिजेंट और फोकस्ड। हर चीज प्लान करके करेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अक्वेरियस, एक यूनिक डॉल्फिन। जी हाँ, अक्वेरियस एक डॉल्फिन है, डिफरेंट, इंटेलिजेंट और थोड़ी क्वर्की। कभी आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो खुद परफेक्टली क्लियर है अपने विजन में। और आखिरी राशि पाइसिस, द ड्रीमी फिश। पाइसिस एक फिश है जो अपनी ही दुनिया में रहती है, ड्रीमी, क्रिएटिव और हमेशा फुदकती हुई, और कभी कभी रियलिटी से थोड़ी डिसकनेक्टेड, लेकिन दिल सबसे सॉफ्ट। दोस्तों, हर साइन अलग है, हर पेट अलग है और हर इंसान भी अलग होता है। किसी में एनर्जी ज्यादा है, किसी में इमोशन ज्यादा है, किसी में लॉजिक ज्यादा है और किसी में ड्रीम्स। ओ माय गॉड, अगर आपको लग रहा है ये तो बिल्कुल मैं हूं, तो रिलैक्स, सबको लग रहा है। दुनिया इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि सब अलग है, और अगर सब सेम होते तो लाइफ कितनी बोरिंग होती, साइमीज ट्विंस जैसे। इसीलिए अपने अंदर के पेट को समझो और दूसरों के पेट को एक्सेप्ट करो। मैं हूं आपकी दोस्त, अगली कहानी तक जरूर बताइएगा आपका जोडियाक पेट कौन सा है और क्या वो आपसे मैच करता है। तब तक के लिए अपनी वाइफ को एंजॉय करिए और लाइफ को थोड़ा फन बनाइए।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। बजट रोमांटिक्स। ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, और डेट पे बोलता है स्प्लिट कर लेते हैं, इक्वालिटी भी तो इम्पोर्टेंट है।

हेनरीज कैफे, जहां चाय से ज्यादा कहानियां उबलती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी गर्म चाय जैसी। पहले सिप में सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसे महसूस करोगे, अंदर कहीं गहरा उतरती चली जाएगी। शहर और उसकी दौड़, ये कहानी है एक शहर की। बड़ा शहर, भीड़ भरा, रोशनियों से जगमग, और फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला। यहाँ लोग भागते बहुत हैं, पर रुकते कम हैं। मिलते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। और इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली थी, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता था, और वहां था हेनरीज कैफे। ना कोई फैंसी लाइट्स, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुराना सा वुडन बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था हेनरीज कैफे, और उसके नीचे छोटी सी लाइन थी, यहां चाय के साथ थोड़ा सा सुकून फ्री है। आप सोचोगे ऐसा क्या खास है इस जगह में? खास ये है कि यहां लोग चाय पीने नहीं, अपने आप से मिलने आते थे। हेनरी, वो कौन था? ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका पास्ट, ना उसकी कहानी। बस इतना पता था कि वो हर इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से बाहर खड़ा हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, और बस देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना जजमेंट्स के। एक अजीब सी बात, हेनरी के कैफे में एक अजीब सी बात थी। यहां मेन्यू सिंपल था, चाय, कॉफी, थोड़ा सा खाना, लेकिन हर ऑर्डर के साथ एक सवाल फ्री मिलता था। जी हाँ, एक सवाल, और वो सवाल कभी सिंपल होता था, कभी गहरा। कभी वो सिर्फ इतना ही पूछता था, तुम ठीक हो? और लोग हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हेनरी के सवाल में कुछ ऐसा था कि लोग थोड़ी देर बाद रुक जाते थे और फिर धीरे से कहते थे, शायद नहीं। रोज शाम को तीन लोग वहां जरूर आते थे, जैसे तीन अलग कहानियां एक ही किताब के अलग पेजेस हों। राघव, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, लेकिन आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन। वो रोज आता, चाय मंगाता और बस एक ही लाइन बोलता, यार समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरी मीरा, एक आर्टिस्ट, स्केचबुक हमेशा साथ होती थी, पर पेजेस अक्सर खाली रहते थे। उसके हाथ में टैलेंट था, लेकिन दिल में डर, डर कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरी शांति अम्मा, एक बूढ़ी माँ जो रोज आती थी, एक ही कुर्सी पर बैठती थी और दूर देखते हुए चाय पीती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। एक शाम जो अलग थी, उस दिन बारिश हो रही थी, शहर धीमा पड़ गया था और कैफे में सिर्फ तीन लोग थे। हेनरी ने चाय सर्व की और इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर कल सब खत्म हो जाए। जी हाँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो आज क्या करोगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। सच सामने आता है। राघव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जॉब छोड़ देता, मैं वो करता जो मैं सच में करना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखा देती, चाहे लोग हंसें या समझें, मैं दिखाती। और शांति अम्मा ने बहुत धीरे से कहा, मैं उसे माफ कर देती, अपने बेटे को,
हेनरी ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, तो कल का वेट क्यों? अगले कुछ दिनों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। राघव ने सच में रेजिग्नेशन दे दिया, डर के साथ लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन प्लान की और पहली बार उसने अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाई। शांति अम्मा ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और बस इतना कहा, बेटा घर आ जाओ। एक दिन तीनों कैफे आए लेकिन दरवाजा बंद था, बोर्ड हटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा नोट दरवाजे पर, एक कागज चिपका हुआ था, जिंदगी रुकती नहीं, बस कभी कभी हम रुक जाते हैं, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर है।

मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था। विथ लव, हेनरी। तीनों वहां खड़े रहते हैं चुप। राघव बोला, ये कौन था? मीरा बोली, शायद एक इंसान। शांति अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं, वो एक एहसास था। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। वो आपको बदलने नहीं, बस आपको आपसे मिलवा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आप किसी की लाइफ में हेनरी बन चुके हो। कभी एक सही वक्त पर बोला हुआ शब्द, कभी एक सही वक्त पर दिया हुआ साथ, और कभी एक छोटी सी स्माइल किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। तो आज जब आप अपनी चाय पियेंगे या अपनी रूटीन में बिजी होंगे, तो एक बार रुक कर खुद से जरूर पूछेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब मिले तो कल का वेट मत करना। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक दिलचस्प कहानी। आज का थॉट सिंपल है, कभी किसी के लिए हेनरी बन जाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सवाल पूछना ही काफी होता है।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। हमेशा बिजी रहने वाले लोग, ये लोग इतने बिजी होते हैं कि फ्री होने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए। कल मिलते हैं, कल बिजी हूँ। पर तुम तो घर पे हो। हाँ घर पे बिजी हूँ।

वर्ड ऑफ द डे गैडजुकरी। दोस्तों, सुबह हो, शाम हो या रात के खामोश पल, अगर आपके साथ बातें हो जाएं, तो हर वक्त थोड़ा सा और खूबसूरत लगने लगता है। और आज की बात थोड़ी हटके है, थोड़ी पुरानी है, थोड़ी सी फिल्मी भी है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है गैडजुकरी। सच बताऊं, पहली बार सुनोगे तो लगेगा जैसे किसी जादूगर का मंत्र हो, गैडजुकरी। चलिए इसको सीधी भाषा में समझते हैं। गैडजुकरी का मतलब होता है बहुत पुराने जमाने के शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे शब्द जो आज हम रोज की जिंदगी में यूज नहीं करते, जैसे हे नाथ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, मेरा हृदय व्याकुल है। अब आप ही सोचो, अगर आज के व्हाट्सएप चैट में कोई लिख दे हे मित्र, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो तुरंत रिप्लाई आएगा, तू ठीक है ना, फीवर तो नहीं हो गया। आज हम लोग क्या बोलते हैं, और दोस्त क्या सीन है, सब चिल है, क्या कर रहा है। और अगर गैडजुकरी मोड ऑन हो तो यही मैसेजेस हो जाएंगे, आपका वर्तमान कार्यक्रम क्या है, आपका मन कैसा है। ये सुन के लगता है ना जैसे किसी ने मोबाइल हटा के सीधा इतिहास की किताब खोल दी हो। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी क्रश को इम्प्रेस करेगा, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, थोड़ा रॉयल अंदाज में। वो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम्हारी मुस्कान ने मेरे हृदय को छू लिया। लड़की ने देखा, 2 सेकंड चुप रही, फिर बोली, भाई तू ठीक है या किसी प्ले का रिहर्सल कर रहा है। गैडजुकरी एक अलग ही मैजिक होता है दोस्तों। जब आप कोई हिस्टोरिकल कहानी पढ़ते हो या कोई पुरानी फिल्म देखते हो, तो वो पुराने शब्द आपको उस दुनिया में ले जाते हैं, जैसे आप सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि महसूस कर रहे हो। एक सिंपल लाइन, मैं तुम्हें याद करता हूं, और एक पुराने अंदाज में, तुम्हारी यादों ने मेरे मन को घेरा हुआ है। अब बताओ, थोड़ा गहरा फील हुआ या नहीं। कभी कभी पुराने शब्द दिल के ज्यादा करीब होते हैं, जैसे प्यार बोलने से ज्यादा प्रेम बोलने में एक अलग ही सॉफ्टनेस है। दुख की बजाय व्यथा, खुशी की बजाय आनंद, ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये अपने साथ एक पूरी फीलिंग लेकर आते हैं। लेकिन हर चीज की तरह इसका भी ओवरडोज डेंजरस है। सोचो, घर पे मम्मी बुला रही हैं, बेटा खाना खा लो, और आप जवाब दो, हे मातेश्री, मैं भोजन ग्रहण करने के लिए तत्पर हूं। मम्मी का जवाब, सीधा बोलना आ रहा हूं। ऑफिस या इंटर्नशिप में अगर गैडजुकरी चालू हो जाए तो बॉस बोले, फाइल कंप्लीट हुई, और आप बोले, हे प्रभु तुल्य अधिकारी, ये कार्य अभी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बॉस बोले, कल से मत आना भाई। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है, गैडजुकरी एक स्टाइल है, एक फ्लेवर है, एक अंदाज है, जो कहानियों को खूबसूरत बनाता है, बातों को गहरा बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए, आज किसी एक दोस्त को थोड़ा गैडजुकरी स्टाइल में मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे हे मित्र, आपका दिन मंगलमय हो, और फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। मुझे पक्का लगता है या तो वो कंफ्यूज होंगे, या फिर हंस पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे आपको चेक करने के लिए, आपकी तबीयत चेक करने के लिए। चलिए एक और सीन, नॉर्मल, फोन क्यों नहीं उठाया, गैडजुकरी स्टाइल, हे प्रिय, तुमने मेरे आह्वान को क्यों अनसुना किया। रिप्लाई, फोन साइलेंट था यार। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिंपल शब्दों में ही सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना, तो वही बात एक याद बन जाती है, एक मोमेंट, एक मेमोरी शायद, और शायद यही है गैडजुकरी का असली मतलब।
शब्दों को थोड़ा और खूबसूरत बना देना और थोड़ा और महसूस करवा देना। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए शब्द, एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी बातों में थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा जादू और थोड़ा सा स्टाइल जरूर रखिए।

जोडियाक जंक्शन, जब 12 रास्ते एक ही मंजिल तक ले गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है। इसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके डिसीजंस सब कुछ एकदम हटके हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर हो और हर इंसान अलग रास्ते से चल रहा हो, तो क्या होगा? अगर एक दिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आ मिले। एक अजीब सी जगह थी, न मैप पर मिलती थी ना गूगल पर। नाम था जोडियाक जंक्शन, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन जहां से वो लोग आते थे जो लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे या फिर जो अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते थे। उस रात वहां 12 लोग मिले, सब अलग, सब यूनिक और सब अपनी कहानी के साथ। अर्जुन हमेशा जल्दी में। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर आते ही बोला, ट्रेन कहाँ है, मुझे जल्दी है। उसे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके लिए लाइफ रेस थी, बिल्कुल एक एरीज की तरह। भावना कंफर्ट क्वीन। भावना ने पहले बेंच चेक की, ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। उसके लिए सफर का मजा सुकून में था, बिल्कुल एक टॉरस की तरह। चिराग नॉन स्टॉप टॉकर। चिराग ने आते ही सबसे बात करना शुरू कर दी, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और बिना जवाब का वेट किए खुद ही बोलता रहा, बिल्कुल एक जेमिनाई की तरह। छवि दिल से जीने वाली। छवि थोड़ी इमोशनल थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बोली, ये जगह थोड़ी अजीब सी फील दे रही है, नहीं? बिल्कुल एक कैंसर की तरह। लक्ष्य अटेंशन मैग्नेट। लक्ष्य एंट्री ऐसे करता है जैसे हीरो हो किसी फिल्म का, गाइज रिलैक्स, मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट, बिल्कुल एक लियो की तरह। विरेन परफेक्शन लवर। विरेन ने पहले ही 10 बार शेड्यूल देखा, फिर क्लॉक देखी और फिर बोला, सब कुछ परफेक्टली अलाइंड है, टाइमिंग सही है, बिल्कुल एक वर्गो की तरह। लीना कंफ्यूज्ड बट चार्मिंग। लीना दो टिकट्स हाथ में लिए खड़ी थी, ये वाली लूं या वो वाली, डिसीजन उसके लिए एक एडवेंचर था, बिल्कुल एक लीब्रा की तरह। समर एक साइलेंट ऑब्जर्वर। समर चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सबको देख रहा था, जैसे सबकी कहानी समझ रहा हो, बिल्कुल एक स्कॉर्पियो की तरह। कबीर एक फ्री सोल। कबीर ने बोला, यार कोई भी ट्रेन आ जाए मैं तो चढ़ जाऊंगा, उसके लिए मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल एक सैजिटेरियस की तरह। देव फोकस्ड। देव सीधा खड़ा था, मैं यहां एक रीजन से आया हूं, एक टारगेट से, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा, बिल्कुल एक कैप्रिकॉर्न की तरह। अयान एक अलग थिंकर। अयान ने अचानक बोला, गाइस क्या हो अगर ट्रेन ही इल्यूजन हो? सब उसे देखते रह गए, बिल्कुल एक अक्वेरियस की तरह। मेहर ड्रीमिंग। मेहर आसमान देख रही थी, शायद हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, बिल्कुल एक पाइसिस की सोच। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए, जोडियाक जंक्शन पर आने वाली ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्ची मंजिल जानते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्या सच में उन्हें पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन रुक गया, पहली बार शायद मुझे नहीं पता। भावना बोली, मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, मंजिल नहीं सोची। चिराग चुप हो गया, सच में पहली बार। हर किसी को रियलाइज हुआ कि वो बस चल रहे थे लेकिन पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। तब समर ने धीरे से कहा, शायद ट्रेन यहां आएगी ही नहीं। सब शॉक हो गए, क्या मतलब? समर बोला, शायद ये जगह ट्रेन के लिए नहीं है, ये जगह हमें रोकने के लिए है, ताकि
ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं। और उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, जोडियाक जंक्शन एक स्टेशन नहीं था, एक पॉज था। कोई ट्रेन नहीं आई, लेकिन सब वहां से चल दिए अपनी अपनी डायरेक्शंस में, लेकिन इस बार एक क्लियर माइंड के साथ। अर्जुन धीरे चला, भावना ने कंफर्ट के साथ एक पर्पस भी चूज किया, चिराग ने सुनना सीखा और हर किसी ने अपनी मंजिल खुद डिसाइड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर कभी ना कभी खड़े जरूर होते हैं, जहां हम रुकते हैं, कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं मैं जा कहां रहा हूं। और शायद वही पॉज जरूरी होता है, क्योंकि बिना रुके सही रास्ता कभी नहीं मिलता। मैं हूं आपकी दोस्त और आज का सवाल बहुत सिंपल है, आप अपनी लाइफ के जोडियाक जंक्शन पर हो या ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हो? सोचिए और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: मैं आपका दोस्त आलोक कुलश्रेष्ठ आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपसे मुखातिब हूँ। प्रोग्राम का नाम है आलोक के साथ रूबरू। इस प्रोग्राम में हम हमारे समाज के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनके पास भले ही अकूत धन संपदा ना हो, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया, जिन लोगों के पास भले ही सेलिब्रिटी का स्टेटस ना हो, लेकिन अपनी सोच से समाज के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। इन लोगों ने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता अलग से बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज जिन मेहमान से हम रूबरू होने वाले हैं उनको बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश जहां एक ओर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमारे समाज का ताना बाना कुछ कुछ उलझ सा गया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों पर। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बदलाव से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा है? जी हाँ, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य या हमारे बुजुर्ग। उनकी देखभाल करने के लिए आज परिवार के किसी सदस्य के पास समय नहीं है। हम सब जानते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लॉन्गेविटी बढ़ रही है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए परिवार में किसी के पास समय नहीं है। अधिकतर संतानें या तो विदेश में सेटल हैं या महानगरों में अपना कैरियर बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के पास हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है उन्होंने इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पी सी जैन, जो कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक बैंक के चेयरमैन हैं, लेकिन उस बैंक में पैसा या रुपए जमा नहीं होते, बल्कि समय या टाइम जमा होता है। है ना कुछ दिलचस्प, कुछ नया और यूनिक सा? डॉक्टर जैन नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, नमस्कार।
0: चलिए जैन साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि टाइम बैंक है क्या और ऐसा क्या हुआ या वो कौन सा ट्रिगर था जिसने आपको इस कार्य करने की प्रेरणा दी?
1: आलोक जी, आपने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा, आपने आई बैंक का नाम सुना होगा, तो बैंक से हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि ऐसी कोई भी संस्था जहां हम कुछ जमा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जमा होता है, आई बैंक में कॉर्निया जमा होता है, और जो फाइनेंशियल बैंक है उसमें धन जमा होता है
0: जी।
1: तो इसी प्रकार से ये एक बैंक है जिसमें ना तो धन जमा होता है, ना रक्त जमा होता है, ना कॉर्निया जमा होता है। इसमें वो चीज जमा होती है जिसके लिए हम कहते हैं कि उसे पकड़ के नहीं रखा जा सकता, अर्थात समय जो बहता चला जाता है उसे हमने थामने की कोशिश की है, तो हम इसमें समय को जमा करते हैं।
0: बहुत अच्छा, और क्या हुआ ऐसा जिसने आपको ये प्रेरणा दी?
1: आपने देखा होगा कि आज सबसे ज्यादा कमी है तो समय की है, बावजूद इसके कि सबके पास पर्याप्त समय है। समय की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी समय नहीं है
0: जी। जी जी,
1: आप किसी को फोन कर लें तो वो छूटते पूछता है कि बताइए क्या काम है। अर्थात सामान्य अगर हम बात करना चाहें, मित्र से बात करना चाहें कि चलो यार थोड़ा मन

0: हल्का करते हैं, 2 घड़ी बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि किसी काम से फोन किया होगा,
1: जी
0: है ना। और ये स्थिति आपने देखी होगी कि कोरोना जब आया था, COVID-19 आया था, आइसोलेशन में लोग थे जिनको कोरोना हुआ, शुरुआत का जो दौर था बड़ा डरावना था, उस समय डॉक्टर भी पूरा पीपीई किट पहन के आते थे और अलग से उनको रखा जाता था, किसी दुनिया से संपर्क नहीं रहता था, यहाँ तक कि मोबाइल भी उनके हाथ में नहीं दिए जाते थे, बाद में तो मोबाइल भी देने लग गए। लेकिन वो जो पीरियड उनका रिकवरी का पीरियड था, उसमें चूंकि वो पूरे संसार से कटे हुए थे, तो इतने त्रस्त थे, इतना भयावह स्थिति थी उनकी कि कोई मिले बात करने को। और आपने देखा होगा कि जैसे कोविड खत्म हुआ तो मेल मिलाप का दौर चल पड़ा, यानी कि बेसिकली मनुष्य मनुष्य को चाहता है, हम एक सामाजिक प्राणी है, हम अपने संग साथ के बगैर नहीं रह सकते। उनके साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जो अब समाज में मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनका आना जाना बंद हो गया। हम आप जो अभी इस स्थिति में है, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, हम इतने वृद्ध भी नहीं हुए कि हम अकेले नहीं जा सके, तो हम कहीं भी फंक्शन होता है, समाज में कोई एक्टिविटी होती है, दोस्तों के यहाँ जाना है, हम चले जाते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या जो आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे घर से अकेले निकल नहीं पाते। अब वो हमेशा इस बात का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई 2 घड़ी उनके पास में आए, बैठे, बतियाए, उनका मन लगे इस बहाने, लेकिन किसी के पास इस चीज के लिए समय नहीं है। तो ये ऐसा पॉइंट था जिसने ये मुझे सोचने को मजबूर किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरी माताजी भी जो उस समय लगभग 92 ईयर्स की थी, 92 साल की थी, और शारीरिक रूप से इतनी समर्थ नहीं थे कि वो अकेले कहीं जा आ सके, तो उन्हें हमेशा ये रहता था कि कहीं जाना है तो बेटा तू घुमाला चल, कार में बिठा के एक चक्कर ही लगाया बाजार का, फलानी मेरी सहेली से मिला ला, या उन्होंने अपना कुछ ग्रुप बना लिया था, जो महिलाएं आती थी वो सत्संग करती थी, भजन कीर्तन करती थी।

0: लेकिन आप सोच के देखिए, ये स्थिति समाज की हमारी धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। महानगरों में बड़ी समस्या है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपको फर्स्ट डोर नेबर के बारे में नहीं पता होता। जहां
1: जी
0: पहले हम
1: बिल्कुल
0: कभी
1: सर।
0: भी ऐसे ही घंटी बजा के चले जाते थे बिना अपॉइंटमेंट के, आज फोन करके अपॉइंटमेंट लिए बगैर अपने घनिष्ठ मित्र के पास भी जाने में संकोच होता है। और ऐसा एक समाचार एक आया, जो हमारी विश्व की नई यूनिवर्सिटी है, जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होता है, तो सामान्यतः इसमें इतने मैसेजेस होते हैं कि हमें डिलीट ही
1: हाँ
0: करने पड़ते हैं। पर कभी
1: हाँ
0: कभी कोई ऐसे मैसेज होते हैं या ईश्वरीय कोई कृपा होती है कि आपका ध्यान वहां अटक जाता है। ऐसा ही एक संदेश टाइम बैंक के बारे में आया था। स्विट्जरलैंड की एक स्टोरी किसी बच्चे ने साझा की थी कि वहां पे ऐसे समय बैंक चलता है, और मेरी लैंड लेडी थी, वो जाती थी समय जमा करती थी, फिर वो एक दिन गिर गई, अकेली थी तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई। तो उसने कहा कि यार अब कौन संभालेगा, तो उस लैंड लेडी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने अपने समय बैंक में समय जमा कर रखा है, और अब वो लोग आएंगे और मुझे समय देंगे। तो मैं जो दिन में जाती थी, तो मैं किसी काम पे नहीं जाती थी, बल्कि किसी बुजुर्ग की सेवा करने जाती थी, और उसकी सेवा के बदले में मैं समय जमा कर रही थी। इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई संदेश है या वास्तव में ऐसा कुछ है भी। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, देखा तो ये वाकई स्विट्जरलैंड में सरकार की ओर से ये योजना चलती है, और बकायदा वहां जमा खर्च होता है समय का। और फिर मैंने और सर्च किया, तो मैंने देखा कि और भी कई देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ये टाइम बैंक की अवधारणा प्रचलित है। कहीं पे ये एनजीओ के माध्यम से चल रही है, कहीं सरकार के माध्यम से चल रही है। फिर यहाँ भारत में मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो मुझे भारत में कहीं पे भी टाइम बैंक नहीं मिला। अब आप तो जानते हैं आलोक जी, बैंक से रिटायर हुए हैं, ऐसा कोई समाज सेवा का कोई अनुभव नहीं था कि संस्था कैसे बनती है, कैसे चलाई जाती है। मन में विचित्र सी स्थिति थी कि यदि हम इसे शुरू करेंगे तो इसमें क्या क्या कठिनाई आएगी, क्या परेशानी आएगी, तो इस पे क्या करें। एक ये भी दिमाग में होता था कि एनजीओ के का मतलब, एक दिमाग में प्रश्न कौन सा है कि एनजीओ बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए फिर वो पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, उगाते हैं, मेंबरशिप फीस रहती है, फिर उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पता नहीं। कई बार संस्थाओं में इसी बात को लेके झगड़े होते हैं, फंड को लेके झगड़े होते हैं। तो एक ये मन में था कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो,
1: चलिए चलिए,
0: ऐसा करें कि
1: अच्छा
0: जिसमें मतलब मिनिमम पैसे से काम हमारा चल सके। लेकिन
1: तो
0: आगे कैसे बढ़े। हाँ आप कुछ कह रहे हैं।
1: हाँ, तब इसका मतलब है कि यहां पैसे की बजाय टाइम जमा होता है, और जो अपना टाइम देता है वो उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट हो जाता है। तो इसको शुरू करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बुजुर्गों से बात की जाए। मुझे ध्यान है कि एक बार एक केंद्रीय विद्यालय के पेंशनर्स का कोई सम्मेलन हो रहा था, अखबार में खबर आई कि आज फलानी जगह ये सम्मेलन होगा। तो मैंने कहा कि यार चलते हैं, यहाँ बात करके देखते हैं। मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन वहां चला गया। उनको जाके मैंने आयोजकों को कहा चलती मीटिंग में कि साहब ऐसा ऐसा एक कंसेप्ट है कि बुजुर्गों की देखभाल करनी हो तो समय दे के हम आपस में एक दूसरे की देखभाल करें, इस बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं, अगर अनुमति दें तो। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहीं पे भी आप जानते हैं कि कोई सभा चल रही होती है तो उनका पूरा शेड्यूल होता है, और किसी भी अनजान व्यक्ति को बोलने की अनुमति होती नहीं, क्योंकि उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दे दी कि बोले आप ठीक है, अपनी 5 मिनट में अपनी बात आप रख सकते हैं, 5 मिनट का हम समय देते हैं। तो मैंने 5 मिनट में अपनी बात वहां पे कही, और कह के मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं या इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर लें, मैं अपना मोबाइल नंबर आपके आयोजकों के पास छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा 5 मिनट का टाइम हो गया था। तो
1: ठीक
0: मैं मन से मैंने उनको कहा कि सर आपके पास मेरा नंबर है, अगर किसी को जरूरत हो तो आप दे दीजिए। वहां मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोगों ने वहीं से आवाज लगाई कि साहब आप तो बोल दो, यहीं से बोल दो, हम नोट कर लेंगे। तो
1: अच्छा
0: मैंने कहा देखिए मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता, तो आप यहां से ले लें। तो वो आयोजक ही खुद बोले कि साहब कोई बात नहीं, आप तो बोलो और ये नंबर नोट कर लेंगे।
1: ठीक
0: और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों की तरह उन्होंने अपने मोबाइल में या नोट पैड पे मेरे नंबर नोट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा।
0: और जहां अटक रहे थे वहां रिपीट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसके बाद में मैं और कई लोगों से मिला, प्रबुद्ध लोगों से मिला, मैंने चर्चाएं की कि भाई ये एक ऐसा अवधारणा मुझे शुरू करनी है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों ने सुन के पूरा पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके बाद पहला ही सवाल लोगों के दिमाग में आया कि साहब सीनियर सिटीजन एक सॉफ्ट टारगेट है, इनके साथ में कुछ हो गया, आपने कहा कि वो उनके घर जाएंगे, उनका अकेलापन दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बतियाएंगे, उनको लेके जाएंगे, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन है तो वहां पे देखभाल करेंगे, लेकिन अगर घर पे जाते हैं तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा उसका। अब इसका जवाब मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था, क्योंकि अगर तो सही बात है सरकार के स्तर पे कुछ हो रहा है तो सरकार देखेगी, एनजीओ के स्तर पे कुछ हो रहा है तो बड़ी मुश्किल होगी जी।

0: चल, तो ये अपन आगे चर्चा जारी रखते हैं। थोड़ा मेरे को इसकी ये बात बताइए कि अभी टाइमिंग क्या आपका एक दो शहरों तक ही सीमित है या कई शहरों में इसकी उपस्थिति है?
1: आलोक जी, अब तो ये बहुत शहरों में हो गया है, काफी विस्तार ले चुका है। लगभग यूं कहें कि देश के जो हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं, प्रमुख शहर होते हैं, सब
0: हाँ
1: जगह इसकी उपस्थिति इसकी दर्ज हो चुकी है और अच्छा
0: हाँ तो अभी
1: चल रहा है। फिलहाल
0: कितने मेंबर्स हैं इसके अभी फिलहाल?
1: हमारे इसमें तकरीबन 9,000 मेंबर हैं, हाँ,
0: अच्छा,
1: देश भर की
0: और
1: शाखाओं में,
0: कई स्टेट्स में हैं।
1: कई स्टेट्स में है।
0: अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि बैंक के सदस्य किस प्रकार की सहायता दूसरे सदस्यों को देते हैं, जैसे किन किन मेडिकल कंडीशंस में उनकी मदद करते हैं?
1: इसमें सबसे पहला तो हमारा ये है कि जो घर पर अकेले हैं, जिनके पास में कोई बैठता नहीं है, उनके पास आप बैठे हैं ताकि उनका एक तरह से देखभाल भी हो सके और उनका मन भी लगा रह सके। मैं आपको शेयर करूं कि एक एशियन पेंट्स का एक सीरीज आई थी, हर घर कुछ कहता है, उसमें उन्होंने धर्मेंद्र का इंटरव्यू लिया था
0: अच्छा,
1: और कई एपिसोड में था उसका ये इंटरव्यू, जिसमें उसके पूरे
0: जी
1: जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। उसमें
0: जी
1: से एक क्लिपिंग मुझे मिली, जिस क्लिपिंग में वो पूछते हैं कि जब आप बॉम्बे आए थे और आपके परिवार भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो आपको कैसा महसूस होता था, तो बोले कि वो मैंने बाबूजी और वो माता जी को पता नहीं क्या कहते थे, तो वो लोग
0: हाँ
1: वहां पे आ गए और ये बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। पैसा था, कोठी थी, नौकर चाकर बंगला सब कुछ था। तो वो तो शूटिंग से लौटते थे, कई बार कई कई दिन होते थे, महीनों लग जाते थे, घर आते थे, माता जी के पास बैठते थे, उससे पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत है, कुछ काम है, वो ऐसे ही बैठी रहती थी उदास सी थी। बोले नहीं बेटा, सब कुछ तो है, क्या कमी है, तेरे तो सब कुछ कर रखा है ना, किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। फिर वो बाबूजी के पास जाते थे तो वो ऐसे हाथ से एक्टिंग करके कह रहे थे कि वो ठुड्डी पे हाथ रख के बाबूजी बैठे होते थे। मैं पूछता था कि बाबूजी क्या चाहिए, बोले बेटा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो तूने दे रखा है, गाड़ी है, नौकर चाकर बंगला है। बड़े मायूस से होके कहते हैं कि लेकिन बेटा तू थोड़ा जल्दी आ जाया कर। उनका अभिप्राय है कि मतलब बेटा उनके पास में बैठे थोड़ी देर के लिए, इतने नौकर चाकर की भीड़ में भी वो अकेले हैं,
0: सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है
1: अकेलेपन की समस्या।
0: आजकल।
1: तो पहला काम तो हमारा यही है कि उनका अकेलापन दूर हो, जिनके पास में कोई आने जाने वाला नहीं है। दूसरा काम हमारा होता है कि ऐसे बुजुर्ग जो सक्षम नहीं है, उन्हें छोटे छोटे काम के लिए लोगों का मोहताज होना पड़ता है। चश्मे की डंडी टूट गई है, अब कोई मिलेगा तो वो जाके बनवा के ला पाएंगे, अन्यथा वो बैठे हुए हैं ऐसे। उनको
0: जी।
1: डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, यहाँ तक कि मंदिर जाना है या सुबह घूमने जाना है ना। आपने
0: हाँ
1: देखा होगा जो काफी बुजुर्ग होते हैं, उनका पोता या कोई सर्वेंट या कोई उनका बेटा, वो हाथ पकड़ के
0: हाँ
1: साथ साथ लेके आता है, पैदल चल रहे हैं लेकिन वो अकेले नहीं जा पाते, उनको डर लगता है गिरने का, कुछ हो जाने का, तो साथ
0: जी
1: जाते हैं। तो ऐसे में उनको
0: हाँ
1: साथ ले जाना, ले
0: चाहिए
1: आना, उनके
0: चाहिए
1: काम करा के घर छोड़ दे। और
0: जी
1: तीसरा काम है हमारा कि जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो वहां पे अटेंडेंट के तौर पे आपको व्यक्ति नहीं मिलता।
0: जी।
1: आपने
0: आजकल ये
1: देखा
0: बहुत
1: होगा,
0: आम
1: हम और आप सब इससे गुजरे हैं कि हमारे
0: जी।
1: कोई मित्र अस्पताल में भर्ती हो गए तो हम देखते थे कि विजिटिंग आवर्स क्या है, उस समय जाते
0: हाँ
1: हैं, 5-7 मिनट बैठते हैं और वापस आ जाते
0: हाँ फॉर्मेलिटी
1: हैं,
0: से
1: लेकिन
0: निभाते हैं।
1: फॉर्मेलिटी से निभाते हैं। वो भी इसलिए कि वो ठीक होने के बाद ये नहीं कहे यार तू तो देखने भी नहीं आया
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात
1: और कई बार तो हम अनजाने में उसका नुकसान और कर जाते हैं। वो
0: जी।
1: ऐसे कि वहां बैठते हैं, हम सबके सब तो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े है ना, तो अच्छा
0: सब
1: अरे तू यहाँ कहाँ यार, हॉस्पिटल में आ गया, ये हॉस्पिटल तो बड़ा बदनाम है ना, लूटता है, तेरे को उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अच्छा
0: बिल्कुल
1: किस
0: सही
1: डॉक्टर से
0: बात।
1: इलाज चल रहा है, इस डॉक्टर से, अरे यार ये
0: अच्छा,
1: डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो
0: दूसरे
1: फलाना
0: जगह।
1: डॉक्टर
0: हाँ
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल
1: कहेगा
0: सही।
1: हल्दी में मिला के ये खा लेना, कोई कहेगा फिट करके गरारे कर लेना, तो वो
0: हाँ
1: बेचारा जो
0: बिल्कुल
1: उसका विश्वास है उस डॉक्टर पे और हॉस्पिटल पे, उसको शेक करके और आ जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: लेकिन अगर उसने कह दिया कि यार मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं, तुम क्या दिन भर छुट्टी लेके मेरे पास में या हॉस्पिटल में रुक सकते हो, तो वो
0: हाँ
1: दाएं बाएं हो जाएंगे
0: दाएं
1: यार,
0: बाएं
1: आज
0: बाएं
1: तो मेरे ये काम है, आज तो
0: जी
1: नहीं, मैं कल कल देखता हूँ, है ना, वो तो कल होके आगे
0: जी
1: होके वो
0: बिल्कुल
1: पूछेंगे भी नहीं कल कि भाई वो तेरी जरूरत थी, मैं आऊं या नहीं आऊं। तो
0: सही बात।
1: बहुत घनिष्ठ हमारे मित्र हैं, जिनको हम लंगोटिया यार कहते हैं, जो ये तकलीफ उठा के भी अपना काम धंधा छोड़ के हमारे पास आ सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, अपने परिवार के सदस्य हैं, केवल वही लोग
0: आते हैं
1: आपके पास आ सकते हैं, यहाँ टाइम खर्च करके आपके पास रुक सकते हैं, बाकी किसी के पास टाइम नहीं। तो टाइम बैंक वहां पे उनकी देखभाल
0: तो
1: आराम
0: अब
1: से करता है।

0: डालोगे?
1: अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी सदस्य को मदद चाहिए तो वो किस प्रकार से रिक्वेस्ट करे, क्या कोई चार्जेस देने पड़ते हैं?
2: नहीं नहीं, इसमें चार्जेस तो मैंने बताया कि हमने कुछ रखा ही नहीं है, पैसे का तो कहीं कोई लेन देन है ही नहीं, ना इसकी सदस्यता के लिए कोई शुल्क है और ना ही उसको किसी सेवा के बदले में कोई पैसा देना है।
1: ओके, ओके।
2: और ना संस्था सेवा देने वाले को कोई पैसा देती है।
1: अच्छा, तो जो
2: सदस्यता जो, के
1: जो सदस्य बनने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है?
2: ना ना, कोई चार्जेस नहीं, फ्री है मेंबरशिप।
1: ओके, ओके। एलिजिबिलिटी अगर मेंबरशिप लेने की क्या है, क्या जिसको पात्रता कहते हैं अपन?
2: हाँ, पात्रता जरूर है। पात्रता ये है कि हम एक टी कंसेप्ट कहते हैं कि चाय पीनी हो तो आप टाइम बैंक के सदस्य बन जाइए,

0: टी स्टैंड फॉर टाइम।
1: ओके,
0: अगर आपके पास टाइम है देने के लिए या लेने के लिए, आपको समय चाहिए दूसरों से या आप किसी को समय दे सकते हैं तो आप सदस्य बनिए। दूसरा है ई फॉर एनरोलमेंट, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनरोल कीजिए, सदस्य बनिए। और तीसरा है ए मीन्स एटीट्यूड, आप में सेवा का जज्बा है, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप सदस्य बन जाइए। सेवा का जज्बा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, एनरोल करना है, आपको देने के लिए या लेने के लिए समय होना चाहिए। बस इतना सा है कि चूंकि किसी भी संस्था में जुड़ने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है टर्म्स एंड कंडीशन को, तो एक तरह से ये एग्रीमेंट जैसी चीज है। तो हमने ये रखा कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चे इसमें सदस्य नहीं होंगे। 18 साल से ऊपर का किसी भी उम्र का हो, हमारे यहाँ पे 98-99 के भी सदस्य रहेंगे।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है सीनियर सिटीजन के अलावा जो यंग लोग जिनमें जज्बा है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल, कोई भी बन सकता है, किसी भी सर्विस क्लास का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, प्रोफेशन का हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, आईएएस हो, प्लंबर हो, मैकेनिक हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी हो सकता है। हमारे ट्रक ड्राइवर भी मेंबर बने हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को देश में अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया। आपके अधिकांश मेंबर्स वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी सहायता करते समय इनकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं?
0: हाँ, ये आपने बहुत उचित सवाल पूछा, क्योंकि यही सबसे ज्वलंत समस्या है। जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो यही बात सामने आती है, जो खासतौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं तो वो भी पूछते हैं। तो हमने इसकी सुरक्षा के लिए कई सारे लेयर्स लगाए, जैसे जैसे हमें समझ आती गई बातचीत करते हुए, लोगों ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा
1: जी।
0: तो हमने ये देखा कि जब कभी भी हमें मदद की जरूरत होती है, मान लीजिए कि आप ही को हॉस्पिटल जाना है और कोई ले जाने वाला नहीं है, आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कोई साथी चाहिए, ठीक है ना, तो पहले आप अपने बच्चों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, ठीक है ना, जो पास में हो आपके
1: जी।
0: और अगर वो नहीं होंगे तो आप अपने पड़ोसी को कहेंगे, अपने किसी मित्र को कहेंगे, है ना। तो जाने अनजाने हम जिसको भी ढूंढते हैं, जिसको भी मदद के लिए पुकारते हैं, उसमें हम तीन क्वालिटी देखते हैं
1: जी।
0: पहली क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारा जानकार हो, विश्वसनीय हो
1: जी।
0: दूसरी क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारे पास में हो, नजदीक हो, बहुत दूर नहीं हो, क्योंकि बहुत दूर होगा तो वो हमारे लिए इतना काम का नहीं होता। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो उपलब्ध भी हो, ठीक है ना। उपलब्ध से मेरा मतलब है कि जैसे आप आपके पड़ोस में ही कोई रहता है और आपका मित्र भी है, आपका विश्वसनीय है, सब कुछ है, लेकिन वो उस दिन शहर से बाहर गया हुआ, तो वो उपलब्ध नहीं है,
1: नेचुरली,
0: है ना। पहली दो क्वालिटी पूरी होने पे भी तीसरी क्वालिटी उस पैरामीटर में खरा नहीं उतरता। तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमने काम किया। अब इसमें जो आपने सुरक्षा की बात की, उसमें हमने कई सारे लेयर्स लगाए।
1: अच्छा,
0: पहला लेयर तो ये है कि जो रजिस्टर करेगा, ऑनलाइन मेंबरशिप है, वेबसाइट पे जाके कोई भी मेंबर बन सकता है, timebankofindia.com हमारी वेबसाइट है। तो जब वो रजिस्टर करता है तो उसमें जो डाटा है वो किसी को भी उपलब्ध नहीं होता है, कोई मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, कोई भी ये नहीं देख सकता कि इसमें कौन कौन मेंबर हैं, उनके नाम पते क्या हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट का क्या हाल है, किसी को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ अपनी डिटेल देख सकता और किसी की नहीं देख सकता। पहली लेयर हमने ये लगाई। दूसरी लेयर लगाई हमने केवाईसी की, कि जो मेंबर बनेगा वो अपनी फोटो भी डालेगा, अपनी केवाईसी का डॉक्यूमेंट भी डालेगा, अपनी डिटेल भी पूरी भरेगा, एड्रेस भी पूरा भरेगा, सारी चीजें कंप्लीट करते हैं उसमें, और रजिस्ट्रेशन भी ओटीपी के माध्यम से हम करते हैं ताकि कोई फेक नंबर से कोई रजिस्ट्रेशन ना करे,
1: ठीक है।
0: इसके बाद अगली हमने रखी है जो लेयर, कि जो मेंबर ऑनलाइन रजिस्टर करता है वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है।
1: ओके,
0: उसे अप्रूव करते हैं तो फिर वो एक्टिव मेंबर कन्वर्ट होता है। तो हमारे यहाँ एक्टिव इनएक्टिव की कैटेगरी है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी रजिस्टर होगा वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल की कैटेगरी में जाता है। और हमारा जो यूनिट्स है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, पोस्टल पिन कोड या और भी छोटी यूनिट्स होती है, उनके संचालन के लिए एडमिन होते हैं, जो वॉलंटियर्स में से ही, हमारे मेंबर्स में से ही कोई होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका वेरिफिकेशन करे, वो उसके घर जाकर, उससे वीडियो कॉल करके, उससे फोन करके, मीटिंग के दौरान उसकी संतुष्टि होनी चाहिए कि जिनाइन व्यक्ति है, तो वो उसे अप्रूव करता है। तो जो हमारा अप्रूव सदस्य है, सेवा लेने में या देने में वही भाग ले सकता है, ना तो अन अप्रूव्ड मेंबर सेवा लेने के लिए अनुरोध कर सकता है, ना सेवा पूरी करने के लिए वो उसको एलिजिबिलिटी होती है, तो अप्रूव होना जरूरी है। यहां तक हमने सब कर लिया, फिर किसी ने कहा कि साहब आप आई कार्ड और इश्यू कर दो इनको। तो हमने कहा कि भाई आई कार्ड इश्यू तो कर दें, लेकिन अब मुझे आप बताइए कि जिस देश में पैन कार्ड और पासपोर्ट और आधार डुप्लीकेट बन जाते हैं तो आई कार्ड का क्या होगा। तो बात यह आई कि विश्वसनीयता या मित्रता बनती तब है जब हम लगातार मिलते जुलते हैं,
1: मिलते रहते हैं।
0: हालांकि मैं बैंक में नौकरी करता रहा हूँ, है ना, जहाँ ट्रांसफरेबल जॉब है, नए शहर में जाते हैं ना तो स्टाफ जानकार होता था ना कोई और पड़ोसी जानकार होता था, तो वहां हम अपने स्टाफ में तो चलो ज्वाइन करते थे तो जान जाते थे कि भाई ये मैनेजर साहब आए हैं, ठीक है। फिर हम उनके माध्यम से या ब्रोकर्स के माध्यम से मकान लेते हैं, जिस मोहल्ले में मकान लेते हैं जानते हैं आपके वहां पे, फिर हमें कोई भी जानकार नहीं होता, लोग दरवाजे से झांक के देखते हैं कि कोई नया मुर्गा इस मोहल्ले में आया है है ना, कि कौन आया है, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। छोटा शहर होता है तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं कि साहब आप नए आए हो क्या, आपको कुछ चीज चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, लेकिन बड़े शहरों में कोई नहीं पूछता।

0: चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी संस्था ने इतने समय में इतनी प्रगति कर ली है, क्या सरकार से आपको कोई सपोर्ट या सहायता मिलती है?
1: सरकार से सपोर्ट और सहायता की बात करते हैं आप, तो एसच अगर ये कोई हम कहें कि कोई कोलैबोरेशन हुआ है तो वो यहाँ तो राजस्थान में नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश सरकार से जरूर हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा इसमें हमने ये शुरू से ध्येय रखा है कि पैसे का लेन देन इसमें नहीं होगा, इसलिए हमारी संस्था टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काम करती है। पूरे देश में हमारे कोई ऑफिस नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं है, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगभग जीरो सी है। तो सरकार के पास भी हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। अब यहाँ हम राजस्थान सरकार के पास जब जब गए तो उनके साथ में यही एक समस्या थी कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी कि इनकी मदद कैसे करें, क्योंकि जो संस्थाएं उनके पास जाती हैं वो या तो अनुदान मांगती हैं, है ना,
0: या जमीन
1: या जमीन, जमीन मांगती हैं, इसके अलावा उनके पास में और कुछ है नहीं। और वो कहते हैं साहब आप बताइए आपको जमीन चाहिए या कुछ और चाहिए, तो हमें बताएं। हमें ना तो जमीन चाहिए ना आपका पैसा चाहिए
0: जी।
1: हमें तो आपसे प्रचार में मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास में प्रचार के लिए पैसा नहीं, हम पैसा इकट्ठा करते ही नहीं है, तो हमारे पास में प्रचार करने के लिए एडवर्टाइज करने के लिए खर्चा नहीं है, तो आप वो कर दीजिए। अब वो उनके बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने एक तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है,
0: अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट,
1: पुलिस डिपार्टमेंट है तो हर पुलिस के थानों में अलग अलग बीट बनी हुई होती है। बीट का मतलब होता है कि एक थाने में ऐसा एक क्षेत्र जिसका एक प्रभारी एक पुलिस कांस्टेबल होता है, उस एरिया की जो भी क्रिमिनल गतिविधियां होती है उसकी सूचना देना, सुराग देना, इंफॉर्मेशन रखना, वो उस बीट कांस्टेबल का काम होता है
0: जी।
1: और यहाँ राजस्थान में उनकी ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी शामिल है कि उस बीट के जो बुजुर्ग हैं, अकेले बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखें, उनसे बीच बीच में जाके मिले, उनका हालचाल पूछे, ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में है।
0: ऑफिशियल ठीक है।
1: हाँ, हमें किसी ने बताया तो हमने देखा कि भाई ये तो कभी तो देखा नहीं हमने किसी बुजुर्ग के पास इनको बीट कांस्टेबल को आते आते, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे हमने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, आपकी जो बीट कांस्टेबल है उनके पास ऐसी ड्यूटी होती है, लेकिन चूंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी, ये आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है, तो वो इतना कर नहीं पाते, हमें इतना कर दीजिए कि ऐसे बुजुर्गों को बीट कांस्टेबल के माध्यम से हमारे साथ जोड़ दीजिए, देखभाल का काम हम कर लेंगे।
0: ओके।
1: तो उन्हें हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने लिखित में सारे थानों को ये आदेश जारी किया कि वे अपने बीट कांस्टेबल्स को टाइम बैंक के साथ में कनेक्ट करें। तो एक तो ये सरकार के साथ हमारा कनेक्ट है ना, क्योंकि पुलिस भी डिपार्टमेंट आसानी से ऐसे पत्र देती नहीं,
0: ठीक है, सही,
1: विश्वसनीयता देख के ही उन्होंने ऐसा पत्र जारी किया।
0: जी जी जी जी।
1: दूसरा जो है, जब हम यहाँ एक जो समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय होता है जो इस तरह के समाज कल्याण से संबंधित कामों को देखता है, उनके पास गए, उन्हें हमने कहा ये, तो ये बात तो उनको समझ में आई नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कर दिया कि जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां सीनियर सिटीजन से संबंधित काम होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अपना जो देवस्थान विभाग है जहां वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा योजना होती है, नगर निगम है ना, तो वहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट से उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि साहब जो भी टाइम बैंक से संबंधित आवश्यकता हो आप इनकी यथासंभव मदद करें।
0: चलिए,
1: तो उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का हमारे साथ में बड़ा अच्छा तालमेल हुआ।
0: नहीं, पुलिस से अगर ये मदद मिल जाए, कम से कम सरकार ने ऐसा सर्कुलर इशू तो किया है, यही बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ हाँ हाँ।

0: अच्छा ये बताइए कि आंध्र प्रदेश सरकार से आपके टाइम में का क्या जुड़ाव हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए मुझे।
1: उसमें क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश सरकार को स्वयं ये विचार आया कि अपने बुजुर्गों के लिए, क्योंकि साउथ में बुजुर्ग ज्यादा हैं नॉर्थ के कंपेरेटिवली, है ना, जहां पे भी, हाँ जहां पे भी अपने शैक्षणिक स्तर जहां अच्छा है वहां पे बर्थ कंट्रोल भी अच्छा है और वहां पे फिर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। तो आंध्र प्रदेश सरकार को ये विचार आया कि ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जो बुजुर्गों की देखभाल हो सके। तो उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया इस काम के लिए, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम डायरेक्ट,
0: अच्छा
1: उनके थ्रू ये काम चला। उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया कि पता करो साहब यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने जब काफी रिसर्च की तो देखा कि एक टाइम बैंक ऑफ इंडिया देश में ऐसा काम कर रहा है और कोई संस्था उनको मिली नहीं। तो उन्होंने पूरी वेबसाइट हमारी अच्छे से छानी, देखी, समझने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, कुछ सवाल थे वो हमसे बात की, उन्होंने, हमने उनके जवाब दिए, उससे वो काफी संतुष्ट हुए। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आरएच लेवल पे एक मीटिंग हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई,
0: अच्छा,
1: जिसमें उनके बड़े उच्च स्तर के पदाधिकारी थे और हमारे यहाँ के टीम के भी लोग थे। हमने पूरा प्रेजेंटेशन बना रखा था कि हम कैसे सरकार के साथ काम कर सकते हैं। वहां पे भी हमारा यही था कि सर हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे जमीन नहीं चाहिए, हमें आपसे जो जो चाहिए वो एक तो प्रचार में मदद चाहिए हमें खास तौर पे, और दूसरा हमें कि अगर हम यहाँ से कोई आते हैं वहां पे तो हमें एक प्रोटोकॉल की तरह मिल जाए कि भाई हमें कम से कम रहने का खर्चा तो नहीं हो, ट्रेवल का खर्चा हम कर लेंगे, रहने का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा बच जाए, प्लस हमारी जो मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स के लिए आपके पास बहुत सारी जगह है, सेंटर्स होते हैं, वो हमें आप दे दीजिए, उसमें आपका कोई पैसा लगना नहीं। तो वो इसके लिए तैयार हो गए, उन्होंने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेज दिया वहां पर, बोले आप कैसे शुरू करेंगे। हमने कहा कि एक आप पायलट प्रोजेक्ट कर लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का, उससे आपको भी तसल्ली होगी हमें भी तसल्ली होगी, एक साथ पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय हम ऐसे चले तो ज्यादा बेहतर है। उन्हें ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने हमसे ही चुनने के लिए कहा। हमने विशाखापट्टनम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना और 18 मार्च 2025 को सरकारी स्तर पर आयोजित समारोह में, जहां पे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के सभी लगभग अधिकारी उपस्थित थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, कलेक्टर के हाथों से इसका उद्घाटन करके हम पायलट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में शुरू करके आ चुके हैं और वहां पे हमने अपने एडमिन्स मनोनीत कर दिए और वहां पे अब काम हमारा चल रहा है।
0: चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपके कई राज्यों में उपस्थिति हो गई है टाइम बैंक की। आप मुझे ये बताइए कि श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया अगर आप गूगल करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आपको टाइम बैंक के बारे में मिल जाएगी। और जैसे कि अभी अभी बीच में जैन साहब ने भी बताया था इसके बारे में।

0: चलिए, अब टाइम बैंक का ये सफर बहुत लंबा रहा है आपका, इस दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जो आपसे हमसे शेयर करना चाहें, जिसे आप भूल नहीं पाते हो, ऐसी कोई बात हो तो बताइए।
1: हाँ, ऐसी बात है सर। बीच में कुछ अखबार में खबरें आई थी, कभी कभी अभी भी आ जाती है, कि
0: जी
1: बुजुर्ग दंपति घर में अकेले थे, नौकर आता था काम करके चला जाता था। चांस की बात है कि नौकर छुट्टी पे था
0: जी
1: और उस बुजुर्ग दंपति की डेथ हो गई, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग थे कि घर से आना जाना संभव नहीं था।
0: जी
1: अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे नौकरी से रिटायर हुए थे, जिनके बच्चे भी अच्छे सेटल हैं, शहर से बाहर हैं, दूर हैं। और पड़ोसियों ने खबर करके ये पुलिस को बताया कि साहब इस घर से बदबू आ रही है, और तब जाकर ये पता लगा कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो ये बड़ी पीड़ादायक, मुझे इसने बड़ा झकझोर दिया कि देखिए क्या स्थिति है आज हमारे समाज की, कि जहां पर हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि किसी को ऐसे उससे गुजरना पड़े और कोई भी ना हो। तो ये बड़ा एक
0: बिल्कुल
1: मेरे को उससे दुखित
0: सही
1: किया।
0: बात। नहीं, ऐसी
1: एक ए,
0: घटना है।
1: हाँ
0: जी
1: एक
0: जी
1: एक इंसिडेंस और मैं शेयर करना चाहूंगा कि
0: जी
1: मतलब हम ये तो नहीं कहते कि सारी पीढ़ी ही ऐसी है, लेकिन
0: जी
1: फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार का ध्यान नहीं रखते, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं। और सरकार ने भी इसके लिए वृद्ध जन भरण पोषण अधिनियम बनाया है, जहां जो ध्यान नहीं रखते उनको पाबंद किया जाता है, उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादातर तो बच्चे दुखी होते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि मजबूर हैं, दूर हैं,
0: जी
1: विदेश में हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ होते हुए भी, साथ रहते हुए भी उनकी कदर नहीं करते। तो ऐसा एक वाकया मेरे साथ आया था, हमें किसी ने फोन करके बताया, उन्हें कहीं से पता लगा हुआ टाइम बैंक के बारे में। तो उन्होंने फोन करके बताया कि साहब ऐसे एक अकेली लेडी रहती है, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है और वो बीमार हो गई है, हम तो उनके पड़ोसी हैं, हमने उनको SMS हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, लेकिन हम तो नौकरी करते हैं और हम इतना टाइम दे नहीं सकते, हमने तो ये मानवीय आधार पर कर दिया है, आप जाकर जो है ना उनकी अगर कर सकते हैं तो देखभाल कर ले। तो वो हमारे मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलिए मानवीय आधार पर ऐसी स्थिति है तो हमें संभालना चाहिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो संभालने के लिए होना भी जरूरी है, प्राइवेट
0: जी
1: हॉस्पिटल में तो फिर भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो
0: जी
1: वहां पे हमने अपने मेंबर्स को कहा, हमारी महिलाएं जो थी वो महिला विंग वहां पर जाके उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला, रात को भी उनके साथ में रुकते थे और पूरा देखभाल उनका चलता रहा। जब
0: चलता
1: वो थोड़ा
0: रहा।
1: सा ठीक हुई और थोड़ा सा बातचीत करने लायक हुई, तब उनसे हमने पूछा कि भाई आपका खर्चा कैसे चलता है, कैसे होता है, कौन है कौन नहीं, आपको भर्ती करा के गए थे, वो दोबारा आए भी नहीं कभी भी, क्योंकि अगर एक बार भर्ती कराया तो दिन भर नहीं रुक सकते, पर कभी कभी तो हाल पूछने आ ही सकते हैं पड़ोसी। तब
0: ना, सही बात है।
1: हमें पता लगा कि वो उनके रिश्तेदारी थी, भतीजी और उसके दामाद थे, पड़ोस में ही
0: हाँ
1: रहते थे, लेकिन वो इससे बचने के लिए वहां पे भर्ती कराकर और पार हो
0: चले
1: गए,
0: गए।
1: चले गए। तो बताइए मतलब कितनी दुखद स्थिति है। तो
0: हाँ, ये तो कद
1: समाज में ऐसी
0: स्थिति है।
1: स्थिति होनी चाहिए कि कम से कम
0: हो
1: इनकी देखभाल हो सके। ये
0: बिल्कुल,
1: कुछ घटनाएं थी जिन्होंने बड़ा झकझोर दिया मुझे।
0: यही बात है, बिल्कुल। नहीं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं, जो पुरानी रिटायर्ड हीरोइंस हैं या हीरोज हैं, उनकी कई बार डेथ हो गई है और बाद में खबर नहीं आई है, ऐसी बहुत है।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परवीन बॉबी का काफी सुनने में आया था।
0: परवीन बॉबी का एक, और शुभा कोटे या दुर्गा कोटे, उसका भी ऐसे
1: हाँ,
0: बहुत। जी
1: मतलब ऐसे
0: अच्छा
1: भी देखे हमने जिनके पीछे लवाजमा होता था, जिनके पीछे लोग
0: हाँ
1: आगे पीछे
0: या
1: घूमते थे। हाँ,
0: सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी होती थी, बिल्कुल।
1: सेलिब्रिटीज होते थे और
0: जी,
1: किस अंतिम घड़ी में उनके साथ में बड़ा
0: कोई नहीं, तुम कोई।

0: चले।
1: बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जैन साहब आप। चले आप ये थोड़ा सा बदलते हैं इसको, आपके कोई खास शौक हो, कोई आपका फेवरेट गाना हो या कोई ऐसी चीज हो तो आप बताएं हमें क्या क्या शौक है जैन साहब के, एक व्यक्ति के रूप में आपके क्या शौक है।
2: शौक तो ये है कि मतलब कभी कभी गाने गा लेते हैं, पहले तो हम प्ले वगैरह भी करते थे।
1: जी जी जी जी,
2: सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे, डिबेट विबेट का शौक रहा है।
1: जी जी, जी।
2: अभी भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं गाने वाले।
1: अरे वाह।
2: और तो कुछ गाने ऐसे हैं, आप भी गानों का शौक रखते हैं, मुझे पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे गाने बने हैं कि आप किसी भी मौके के लिए ढूंढ लीजिए, आपको गाना मिल जाएगा। लड़की विदा हो रही है तो बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना। बारात दरवाजे पर आई तो आज मेरे यार की शादी है। बच्चे का जन्मदिन है तो हम भी अगर बच्चे होते हैप्पी बर्थडे। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो जब हम सेवा की बात करते हैं तो राज कपूर साहब की फिल्म का एक गाना, अनाड़ी फिल्म का गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें वो लाइन आती है, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं, है ना। तो वो जो गीत है ये मुझे बड़ा प्रिय लगता है।
1: चलिए, मुकेश का गाना है ये,
2: मुकेश जी का गाना है।
1: हुआ है बहुत बड़ी, और राज कपूर साहब पे फिल्म आया गया है। वाह, बहुत ही बढ़िया गाना, और आपके टाइम बैंक की थीम से भी ये बिल्कुल जुड़ता है।
2: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
1: किसी
2: का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते में हो तेरे दिल में प्यार,
1: दिल में प्यार,
2: जीना इसी का नाम।
1: तो आप अपना समय दे रहे हैं, अपना लोग समय दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो चलिए, जैसा मैं अंत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर टाइम बैंक को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है।
2: जी जी,
1: और आपके प्रयासों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी अवार्ड दिया गया है। हमारी तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से इस सम्मान के लिए बधाई स्वीकार कीजिए। आप इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। इस अवसर पर यदि कोई संदेश आप देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: संदेश सीधा सा और साफ है कि जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, वे पहला काम तो ये करें कि अगर उनके माता पिता हैं तो एक जो संयुक्त परिवार की हमारी प्रणाली थी, कथा थी, जिसमें हर एक का ध्यान रखा जाता था, तो वे उनका ध्यान रखें, उन वृक्षों का ध्यान रखें जिन्होंने जवानी में उनको फल दिए थे, छाया दी थी। आज उनके पास फल नहीं है, वो जर्जर हो गए हैं, उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें। पहला काम ये करें ताकि हमारे देश में वृद्धाश्रमों की या किसी भी अकेले बुजुर्ग को किसी भी त्रासदी से ना गुजरना पड़े। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किन्हीं के बच्चे भी नहीं है, ऐसे बुजुर्ग हैं, या आपके बुजुर्ग नहीं है आपके पास में, तो दूसरे बुजुर्गों का सहारा बने, उनका संबल बने, इस अभियान के लिए टाइम बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े। निशुल्क काम है, वेबसाइट है timebankofindia.com, उससे जुड़े। इसमें कोई समय की बंदिश आपके पास नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते कुछ करना है या हर दिन कुछ करना है या महीने में कुछ करना है। ये वैसा बैंक है जहां आपके पास जब समय हो तो जमा कीजिए। बैंक में भी आप जब पैसा होता है तो जमा करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते हैं, जरूरत होती तो निकालते हैं। इसमें भी जब आपके पास समय होगा और कोई अनुरोध हेल्प का आएगा, आप कर सकें तो आप यस कीजिए। जो साथी कहते हैं कि मैं तैयार हूं, हम उन्हीं को ये रिक्वेस्ट असाइन करते हैं, तो जुड़ जाइए, कोई नुकसान नहीं है इसमें जुड़ने में। ये संदेश हम देना चाहेंगे।
1: अब एक और, चूंकि हमारे इस रेडियो स्टेशन की ऑल इंडिया रीच है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी कोई प्रेजेंस है टाइम बैंक ऑफ इंडिया की?
2: जी हाँ, उत्तराखंड में देहरादून में हमारी यूनिट बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में तो कई जगह है, कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, कुछ शहर और भी है, एकदम मुझे याद नहीं आ रहे। उत्तराखंड में अभी हमारा देहरादून में है।
1: अच्छा,
2: हाँ, हिमाचल में शिमला में है।
1: तो उससे रिलेटेड सवाल ये है कि अगर अपने शहर में कोई एक टाइम बैंक की उपस्थिति चाहता है या उसकी शाखा चाहता है तो वो क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से आगे बढ़े वो?
2: देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मित्रता के लिए मिलना जरूरी है, ठीक है ना, और मेल मिलाप करने के लिए कुछ सदस्यों का होना जरूरी है। तो अगर कोई भी शुरू करना चाहता है वो थोड़ा सा इसका प्रचार करे और कुछ सदस्य बनाए। अगर आपके पिन कोड के क्षेत्र में, आपके आसपास के क्षेत्र में 10 मेंबर भी हो जाते हैं,
1: अच्छा,
2: ठीक है ना, तो हम आपका एक यूनिट अलग से बना देंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें हम आपको एडमिन मनोनीत कर देंगे जिनका काम सदस्यों को वेरीफाई करना है और मंथली मीटिंग आयोजित करना है। और तीसरा काम होता है उनका कि जब कभी कोई हेल्प रिक्वेस्ट आ जाए तो उसको बाकी मेंबर्स को चैनलाइज करना है, वेबसाइट पे उसकी प्रविष्टि करनी है। और इन सब कामों के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप आपका ऑफिस है, आप कहीं से भी इसको संचालित कर सकते हैं। आप छुट्टियों पे घूमने गए हुए हैं नैनीताल और आप लखनऊ में हैं, तो भी आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं, सिवाय फिजिकल मीटिंग के और या फिजिकल हेल्प देने के, आपकी फिजिकल प्रेजेंस की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो भी करना चाहें वो आगे बढ़े, आए, जुड़े और हमें बताएं, हम उनको एडमिन की पावर्स दे देते हैं। जिनको पावर्स होती है उनको वो मेंबर्स का डाटा उपलब्ध होता है ताकि वे उनको तो देख सके और उनको वेरीफाई कर सके।
1: जी जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो अगर आपको चाहते हैं कि टाइम वर्क ऑफ इंडिया की प्रेजेंस आपके शहर में हो तो आप जैन साहब से या संपर्क कर सकते हैं, या इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आगे बढ़ना है।
2: तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, एक जानकारी और दे दूं श्रोताओं को कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें एक सेक्शन हमने दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहे अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, तो वहां पर हमने अपने सारे एडमिन्स की डिटेल, हमारी गवर्निंग काउंसिल की डिटेल वेबसाइट पे डाली हुई है। वहां आप जाइए, आवर टीम इस नाम से एक सेक्शन मिलेगा आपको, बिना मेंबर बने हुए भी वो सेक्शन मिलता है। आवर टीम में जाएंगे, वहां पे हमारे ऑल इंडिया में जो जो एडमिन्स हैं उनके नाम मोबाइल नंबर उपलब्ध है। आप किसी शहर से हैं और वहां पे एडमिन है कोई हमारा तो उनसे संपर्क कर लें, नहीं तो हमारे नंबर है हमसे संपर्क कर लें। हमारी मेल आईडी है timebankofindia@gmail.com, आप मेल कीजिए उससे भी हो जाएगा। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां आप अपना संदेश लिखिए उससे भी हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। तो डॉक्टर जैन, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके इस मिशन की सफलता के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, यही हमें हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम विज्ञापन नहीं देते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या दृश्य श्रव्य माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हम उसी का प्रयास करते हैं। इसमें आपने योगदान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
1: थैंक यू।
0: जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

0: चिन्नम्मा, मुन्ना राजकुमार करेला बनेंगे, सोनू राजकुमार प्याज बनेंगे, टमाटर बनेंगी पिंकी, पिंटू राजकुमार आलू बनेंगे और मुर्गन राजकुमार गाजर बनेंगे। सब्जियों की महासभा आरंभ होती है।
1: आज हम सब्जी सब्जी खेलेंगे।
2: हाँ, सब्जी सब्जी खेलेंगे।
3: चंदा मत, तुम मिर्ची बनोगी?
4: पिंकी, तुम टमाटर बनोगी?
5: अरे मैं क्या बनूंगी, मुझे भी तो बताओ। मैं भिंडी बन जाती हूँ।
6: मैं करेला बनूंगा।
7: तुम
8: टमाटर बनोगे?

0: राजकुमारी मिर्ची।
1: हाँ पिताजी।
0: तुम जानती हो कि मुझमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है, मैं कई रोगों से लोगों को बचाता हूँ। हाँ, मैं या तुम्हारे भाई तुमसे कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। हम सब मिलकर रहें तो सबका भला होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, बेटी राजकुमारी मिर्ची, तुम कुछ कहो बेटी।
2: पिताजी, मैं स्वाद में तीखी हूँ। लेकिन लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाती हूँ।
0: बिल्कुल।
2: उनकी त्वचा की रक्षा करती हूँ।
0: सही।
2: मुझे ये समझ में नहीं आता कि राजकुमार टमाटर, करेला, आलू और गाजर क्या करते हैं। प्यास, तुम तो बताओ तुम क्या करते हो।
3: बहन मिर्ची, मैं स्वाद में बहुत सादी हूँ। मैं सभी सब्जियों के साथ घुल मिल कर रहती हूँ।
2: अच्छा।
3: और हाँ, मैं बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती हूँ।
2: ओह, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं फिर भी खुद को बड़ा समझती हूँ।
3: अच्छा, बड़ा समझती हो।
4: हाँ, बड़ा तो मैं भी हूँ। मैं करेला हूँ। मैं कड़वा तो हूँ पर सेहत के लिए अच्छा हूँ। तुम सब मुझे कैसे भूल गए।
5: अरे बताओ बताओ कौन हो तुम।
4: मैं हूँ सब्जियों का राजा आलू।
2: आलू
6: आलू
2: आलू तो हमें बहुत पसंद है।
6: आलू के फायदे तो बताओ।
4: मैं सभी को शक्ति देता हूँ।
7: मुझे भी चाहिए शक्ति।
8: मुझे भी शक्ति। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे चाहिए।

0: ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, इनसे मिलजुल कर रहना चाहिए।
1: जी पिताजी, मैं इनके साथ मिलजुल कर रहूंगी।
0: शाबाश।

0: गाजर, आलू, करेला, तुम सब मेरे भाई बहन हो।
1: हाँ मिर्ची, हम
2: भाई बहन हैं।
3: तभी अचानक से राजकुमारी मिर्ची गिर पड़ती है।
0: ओ, मैं तो गिर गई।
1: अरे मिर्ची,
3: सभी भाई बहन उसे मिलकर उठाते हैं।
4: देखा बेटी, तुम्हारे भाई बहन तुम्हें कितना चाहते हैं। चाहते हैं ना?
0: जी पिताजी।
4: सभी ने मिलकर तुम्हें उठाया?
0: हाँ पिताजी।
4: हाँ, देखो बेटी, मिलकर रहने से सभी का फायदा होता है, होता है कि नहीं?
0: हाँ पिताजी।
4: हाँ, प्यार फैलता है, एकता।

0: बढ़ती है ना एकता।
1: हाँ पिताजी।
0: हाँ तो इसलिए बेटा हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ पिताजी आप सही कहते हैं, मैं खुद पर घमंड करती थी, असली प्यार तो मिलजुल कर रहने में है।
0: हाँ।
1: मैं आगे से कभी घमंड नहीं करूँगी।
0: ये हुई ना बात, शाबाश बेटी।
2: तो सुना आपने बच्चों, सभी सब्जियों के कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं, इसीलिए अब से ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। बात ये है बच्चों कि हमें है सभी सब्जियां खाना।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: शिक्षक जो गढ़े बचपन को,
4: ये कार्यक्रम विशेष रूप से चर्चा करता है कि बच्चे के जीवन के सर्वांगीण विकास में अभिभावक और मुख्य रूप से शिक्षक की क्या भूमिका होती है।
2: साथियों, शिक्षकों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षण के परंपरागत ध्वनि कार्यक्रमों की शैली से थोड़ा अलग है। यह कार्यक्रम विश्व के महान आविष्कारक और वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के जीवन और उपलब्धियों के इर्द गिर्द बुना गया है।
5: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
6: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
2: साथियों, बच्चा जिज्ञासाओं का पिटारा होता है, वह तो प्रश्न पूछेगा ही, तब तक जब तक हम उसे पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन यदि उसे हतोत्साहित किया तो शायद फिर वह कभी नहीं पूछेगा।
5: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
7: अपनी माँ को यह चिट्ठी दे देना।
8: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
9: माँ ये चिट्ठी।
5: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
6: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
9: माँ आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
6: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
9: अच्छा,
6: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
9: अच्छा,
6: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ ठीक है। बहुत अच्छे।
2: तो शिक्षक मित्रों, ये घटनाक्रम एक बेहद गंभीर प्रश्न पैदा करता है। जरा सोचिए कि यदि आप बालक थॉमस एडिसन के शिक्षक होते तो किसी बच्चे का मूल्यांकन कैसे करते और उसकी सूचना बच्चे के अभिभावकों को किस प्रकार देते। साथियों, आप भी शिक्षक हैं। आपने सुना कि एडिसन की माँ जो स्वयं शिक्षिका थी, उन्होंने किस प्रकार अपने बच्चे के किसी भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं किया। तो फिर क्यों ना हम भी यथासंभव बिना खीजे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें।
6: उनकी माँ जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
10: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा।
2: तो सुना आपने दोस्तों, रेल के डब्बे में ही प्रयोगशाला जिसका अंतिम परिणाम दुर्घटना थी। जी हाँ, बच्चा कौतुक और रोमांच से भरा होता है, वह जरूर नए नए प्रयास करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में हमें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। पीटना समाधान नहीं है। तो आइए अब सुनते हैं उनकी शिक्षक माँ ने किस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया।
10: उनकी माँ उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी माँ के कारण ही उत्पन्न हुई।
6: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
10: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
2: तो साथियों, जैसा कि आपने सुना, एडिसन की माँ स्वयं शिक्षिका थी, लेकिन अक्सर अभिभावक शिक्षक नहीं होते, है ना? तो कितना अच्छा हो यदि बच्चे के जीवन में एडिसन की माँ की तरह ही हमारी भी सकारात्मक भूमिका हो जाए।
6: थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
10: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे किसी के लिए जीना है। कोई ऐसा है इस दुनिया में जिसे मुझे निराश नहीं करना है।
2: साथियों, हम सब जानते हैं कि थॉमस एडिसन को मुख्य रूप से बिजली के बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है। वैसे उन्होंने 1300 के लगभग आविष्कार किए और उनका पेटेंट लिया।
10: बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
6: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
10: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
6: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
10: लगभग 10,000 बार।
6: 10,000 बार?
10: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
6: अच्छा,
10: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
6: अरे वाह।
10: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
6: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
10: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
6: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
10: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
6: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गई। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
10: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंटिया भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
4: और अब सुनते हैं एक अरबी लोक कथा जिसमें अपराधी के विरुद्ध गवाही दे रहा है एक दरख्त।
11: पुराने जमाने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपए का दावा किया। काजी ने पूछा,
12: तुम्हारे पास कोई गवाह है?
11: आदमी ने कहा,
12: नहीं, बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा। हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं।
11: दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला,
13: हुजूर, ये शख्स बहुत कसमें खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
11: काजी ने जब उस आदमी को इस तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि उसका दावा सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया,
13: हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपए की अशद जरूरत थी, ये बहुत परेशान था, इसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया, मुझे इसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने जिंदगी भर की कमाई जो सिर्फ 100 रुपए थी अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए।
11: काजी ने पूछा,
12: तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे?
13: एक दरख्त के नीचे।
12: जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है?
11: काजी ने दूसरे शख्स से पूछा,
12: तुम क्या कहते हो, क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है?
14: ये झूठ बकता है। मैंने न उस दरख्त को देखा है और न ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं।
11: काजी ने उसकी बात सुनकर कहा,
12: अच्छा तुम अभी यहीं बैठो।
11: फिर दावा करने वाले शख्स से कहा,
12: तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो।
11: काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा,
13: काजी साहब मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा।
11: काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा,
12: ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो।
11: मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया,
12: वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं?
11: उसने जवाब दिया,
12: अभी नहीं।
11: काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई, उससे कहा,
13: काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है।
11: वो कुछ देर तक जवाब के इंतजार में वहीं खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया,
13: हुजूर, दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है।
12: तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया।
11: काजी ने फिर ये फैसला सुनाया,
12: मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपए उसे वापस दिए जाएं।
11: दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला,
14: काजी साहब मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया?
11: काजी ने जवाब दिया,
12: बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज न देते कि वो अभी वहां ना पहुंचा होगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, चाबुआ की आवाज।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के हर कोने से और हर जाति और उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर पूर्व के राज्यों के रणबांकुरों ने भी अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। इन्हीं में से एक महिला क्रांतिकारी थी रानी गाइडेनल्यू, जिन्हें उनके गांव वाले रानी पुई नाम से पुकारते थे। रानी पुई का अर्थ है रानी माँ। गाइडेनल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को नागालैंड के लांगकाओ नामक स्थान पर हुआ। वो रांगमेई नाम की आदिम जाति से संबंध रखती थीं।

0: हत्या चार बढ़ते ही जाएंगे, इसके आपसे करना पड़ेगा जरूर।
1: क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे बंद करो ये गाना।
2: अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरे बात छोड़ दो।
1: अरे तुझे चौप, कान खोल कर सुन लो, कल से ये तमाशा, ये मजमा, ये नाच खाना बंद। अब यह जमीन हमारी है, तुम लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं। अब ना कोई ये लकड़ी लेगा और ना कोई अपना जानवर चलाएगा इधर। ओके,
3: अरे ये तो हमारी जमीन है,
2: इस मिट्टी में तो हम पैदा हुए हैं, ये कैसे दे देंगे हम आपको?
3: अरे भला फिर हम क्या खाएंगे, अपने जानवरों को क्या देंगे?
2: ये तो गलत है, अत्याचार है हम पर।
3: अरे हमारे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे।
1: चलो भागो यहाँ से, हट जाओ।
4: भाइयों, हिम्मत और समझदारी से काम लो, हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे।
5: हाँ जरूर लड़ेंगे, बिल्कुल।
4: हम अपनी जमीन अवश्य वापस लेंगे, चाहे कुछ क्यों ना करना पड़े।
2: हाँ जादो नाग भैया, हम लड़ेंगे, हमें अपने हथियार उठाने ही पड़ेंगे, ये फिरंगी ऐसे नहीं मानेंगे।
3: कल से हम सभी अलग अलग पहरा देंगे, हम भी देखते हैं कैसे आते हैं वो दोबारा इधर।
2: हाँ हम उन पर हमला करेंगे, हम उन्हें यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाने देंगे, ये जंगल हमारा है।
4: ठहरो ठहरो ठहरो, गुस्से से बात और बिगड़ सकती है, पहले हम उनसे ऐसा न करने के लिए कहेंगे। हाँ हम उन्हें समझाएंगे कि इससे हम आदिवासियों का जीवन खत्म हो जाएगा। हम सत्याग्रह करेंगे, शांति से धरना देंगे, अंग्रेज अफसरों का घेराव करेंगे।
6: लेकिन लेकिन जादो भैया, अंग्रेज मानेंगे नहीं, उनकी नीयत ठीक नहीं है, कल कल वो हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे और हम सबको मार डालेंगे।
4: नहीं गाइडिंग लू, जो अभी हुआ नहीं उसकी चिंता कैसी, हमें उम्मीद है कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी हमारी बातें जरूर सुनेंगे।
6: जादो भैया, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो?
4: तब तेरा ये भाई चुप नहीं बैठेगा गाइडिंग यू, हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे।
3: हाँ ये ठीक रहेगा।
1: यही है जादो ना।
6: अरे अरे कैसे पकड़ लोगे हमारे भैया को?
1: हटो पीछे। नहीं मोंटी, ये ले।
3: क्यों मार रहे हो?
4: ए कायर, इसे क्यों मारता है? मैं तैयार हूँ मार खाने को, हिम्मत है तो मुझे मार।
2: यही है वो अंग्रेज अफसर, यही अपने सिपाहियों को भेजता है। देखो तो देखो कैसे आंखें दिखा रहे हैं, देखो देखो इसे।
1: सिपाहियों, अरे खड़े खड़े मुझे क्या देखते हो? हटाओ सबको इधर से, मारो पीटो भगाओ इधर से। इसके साथियों को भी ले चलो। जादो ना चला था सबको भड़काने, हमसे टकराएगा तू।

0: बच्चों, 1931 में जादोनांग पर मुकदमा शुरू हुआ और एक दिन उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अंग्रेजों का अत्याचार और बढ़ता गया। मणिपुर, असम और नागालैंड के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ियों और पेड़ों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। मासूम आदिवासी मारे जाने लगे, कभी भूख से तो कभी गोरे अंग्रेजों की गोलियों से। यही नहीं, उन पर जुर्माना लगाया गया, उनके लाइसेंसी हथियार तक छीन लिए गए। तब आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्ष की गाइडन ल्यू ने किया। और उनके नेतृत्व में नागा क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार रात का समय था, नागाओं की एक गुप्त स्थान पर बैठक हो रही थी।
1: भैया जादोनांग की कुर्बानी को हम बेकार नहीं जाने देंगे। अब हमारे पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
2: कोई रास्ता नहीं है हमारे पास।
1: सब लोग अपनी औरतों बच्चों को सुरक्षित जगहों पर भेज दें। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार रहे।
2: हम
1: अंग्रेजों को मजा चखाएंगे, उन्हें इस गांव में घुसने नहीं देंगे। लेकिन खबरदार, सारा काम सावधानी और हिम्मत से हो। अंग्रेज कोई भी चाल चल सकते हैं।

0: लगता है पहाड़ी के उस पार कुछ अंग्रेज सिपाही हैं। साथियों तैयार हो जाओ।
1: तैयार है।
0: इससे पहले कि वो इधर आए हम उन पर हमला कर देंगे। इस लड़ाई में कई अंग्रेज सिपाही मारे गए। लड़ते लड़ते कुछ आदिवासी भी जान गंवा बैठे। बच्चों गाइडन लियू को सब प्यार से रानी गाइडन लियू कहते थे। ये छापामार दस्ता उन्होंने 1933 में बनाया। इन नागा आदिवासियों ने अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी और अंग्रेजों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अंग्रेज तो जैसे ढीठ हो गए थे।
2: सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को बताया जाता है कि अपने सारे हथियार एक हफ्ते के भीतर पुलिस पोस्ट में जमा कर दें, चाहे ये लाइसेंसी हो या बिना लाइसेंसी। ऐसा न करना अपराध माना जाएगा और उन्हें पकड़कर बंद कर दिया जाएगा। कंपनी सरकार ने टैक्स लगाने का भी फैसला लिया है और टैक्स न देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा।
0: अब तो हद हो गई है। ये अंग्रेज किसी ना किसी बहाने हमें यहाँ से निकाल कर ही दम लेंगे।
3: हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इन्हें टैक्स कहाँ से देंगे?
4: टैक्स भी किस बात का, हमारा देश हमारी धरती, फिर कैसा टैक्स?
3: और क्या, हम इंग्लैंड में तो नहीं रहते, और फिर ये अंग्रेज हमें खाने कमाने दे तब ना।
4: रानी रानी, खबर मिली है कि शाम तक अंग्रेजों के सिपाही इधर आने वाले हैं। जरूर वो तुम्हें खोजने के लिए छापे मारेंगे, तलाशी लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ये जगह बदल दो, हम सब संभाल लेंगे।
0: नहीं, नहीं।
5: रानी भूलना मत, जीते जी इस गांव का कोई भी आदमी गद्दारी नहीं करेगा। हम जान दे देंगे लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेंगे।
4: नहीं खोलेंगे। और खबरदार, किसी ने टैक्स दिया तो
6: नहीं, नहीं, कोई देगा, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा।
0: बच्चों इस तरह रानी गाइडन लियू और अंग्रेज सिपाहियों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा। रानी और उनके साथी ठिकाने बदलते रहे। गाइडन लियू ने अंग्रेजों के खिलाफ टैक्स न देने का अभियान छेड़ा और किसी ने टैक्स नहीं दिया। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने अचानक गाइडन लियू के खुफिया ठिकाने पर छापा मारा। अफरा तफरी, लड़ाई, गोलियां शुरू हो गईं।
7: सिपाहियों, यस सर, पकड़ लो इसको, भागने ना पाए,
8: ठीक है,
7: इधर चल, चल, चल, पकड़ो सिपाहियों,
9: छोड़ो, छोड़ो मुझे, कायरों की तरह क्यों पकड़ते हो? हिम्मत है तो पहले लड़ाई करो।
10: अरे चल यहाँ से, तुम्हारा खेल खत्म, अब जेल में करना लड़ाई।
9: नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो छोड़ो मुझे।
10: सिपाहियों, जो भी बच गया है सबको पकड़ के बांट दो, बहुत परेशान किया है हमको।
9: तो मुझे ले चलो, लेकिन इन सबको छोड़ दो, छोड़ो इन्हें।
10: अच्छा,
9: छोड़ दो।
10: अच्छा, इनको यही छोड़ दूं? वाह, ताकि ये लोग फिर हमारे सिपाहियों को मारें, हमसे लड़ाई करें। ओ, पकड़ जाओ, डाल दो इसको कालकोठरी में।
0: इस तरह रानी गाइडन लियू ने अपनी परवाह किए बिना अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी। इस नौजवान लड़की को जेल में बंद कर दिया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने 14 साल काल कोठरियों में बिताए, जहां उसे भयंकर यातनाएं दी गईं। 1939 में जब नेहरू जी ने पूर्वी भारत के प्रदेशों का दौरा किया तो गाइडन लियू के बारे में सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब वो जेल से आजाद होंगी और पूरा देश उन्हें याद करेगा। बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के साथ ही रानी गाइडन लियू को भी आजाद कर दिया गया। आगे चलकर उन्होंने अपने को समाज सेवा में लगाया। उन्होंने फरक्का नाम का एक धार्मिक आंदोलन भी चलाया जिसका अर्थ होता है पवित्र। अठहत्तर वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। रानी गाइडन लियू को भारत सरकार ने कई पुरस्कारों से सम्मानित किया, उनमें से ताम्रपत्र, पद्म भूषण एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार आदि हैं। उनको हमेशा याद रखने के लिए भारत सरकार ने 1996 में 1 रुपए का डाक टिकट चलाया। सन 1999 में भारत सरकार ने देश की 5 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर स्त्री शक्ति पुरस्कार की स्थापना की, जिनमें रानी गाइडन लियू ज़िलियांग का नाम भी शामिल है। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कही जाने वाली रानी गाइडन लियू भले ही इस संसार में नहीं है, परंतु वो प्रत्येक भारतीय के हृदय में रानी के रूप में सम्मानित रहेंगी।
1: अरे रामू काका।
8: नमस्ते टीचर जी।
1: नमस्ते, कैसे हो? बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिए।
8: बस ठीक हूँ।
1: अरे क्या हुआ? बहुत दिनों से आपकी बिटिया कमला स्कूल में नहीं दिखाई दे रही। वो तो अच्छी भली 6ठी कक्षा में पढ़ रही थी।
8: क्या बताऊं टीचर जी, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई थी।
1: अरे
8: कमला ने दिन रात उसकी सेवा की। अब उसकी माँ की तो तबीयत ठीक हो गई, मगर उसका स्कूल छूट गया बेचारी का।
1: अरे
8: अब वो बड़ी भी हो रही है, उसे दूर स्कूल भेजते डरता हूँ टीचर जी।
1: कैसी बातें करते हो रामू काका। इसका भी एक हल है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय।
8: कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय,
1: जहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग की लड़कियों का दाखिला किया जाता है। बस लड़की का 5वीं पास होना जरूरी है और तुम्हारी बेटी तो 5वीं पास कर चुकी है
8: जी।
1: लड़कियां वहीं रहकर पढ़ती हैं, उन्हें दूर इलाकों से रोज आना जाना भी नहीं पड़ता।
8: अब वो तो ठीक है टीचर जी, सिर्फ दाखिले से क्या होगा? खाना पीना, कपड़े, किताबें।
1: अरे तुम्हें ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रामू काका, क्योंकि ये सब मुफ्त में दिया जाएगा।
8: हाँ मुफ्त में दिया जाएगा।
1: और जब तुम्हारा मन करेगा उससे मिलने का तो मिल भी लिया करना।
8: अच्छा हाँ। तो क्या टीचर जी, मेरी कमला फिर से पढ़ सकेगी ना?
1: हाँ, और एक दिन आत्मनिर्भर भी बनेगी।
8: अच्छा धन्यवाद टीचर जी, मैं कल ही उसका दाखिला करवाता हूँ।
1: अरे कल क्यों, आज।
8: अच्छा टीचर जी, आज ही करवाता हूँ।
1: पढ़े बालिका करे उजियारा, खुशहाल बने संसार हमारा।

बहादुरी एक ऐसा गुण है जो हमें जीवन में मुसीबतों से लड़ने की प्रेरणा देता है। 14 वर्ष की पिंकी भी ऐसे बच्चों में से एक थी जो संकट की घड़ी में अपना धैर्य न खोकर बहादुरी का परिचय देते हैं। 1998 के राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित इस बालिका के बलिदान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हरियाणा राज्य की पिंकी ने न सिर्फ 5 बच्चों की जान बचाई बल्कि दुनिया के सामने अद्भुत शौर्य और धैर्य की मिसाल भी पेश की। आओ सुने पिंकी के बलिदान की कथा।

0: अरे पिंकी, आज तो तुमने अपनी धाकी जमा ली।
1: अरे सहेली किसकी है
2: भाई, मैंने तो मास्टर जी को वही बताया जो मुझे आता था,
3: पर हमको तो नहीं आता था।
1: अरे उत्तर तो मुझे भी आता था पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई।
2: अच्छा तो ये कमजोरी थी तुम्हारी भाई, कक्षा में झिझकने से तो बात नहीं बनती, क्यों?
0: ये तो ठीक है, अब देखना कक्षा में मैं भी जवाब दूंगा।
2: अच्छा चलो चलो घर चले।
4: चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ एक दो तीन, अरे भाई पिंकी चलो जल्दी करो।
5: अरे भाई हरीश, सभी आ गए बस में?
4: देखता हूँ उस्ताद, शायद आ गए सब। अरे ठहरो ठहरो,
2: रुको रुको ड्राइवर भैया, शंभू चढ़ रहा है, उसके पैर में चोट लगी है, रुको भैया।
4: अरे घबराओ नहीं पिंकी, जब सब चढ़ जाएंगे तभी चलाएंगे भाई बस।
2: आओ चलो चलो चलो, आओ इधर बैठो।
4: आराम से चलो चलो चलो चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। हाँ भाई ड्राइवर साहब, अब चलाओ गाड़ी।
5: हाँ जी अभी लो।
4: ठीक है मैं भी आ जाता हूँ तुम्हारे पास ही।
2: अच्छा सुनो, मैं गीत गाती हूँ और तुम सब ताली बजाना।
0: हाँ भाई, पर ताली तो बाद में ही बजेगी ना।
1: अरे बुद्धू, गाने के साथ साथ बजानी
0: है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई ठीक है।
1: चलो पिंकी शुरू हो जाओ।
2: बजे समय

0: स्कूल बस अपने रास्ते की ओर बढ़ी चली जा रही थी कि तभी पिंकी ने देखा कि बस के अंदर एक कोने पर रखी बैटरी के ऊपर डिब्बे में से छलक कर पेट्रोल गिर रहा है। पिंकी ने सोचा कि पेट्रोल से तो आग भी लग सकती है। फिर बच्चों ने आवाज लगाकर ड्राइवर और कंडक्टर को बताने की कोशिश की।
1: ड्राइवर भैया, भैया देखो बैटरी पर पेट्रोल गिर रहा है।
0: लेकिन बच्चों और इंजन के शोर में ड्राइवर और कंडक्टर सुन नहीं पाए कि तभी
1: अरे अरे नेहा देखो देखो आग, ये भगवान आग लग गई पे बैटरी पर, बैटरी पर आग, ये देखो आग। अमित अमित चलो चलो जल्दी, राकेश प्रवीण सब और पूनम कहाँ है? हाँ सबको आग तो बढ़ती जा रही है। अरे
2: अरे उस्ताद गाड़ी रोको, उस्ताद गाड़ी रोको, गाड़ी में आग लग गई है। आग
3: किसे कहते
2: हैं? मैं रोकता हूँ गाड़ी अभी। हाँ तुम जल्दी से लोगों को मदद के लिए लाओ, पानी का इंतजाम करो, मैं यहाँ बच्चों को बचाने की कोशिश करता हूँ। अरे तो आग बढ़ती जा रही है। अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा इसको मुझे पकड़ा दो। अरे तुम्हारे कपड़ों में आग लगी है। अरे जल्दी बाहर आओ पिंकी, बाहर आओ, तो तुम्हारे कपड़ों में आग लग गई है।
1: नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, पहले पूनम को पकड़ो। अमित अमित देखो, पहले पूनम को।
2: अरे मुझे पकड़ाओ, अरे पिंकी बेटा तुम मुझे पकड़ाओ जल्दी से। बाहर आओ पहले, जो तुम्हारे आग लगी है जल्दी आओ।
1: बच्चे के कपड़ों में आग लगी हुई है, बस के अंदर बच्चों को बाहर निकालो, ये देखो तो। अरे उसकी मदद करो।
4: अरे दमकल को बुलाओ ना,
5: अरे फोन करो ना जल्दी से, बच्चे हैं छोटे छोटे।
4: अरे दमकल को बुलाओ ना,
5: जल्दी बुलाओ ना जल्दी।
0: भयंकर आग में घिरी बस में से बच्चों को निकालते निकालते भी 6 बच्चों ने आग में झुलस कर वहीं दम तोड़ दिया। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, किंतु अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पिंकी ने 5 बच्चों को मौत के मुंह से बाहर निकाल ही लिया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पिंकी अपने आप को आग की चपेट से नहीं बचा सकी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। पिंकी के इस वीरता पूर्वक बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत गीता चोपड़ा पुरस्कार मिला। वर्ष 1998 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पिंकी के अभिभावकों को ये पुरस्कार प्रदान किया। वाकई ऐसे बच्चे हमारे देश हमारे समाज की शान है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। सबसे पहले सुनिए ये गीत, शीर्षक है पशु पक्षियों पर आधारित प्यारे प्यारे बाल गीत।

0: बाल गीत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। लेखक प्रोफेसर के जी रस्तोगी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, कार्यक्रम निर्माण रमेश रानी शर्मा। ये बाल गीत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किए गए।
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मेली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मुर्गासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आसपास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खासतौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहाँ पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके

शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर जिसे मलेरिया कहा जाता है उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी और सभी प्रकार की भूमि जैसे शुष्क पथरीली इलाका हो, रेतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहाँ पर भी उगाया जा सकता है। भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफ़ेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुवाई का सही समय जो रहता है, नीम की बुवाई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम रखना जरूरी रहता है। और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों की कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुवाई आसान होती है। इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुवाई द्वारा लगाया जाता है और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटा भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
2: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी, उन्होंने अब बढ़ चढ़ कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
3: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य ग्रोइंग नीम है औसत 5 साल के बाद आते हैं। 5 से शुरुआत होकर के 6-7-8 तक भी आते हैं लेकिन हमारी जो विकसित प्रजातियां हैं ये प्रजातियां दूसरे साल प्लांटेशन के दूसरे साल से ही फूल आना शुरू करते हैं और तीसरी चौथी या फोर्थ ईयर का आता है तो सफिशियंट मात्रा में बीज हार्वेस्ट किया जा सकता है।
2: नीम पर नए नए शोध कर रहे वन वैज्ञानिकों का कहना है कि नीम की खेती से न सिर्फ किसानों की आय में इजाफा हो सकता है बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वन वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में नीम की खेती किसानों की आय को कई गुना बढ़ा सकती है।
4: जहाँ नीम एक तरह से एक फंडरू एक ट्री था जिसका कोई वैल्यू नहीं था सवाय इसके कि हम कुछ छाया ले लें कुछ नींबू या FIM बना लें, आज ये एक कमर्शियल क्रॉप में तब्दील एक तरह से कन्वर्ट हो रही है और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है जहाँ वृक्ष और कृषि दोनों जो क्रॉप्स हैं फसलें हैं ये आपस में मिलके किसान को एक अतिरिक्त आय और यूं कहूं कि जो एडिड इनकम है उसकी तरफ खींच रहे हैं।
2: नीम की मांग लगातार बढ़ रही है। खाद बनाने वाली कंपनियां भी नीम की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की अग्रणी खाद बनाने वाली कंपनी इफ्को ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता कर नीम की नई वैरायटी के रिसर्च और खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात के अहमदाबाद में कलोल में मौजूद इफ्को की खाद कंपनी ने कई एकड़ जमीन नीम की खेती के लिए FRI को दी है ताकि यहाँ इसकी खेती के साथ साथ रिसर्च भी किया जा सके।
5: पहले हम लोगों ने बहुत सारी जगह इसका प्रयास किया, विदेशों में भी कई जगह प्रयास किया गया लेकिन अंतिम निर्णय यह हुआ कि हम अपने देश के शोध संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका शोध करेंगे। वहां पे हम लोग गए, वहां के निदेशक से बात की और निदेशक से बात करने के बाद में ये निर्णय लिया गया कि पॉलीप्लाइडी विधि से जिसमें नीम में क्रोमोसोम्स के नंबर को बढ़ा करके इसके उत्पादन को तेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इसकी ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और उसमें नीम का तेल और एजरडिक्टिन की मात्रा दोनों बढ़ाई जा सकती है। तो ये शोध परियोजना यहाँ से शुरू होती है, फिर उस शोध परियोजना को हम लोगों ने वित्तीय मदद की और उसका अनुश्रवण उनके लिए जो भी जरूरतें थी, उनके लिए जमीन की जरूरत थी, उनके लिए फंड्स की जरूरत थी, उनके लिए आदमी की जरूरत थी, जो भी उनकी आवश्यकताएं हुई उन आवश्यकताओं को पूरा करके ये 6 साल का अनवरत प्रयास हमारी इफ्को की टीम ने और एफआरआई के साइंटिस्ट ने, बहुत ही योग्य वैज्ञानिक है एफआरआई के, उन लोगों के प्रयास से 6 प्रजातियां रिलीज हुई हैं।
2: नीम को बढ़ावा देने के लिए आखिर इफ्को ने ये पहल क्यों की, इसकी वजह खुद कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर योगेंद्र कुमार बता रहे हैं।

0: 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम अब देश में 100% नीम लेपित यूरिया का ही प्रयोग करेंगे, यानी जितना भी यूरिया बाजार में बिकता है जो किसान भाई हमारे प्रयोग करते हैं उसमें नीम के तेल की, नीम की एक लेपन किया जाएगा, नीम की एक कोट होगी। तो वो एक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी का था, उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहाँ से और इतना निबोली कहाँ से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निबोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें और सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने बनाए हैं, उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
1: इसमें पॉलीप्लाइडिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे, तो उसके कारण दो चीजें होंगी, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा, और दूसरा कि निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें भी बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लाइडिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
2: रेडियो टांटे अभी 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फ्री गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटे अभी 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात। Yeah.

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
1: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरिक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिनमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
2: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है। अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दें और उसमें जो निमोरिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दें, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पर नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
0: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
1: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल, सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन्स बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से एस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है, लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है, जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो डांडिया भी 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विषय विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बात जीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडा भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 91, 92, 93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको की सहायता से इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।
0: एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
2: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।
0: डॉक्टर अशोक ने एक नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा, अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
2: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है, ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में इसको लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
2: बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। एफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की।
3: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जब पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बूढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है, उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
0: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
3: कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे, तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है, तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहाँ से लाते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से या तो हम एसी वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको जीप ही मिलता है तो एसी वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे, सवेरे में काट देते थे क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज़्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है। और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया तब हम उसको हमने क्या किया उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
0: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
4: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा यह है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
0: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
5: इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल, इस जो ये जो तेल है नीम का तेल जो है ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडेरिक्टिन। एजाडेरिक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं जिसमें मूल रूप से एजाडेरिक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरिएंट जो है ज्ञात हैं। ए जो है एजाडेरिक्टिन ए ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
6: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं, उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है। और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
7: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में, मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
0: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
8: रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरीके से औषधि पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं, इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधि खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनी से लेते हैं जाने की अनुमति और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM।
1: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि समय, समाज और सोच के रंग समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी आवाज जो पत्रकारिता से लेकर साहित्य तक समाज के गहरे पहलुओं को लिखती है, समझती है और उन्हें समझाती है। 20 साल से ज्यादा सक्रिय पत्रकार, लेखिका, पब्लिक स्पीकर और जिनकी नई कहानियों की किताब बवालिस्तान हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो आइए दोस्तों, हम दिल से स्वागत करते हैं तस्नीम सिद्दीकी जी का। तस्नीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की जिंदगी के रंग गीतों के संग पर।
1: बेहद शुक्रिया, बेहद आभार।
0: तस्नीम जी, हम आपकी जर्नी से शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं। आप डीडवाना से जयपुर तक का जो सफर आपने तय किया है, एक छोटे से शहर की लड़की से एक नेशनल लेवल पर पहचाने जाने वाली लेखिका हैं आज आप। तो अगर आप अपनी खुद की जर्नी को कोई एक शब्द, कोई एक पंक्ति या कोई एक कविता में बयां करें तो वो क्या होगा और क्यों?
1: वो एक पंक्ति है कि सपने जो है उनके लिए मेहनत, सपनों के लिए मेहनत। तो सपने देखना जरूरी हर किसी के लिए, क्योंकि सपने जो है वो दिशा तय करते हैं। तो मैंने जो सपना देखा उसने मेरी दिशा तय की, और उस दिशा पर चलने के लिए मैंने मेहनत की।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक तस्नीम जी। हम आगे चलते हैं। आपने हमें बताया कि जो आपका उपन्यास था ए मेरे रहनुमा, ये सिर्फ प्रकाशित ही नहीं हुआ बल्कि इस पर पीएचडी और एमफिल भी की गई। तो जब कोई रचना एकेडमिक स्टडी का हिस्सा बनती है तो आपको लेखिका के रूप में आपको क्या अनुभव होता है, क्या अंदर चल रहा होता है, किस तरह से आपको वो चीज आप अप्रोच करते हैं और कैसे वो आपको चेंज करता है, इसके बारे में अगर कुछ बताएं।
1: चेंजिंग के बारे में मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि एक जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है जिम्मेदारी कि आपको आगे जो भी लिखना है और भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लिखना है। तो ये सबसे पहले तो जिम्मेदारी देता है खुशी से भी ज्यादा। और बेशक खुशी जो होती है कि आपने काम किया है, उसको रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, तो मैं हैरान थी। सबसे पहली बात तो कि इस उपन्यास की प्रोसेस से लेकर और इसके आगे बढ़ने तक मैं हर कदम पर हैरान हुई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बेचैनियां थी मेरे अंदर कुछ बदलने की, तो मैंने ये उपन्यास मैंने लिखा। और उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ जो है, बहुत लोग जानते हैं बहुत भारतीय ज्ञानपीठ के बारे में, कि भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक का आना और भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से युवा जो पुरस्कार वो देते हैं उसमें रिकमेंडेशन मिलना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हिंदी युवा साहित्यकारों के लिए। तो मैंने जब पहला उपन्यास लिखा उसी समय भारतीय ज्ञानपीठ ने विज्ञप्ति जारी की थी और उपन्यास मांगे थे और उसी वक्त मैं लिख ही रही थी। तो मैंने चुपचाप से भारतीय ज्ञानपीठ के एड्रेस पे उसको पोस्ट कर दिया और अचानक 2 महीने बाद मेरे पास कॉल आता है। और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने सिर्फ काम किया और मुझे लगा कि ना, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ना तो होता ही है लेकिन हो सकता है कि हाँ भी हो जाए, तो ना तो मैं पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी होती हूँ तो हो सकता है कि हाँ हो जाए। तो उसके लिए उसी लिए मैंने उसको भेजा और 2 महीने बाद जब कॉल आता है तो मैं हैरान होती हूँ कि वो भारतीय ज्ञानपीठ की 11वीं नवलेखन प्रतियोगिता के लिए चयनित हो जाता है 2015 की। तो मैं हैरान थी कि मैं हमेशा किताबें पढ़ती रही, मैं पाठक रही, किताबों के साथ सोने से पहले किताबें पढ़ना, लिटरेचर ये सब पढ़ना मेरी हमेशा की आदतों में रहा और मैं उनसे बहुत प्रभावित रही। मेरी जिंदगी जो कुछ भी मैं बन पाई या मैं जो कुछ हो पाई या जो कुछ विचार मैं ले पाई जीवन के लिए, वो सब पढ़ने की देन है। जितना मैंने पढ़ा उसी ने मुझे दिया, पढ़ने ने मुझे बहुत कुछ दिया और जो कुछ हूँ उस पढ़ने की वजह से हूँ। तो मुझे ये लगा कि मैं आज तक पढ़ती रही, अब लोग मेरी किताब पढ़ेंगे, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा, अब हो सकता है बहुत छोटा हो किसी के लिए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि इस सपने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था और मेरी जिंदगी 360 डिग्री पर मुड़ जाती है इस हादसे के बाद में, जो खूबसूरत सा ऐसी घटना मेरे साथ जो घटी। तो भारतीय ज्ञानपीठ अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, उसकी किताबें दूर तक पहुंचती हैं। उसी तरह से अचानक एक दिन मेरे पास कॉल आया कि मैम मैं भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी से बोल रही हूँ और आपके से मैं पीएचडी करना शुरू कर रही हूँ,
0: तो
1: आप, तो फिर मैं फिर हैरान थी, मैंने कहा अच्छा
0: बिल्कुल।
1: और एक जो आत्मसंचय है वो उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, मैं चाहे आत्मसंचय को छोड़ना चाहूँ लेकिन आत्मसंचय ने मुझे नहीं छोड़ा, तो अच्छा है कि वो मेरी लगाम पकड़ के रखता है।
0: वो कभी
1: मुझे ये कहने नहीं देता कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छा है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। ये लोग बताएंगे या अगर मैं लेखक हूं तो पाठक बताएंगे कि वाकई में कुछ ठीक किया है या नहीं किया है। तो उस आत्मसंशय में थी कि क्या ये वाकई में पीएचडी हो रही है, मेरी किताब में पीएचडी हो रही है। प्रोड्यूसर का भी मुंबई से कॉल आया, हालांकि उनके बात नहीं बनी क्योंकि वो क्यों, मैं नहीं थी, मेरा पहला उपन्यास था। तो वहाँ लोग सोचते हैं कि सीरियल बनाएंगे और सिर्फ नाम दे देंगे, इतना ही काफी होता है। बट मैं इन सब चीजों के, मैंने जैसे कि कहा कि मैं राजनीतिक तौर पर बिल्कुल मेरी चेतना रही, तो ये भी उसी में आता है। तो मैंने अपने यहाँ भी मैं बिल्कुल मेरी चेतना के साथ मैंने उनको मना किया। मैं इस लालच में कभी नहीं आई कि मेरा नाम आएगा टीवी पे, मैंने उनको बिल्कुल मना किया। क्यों? क्योंकि वो ये पूरा एक प्रोफेशनल माइंडसेट होता है, तो बिल्कुल मैंने भी प्रोफेशनल माइंडसेट रखा। तो उनको नहीं पसंद आया कि आप तो पहली हो, आपको हम नाम दे रहे हैं,
2: इतना काफी होना चाहिए,
1: जितने आप प्रोफेशनल हो मैं उतनी प्रोफेशनल होकर ही आपको सहारी देता हूँ, और आज तक मैंने नहीं दी।
2: बहुत ही
1: वो भी मेरे लिए हैरानी की बात थी कि उस उपन्यास के लिए मेरे पास फोन आ रहा है कि उस पे सीरियल बनाना चाह रहे हैं लोग, तो वो भी मेरे लिए बहुत हैरानी की। मैंने नहीं दिया वो, मैं अपने उसूलों पर रहती हूँ, मैंने नहीं दिया
2: बिल्कुल।
1: तो लेकिन वो भी मेरे लिए हैरानी की, तो एक के बाद एक हैरानी की बात वहां पर सामने आ रही थी, और बिल्कुल मैं संशय में थी और आज भी मैं संशय में रहती हूँ। जैसे ही मेरा कोई नई किताब आती है मैं डरती हूँ।
2: वो बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं, वो पॉजिटिव स्ट्रेस
1: समझे कि मैं कई महीनों तक डरती हूँ ये किस तरह से लिया जाएगा। जबकि लगातार लोगों के, हाल ही में मेरी नई किताब आई है बवालिस्तान, लगातार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है, लोग समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस जैसे ही वो प्रकाशित हुई मेरे अंदर एक डर आता है, और ये डर हमेशा होना चाहिए
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है इस समाज को सर्व करने की, तो आप क्या सर्व करने जा रहे हो
2: बिल्कुल, और तो किस लेवल तक वो जाता है, स्पेशली एकेडमिक जब वो स्टडी का हिस्सा बनता है,
1: वो आपने लिखा है
2: वो आर्काइव्स में रहता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक रिपोजिटरी है आपके काम की
1: जिम्मेदारी, आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में बिल्कुल सब कुछ लगा देना चाहिए, लेकिन डरना भी चाहिए कि क्या आपने वो जिम्मेदारी पूरी की है या नहीं की है। तो बिल्कुल मैं, हालांकि बाकी चीजों से जो परंपराएं, लोग, समाज क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, ये तो मुझे बचपन में भी फर्क नहीं पड़ता था, और मैं चाहती हूँ कि किसी को भी ना पड़े, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, लेकिन अपने जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, जीवन की एक दिशा होनी चाहिए। लोग ये कहते हैं कि जिंदगी एक बार ही मिलती है उसमें मजे करो, नहीं, मैं ये कहती हूँ जिंदगी एक बार ही मिलती है तो कुछ काम करके जाएं हम इस दुनिया के लिए, समाज के लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, गली के लिए, मोहल्ले के लिए, सभी के लिए जीना बहुत जरूरी है
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: सभी के लिए।

0: मतलब अपने आपके आसपास जितने लोग हैं उनको आपको वापस सर्व करना जरूरी है। तो आप धीरे धीरे देश के लिए, और फिर एक वैश्विक नागरिक होने के नाते, मैं खुद को वैश्विक नागरिक मानती हूँ, तो वैश्विक नागरिक होने के नाते हम इस विश्व में क्या कुछ जरा सा जर्रे बराबर क्या कर सकते हैं। तो मैं अपनी कहानियों के जरिए या अपने उपन्यासों के जरिए, अपने लेखन के जरिए, मैं वो सब कुछ सर्व करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या गलत है, मुझे गलत को गलत कहना है, उसके बारे में मैं कभी नहीं डरती, मैं उसके लिए कभी नहीं सोचती। जहाँ मेरा प्रतिरोध है वहाँ मैं प्रतिरोध करती हूँ। और ये सारी चीजें मुझे बचपन से, जब मैं डिबेटर रही और डिबेट के दौरान जो आप पढ़ते हो, आप अच्छा डिबेट
1: तैयारी करते हो,
0: एक कल्चर होता है कि आप बीच बीच में जो है दुष्यंत जो कवि उनके लाइंस पढ़ते हो,
1: कोट करते हो,
0: कोट करते हो रामधारी सिंह, तुम रामधारी सिंह दिनकर को हम अक्सर कोट करते थे कि समर शेख है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समर लिखेगा उसका भी अपराध। तो जब इन लाइनों को मैंने समझा,
1: जीवन में उतारा,
0: उस दिन से मैंने तटस्थ होना बंद कर दिया। जिस दिन मैंने इनको समझा उस दिन से मैंने तटस्थ होना बिल्कुल बंद कर दिया। आपका विचार हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आप पीड़ित की तरफ हो,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: जो शोषक हैं उनकी ओर नहीं हो, आप शोषितों की तरफ हो। तो ये मैं हमेशा से क्लियर रही हूँ। तो बस यही रहता है कि एक प्रतिरोध हो जो कि गलत हो रहा है, उसके प्रति प्रतिरोध हमेशा आपकी बातों में, आपके करने में, सब में हो, क्योंकि प्रतिरोध के बाद ही आप दुनिया खूबसूरत बना सकते हैं, जहां वंचित, शोषित और शोषक हैं उन सबको एक बराबरी पर लाने का कम से कम हम सपना देख सकते हैं। तो बड़ी जो है वो जिम्मेदारियां आप पर होती है और आपको बड़ा ही सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं और हमारी कुछ जिम्मेदारी है। अगर हम इस ह्यूमन योनी में ले आए हैं, जन्म लिया है, तो जीवन एक बार ही मिलता है, सच है, बट अगर उसको सुंदरता से जिएं, उसमें कुछ लेगेसी छोड़ के जाएं चेंज की, अपने थॉट्स की, अपने कलम की, या अपनी किसी भी एक सोच की, अपने खुद के पर्सपेक्टिव की, कम से कम एक पर्सपेक्टिव खुद का तो हो, वो तो बनाएं, चाहे आप लेखन करें नहीं करें, बट एटलीस्ट एक साइड तो रखें अपने लिए, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह तो जिए। तो बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी रही है मैम। और जैसे बोलते हैं कि लेखन में पर्सनल से शुरुआत होती है, आप अपने आसपास की चीजें देख के लिखना शुरू करते हैं, बट पर्सनल से इम्पर्सनल जाना और समाज से जुड़ना और फिर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करना, उसको एकेडमिक्स तक लेके जाना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ी एक अचीवमेंट भी है जो आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है। अब आगे चलते हैं, मेरा नेक्स्ट सवाल जो मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ इस सवाल के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके इतने दो दशकों का जो एक्सपीरियंस है लेखन का, पत्रकारिता का, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो आज की अधपकी सभ्यता है जिसमें हम जी रहे हैं, जहां हम ना इधर हैं ना उधर हैं, जहां हम ना परंपरा में हैं ना पूरी तरह मॉडर्न हैं, तो आपके नजरिए से ये जो बीच की अवस्था है जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये सबसे ज्यादा असर किस पर डाल रही है और इस दौर में साहित्य का क्या दायित्व है?
0: देखिए, साहित्य का तो बहुत बड़ा दायित्व हर युग में बनता है, उस युग को दर्ज करना और उसमें जो व्याधियां हैं, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो हम ठीक कर सकते हैं या ठीक होना चाहिए, जिनके लिए हम लड़ सकते हैं, वो चीजें समाज के सामने ज्यों का त्यों रख देना साहित्य की जिम्मेदारियों में आता है, बड़ी जिम्मेदारी में आता है। और जो हम मॉडर्नाइजेशन के बारे में या पारंपरिक छवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसे लेकर मुझे लगता है कि किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन जो है वो विज्ञान को अपनाता है। तो बिल्कुल बहुत सिंपली है कि कपड़ों से मॉडर्नाइजेशन नहीं आता, आपके घर से, आपके पैसे से, इन सब से मॉडर्नाइजेशन नहीं आता है। आप एक, आपका एजुकेशन लेवल, आपका विचारों का लेवल कहाँ तक गया है, वो वैश्विक स्तर पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या सिर्फ आप गली मोहल्ले की राजनीति में ही है, तो ये जो थॉट है, आपके विचार हैं, वो बताते हैं कि आप मॉडर्न हुए हो नहीं हुए। आपने जो पुरानी रीतियां, जो किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर वो दुखदायी है, अगर आपने उन चीजों को नहीं छोड़ा है, तो फिर आप मॉडर्न नहीं हो और आप परंपरावादी भी नहीं हो, क्योंकि परंपराएं जो है वो किसी को परेशान करने के लिए कभी भी नहीं थी। हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं, भारतीय परंपराओं की हम बात करते हैं, वहां तो हर जीव के लिए जगह है, हर जीव को का अस्तित्व माना गया है, हर जीव के लिए जो है वो अहिंसा जो है वो मानी गई है। चाहे हम बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, हम उनकी धरती से आते हैं, तो जहां पर भी गलत है, जो मनुष्य को तीज करता है, मनुष्य को हिंसा, मनुष्य पे हिंसा करती हैं, जो रूढ़ियां, जो परंपराएं जो हमने खुद ही क्रिएट कर ली हैं, तो उनको मानना ना तो परंपरा है ना मॉडर्निटी है। तो गलत को छोड़ते जाना यही मॉडर्निटी है। तो हमें ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना चाहिए कि हम आधुनिक हैं या पारंपरिक हैं। हाँ, ये जरूर है कि हर देश का, हर राज्य का अपनी अपनी एक अलग कल्चर होता है, तो वो कल्चर तो हमारे साथ है, तो वो पुरानापन उसको मैं नहीं कहूंगी, उस कल्चर के साथ साथ चलना। हम भारतीय हैं, हम अगर दुनिया में मैं अमेरिका या यूरोप या मैं कहीं पे भी जाऊं तो मैं यही कहलाऊंगी मैं इंडियन हूं। तो इंडियन कल्चर अगर मैं साथ लेकर चलती हूं, इंडियन कल्चर की खूबसूरती को मैं साथ लेकर चलती हूं, तो वो कोई पुरानापन नहीं है या अधपकी चीज नहीं है, वो पूरी तरह से इंडिया को मैं जो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ वो सब कुछ है। और आधुनिकता जो है वो विज्ञान को अपनाना है और मेरी सोच को परिष्कृत करते जाना, मेरी मतलब अपनी आपकी मेरी सभी की, सभी की सोच,
1: समाज की,
0: और जो पुरानी चीज हो चुकी है उनको पुराना पीछे छोड़ते जाएं हम, और हर एक को जीने का स्पेस दें, क्योंकि जियो और जीने दो जो है वो हमारी संस्कृति से उठावा ना रहा है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो जियो और जीने दो, हर एक व्यक्ति को जीने दो, हर और खुद भी खुलकर जियो, दूसरों को खुलकर, तो ये आधुनिकता है। बिल्कुल, हम मॉडर्नाइजेशन को हमेशा पश्चिमी सभ्यता से जोड़कर देखते हैं और फिर उसको हीन भावना से देखते हैं। जो हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ लोग ऐसे देखते हैं, अरे तुम पश्चिमी सभ्यता को मतलब अपना रहे हो, नहीं, ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाना नहीं है। और अगर किसी भी सभ्यता को अपनाकर आप अपने समाज से गलत चीजों को, जो कि महिला, खास तौर से महिलाएं जिन रूढ़ियों को झेल रही हैं आज भी, अगर वो उससे आजाद होती है, तो मैं कहती हूँ कि वो पश्चिमी सभ्यता भी आनी चाहिए। अगर हम उससे आजाद, हिंसाओं से आजाद हो रहे हैं, चाहे वो मानसिक हिंसा हो, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, वो किसी भी तरह की इमोशनल, जो आजकल है, आजकल तो इमोशनल हिंसा का भी एक रूप होने लगा है, तो
1: बहुत बड़ा रूप है इमोशनल हिंसा, जी
0: तो भावनात्मक हिंसा जिसे हम कहते हैं, तो इन सब हिंसाओं से जो सभ्यता निजात दिलाती है, हम उसी को अपनाएं।
1: सच कहना,
0: उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, अगर हम लेकिन मॉडर्नाइजेशन को सिर्फ कपड़ों तक अपना सीमित कर लेना, अच्छी चीज, अच्छा खाना, अच्छा हमारा घर अच्छा है, हमारा रहना सहना अच्छा, आपके आपके जीवन स्तर से नहीं है मॉडर्नाइजेशन जो है, आपके जीवन स्तर से कतई नहीं आता है। सबसे जो मैं बार बार कह रही हूँ कि सबसे बड़ा जो इसमें पॉइंट है वो है वैज्ञानिक सोच का, आपकी सोच कितनी वैज्ञानिक हुई है, आप वैज्ञानिक चेतना कितनी है। जैसे अभी हमने राजनीतिक चेतना की बात की, तो अब किसी के भी जीवन में जो सबसे जरूरी है वो वैज्ञानिक चेतना है। वैज्ञानिक चेतना जो है वो ईमानदार जीवन की तरफ हमारा कदम बढ़ाती है। तो बिल्कुल हम विज्ञान की तरह सोचें और उसी से हम आधुनिक कहलाएंगे। और विज्ञान की तरह सोचने से मेरा मतलब नहीं है हमें वैज्ञानिक बनना है, लेकिन साइंटिफिकली जो सोच है, वैज्ञानिक सोच पर कई संगठन जो है वो काम कर रहे हैं कि आप रूढ़, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे को बुखार है और हम ही खबर लगाते हैं, मैं पत्रकार हूँ, मैं बहुत बड़े मीडिया हाउस से जुड़ी हुई हूँ, और हमें खबर लगाते हैं कि एक 5 साल के बच्चे को बुखार हुआ, उसको उसकी माँ जो है किसी बाबा के पास ले गई, उसने उसको पेट को दाग दिया, उस बच्चे की मौत हो जाती है या ऐसा ही कुछ। तो वैज्ञानिक सोच वहाँ काम करती है,
1: बिल्कुल,
0: इन चीजों से नहीं, आपको अस्पताल लेके जाना है बच्चों को,
1: बिल्कुल,
0: आपको बच्चों को बाबाओं के पास नहीं ले जाना है। तो ये मैं इस वैज्ञानिक सोच की बात करती हूँ, वो आधुनिकता की तरफ ले जाएगी हमें।
2: बिल्कुल, इसी साइंटिफिक टेम्पर को हम जिंदा रखें और हम परंपराओं को भी अपनाएं और साथ साथ जो समय के साथ मॉडर्न वेज हैं उन्हें भी अपनाएं, इसी बेबाक सोच और साथ ही साथ इसी जमीन से जुड़ी हुई सोच जो तस्नीम सिद्दीकी जी की है उससे हम आगे चलते हैं, क्योंकि समय आगे चल रहा है और हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ। सच को कहना आसान कभी नहीं होता, पर चुप रहना और भी मुश्किल हो जाता है। हम सुनेंगे सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक तस्नीम जी। आपका जो नया संग्रह है बवालिस्तान, जिसके बारे में अभी आपने हमें बताया, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं लगता, ये खुद में एक मेटाफर जैसा लगता है, एक सोच जैसा लगता है, एक आंदोलन जैसा लगता है। तो इस किताब का जन्म कैसे हुआ और इस किताब के बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
1: देखिए, वाकई में ये मेटाफर ही है, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना इसके टाइटल के साथ। और मुझे ये इस चीज की सबसे बहुत बड़ी खुशी होती है कि जो मैंने सर्व किया है लिखने में वो ठीक पहचाना जाए। तो ये बिल्कुल ठीक है कि एक मेटाफर है बवालिस्तान। तो ये जो कहानियां हैं ये एक दशक की कहानियां हैं। पिछले 10 सालों में जो मैंने कहानियां लिखी है उन्हीं का एक संग्रह है। 15 कहानियां इसके अंदर है और बहुत तरह की कहानियां हैं इसमें। प्रेम की कहानियां आपको ज्यादा मिलेगी और प्रेम जो है वो दो लोगों के बीच ही नहीं होता, प्रेम कई सारे रूपों में हमारी जिंदगी में होता है। रिश्तों के तौर पर होता है, दोस्ती के तौर पर होता है और जो अनजाने जाने पहचाने उनके बीच में भी होता है। तो बिल्कुल ये जो दुनिया भर में प्रेम या सुहाद्र होना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हमारे देश में हैं, तो उन अलग अलग लोगों के साथ किस तरह से एक बिल्कुल अनूठी संस्कृति हम जी रहे हैं वो दुनिया में सिर्फ हमारे पास है। तो वो वहां पर आपको मिलेगी उसकी झलक कि वो हम कैसे अनूठे हैं। वहीं कुछ दर्द भी मिलेंगे, वहीं कुछ प्रतिरोध भी मिलेंगे कि क्या चीज नहीं होनी चाहिए। और खास तौर से कुछ वुमन ओरिएंटल स्टोरीज भी है जिनमें मैंने कुछ परंपराएं हैं जो जिनकी मैं विरोधी हमेशा से रही हूं, जिनका हमेशा विरोध रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, औरतों के लिए नहीं होना चाहिए। औरतों को हम परंपराओं के नाम पर घरों में रोकते हैं ताकि वो जो श्रम है वो घरों का, जिसके लिए पे नहीं करना पड़ता, वहां ठहरी रहे। तो बिल्कुल उसी के लिए प्रतिरोध है कि जो महिला सशक्तिकरण है उसके लिए समाज जो है वो जब तक इन परंपराओं को नहीं छोड़ेगा, सिर्फ कमाने भर से महिलाओं में सशक्तिकरण नहीं आएगा। घर में आपकी स्थिति क्या है, समाज में आपकी स्थिति क्या है, उस कमाने भर से समाज आपको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। तो वो जो एक्सेप्टेंस की बात है वो किस तरह से समाज में बदलाव से आएगी, वो सारी चीजें उसके अंदर है। वहीं राजनीतिक कहानियां भी है कि राजनीतिक चेतना से भरी कहानियां भी है, उनमें से एक बवालिस्तान भी है। तो इस दौर, जो मेरा दौर मैं कहूं, जिस उम्र में मैं जी रही हूं, तो मेरे दौर में क्या चीजें मैंने बदलते हुए देखी है, किस तरह से कुछ अच्छी चीजें थी वो भी हमारे बीच से छीन ली गई। जो बदलाव आया था हमारे पैदा होने के समय, उन बदलावों को फिर से रीति रिवाजों के नाम पर कैसे हमें वापस पीछे धकेला गया, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हैं। उसके बाद में जो राजनीति ने हमारे रिश्तों पर असर डाला है, हमारे जो दिनों दिन के रिश्ते हैं, हर दिन के हैं, रोजमर्रा के हैं, और वो रिश्ते जो
0: सांझा चूल्हा की तरह
1: हैं, पानी की तरह, बिल्कुल बहुत आम, जैसे पानी पीना, हवा में सांस लेना,
0: चाय का कप पीना
1: जो है बहुत जरूरी है, लेकिन हम उसको कभी मेंशन नहीं करते कि मैं आज हवा में सांस ले रही हूँ।
0: जी जी,
1: तो उनको मेंशन करने की कभी जरूरत नहीं थी उन रिश्तों को, लेकिन अगर आज उनको मेंशन करने की जरूरत है तो उसका मतलब हमारे उन रिश्तों की जिंदगी जो है वो बहुत खतरे में है।
0: जी,
1: तो वो जो सुहाद्र है, जो जिसके लिए अकेला भारत है पूरे विश्व में,
0: जो पहचाना
1: वो जाना जाता है, जहां पर कई तरह के लोग रहते हैं, कई सारी पहचानों के लोग रहते हैं, वसुधैव
0: जो हमारा संविधान हमें देता है। जी,
1: जो संविधान ने अधिकार दिए और संविधान ने एक किया बहुत सारे अलग अलग जो पहचान के लोग हैं उनको एक किया, और वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो हम बिल्कुल जोर शोर से दुनिया के सामने लगाते हैं, तो वो कमजोर ना पड़ जाए।
0: बिल्कुल। कोई फेवरेट कहानी इसमें से, कोई बवालिस्तान में से कोई आपका फेवरेट एक स्टोरी जिसके बारे में, या जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें?
1: इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो वो सभी मेरी फेवरेट है। 15 कहानियों में से मैं किसे बताऊं, लेकिन अच्छा मैं इस कहानी के बारे में इसलिए बताऊंगी क्योंकि वो राजस्थान से रिलेटेड है और वो ढीणे रख दे रे ढोला, तो वो ये राजस्थान ये मारवाड़ी शब्द है ढीणे रखना, यानी बकरियां जब जानवर होते हैं जो बकरा बकरी वगैरह, क्योंकि मैं एक कस्बे से आती हूँ, हमने बकरा बकरी वहां पर ये पशुपालन का ही ट्रेंड जो है वो वहां पर देखा है या चरवाहे देखे, तो ये चरवाहे की और घुमंतुओं, चूंकि राजस्थान जो है वो घुमंत या तो रेगिस्तान के लिए जाना जाता है या घुमंतुओं के लिए जाना जाता है।
0: करेक्ट।
1: तो घुमंतु जो है वो कितने, आप अगर आज जिस पश्चिमी सभ्यता की बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में, यानी और मॉडर्नाइजेशन को के लिए भी क्यों लोग विरोध करते हैं कि इसमें प्रेम आ जाता है,
0: बिल्कुल,
1: तो प्रेम के लिए जो स्वतंत्रता घुमंतु प्रजातियों में है, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते उनका प्रेम भी बदलता है, और प्रेम बहुत व्यवहारिक बात है कि प्रेम जीवन के कई क्षणों में बदलता रहता है, कई सालों में बदलता रहता है, 10 साल 15 साल के अंतराल में
0: बिल्कुल
1: आपका प्रेम बदलता है,
0: आप बदलते हैं तो प्रेम बदलता है,
1: बिल्कुल बदलता है,
0: पेड़ नहीं है।
1: तो उन घुमंतुओं के जरिए ये कहानी मैंने कही है कि उनको कितनी आजादी है प्रेम की, और खास तौर से महिलाओं की,
0: बिल्कुल
1: कि वो बिल्कुल अपने प्रेम को जो है वो इस तरह से बयान कर सकती हैं जो कि आज भी बुरा माना जाता है हमारे तो कोल्ड मिडिल क्लास के अंदर, जो कि बहुत सभ्य या संभ्रांत सभ्य कहे हम उसको, कथित तौर पे सभ्य जो हम कहते हैं, तो वहां पर घुमंतुओं को देखिए कि आप वहां की महिलाओं को देखिए कि उनको कितनी आजादी है, वो आजादी चाहिए, जिस आजादी की बात हम कर रहे हैं वो तो उन घुमंतुओं के पास है पहले से, जिन्हें हम आदिम प्रजातियों को राजस्थान के आदिम प्रजाति में गिने जाते हैं सारे जो घुमंतु है, कि जो सबसे आदिम है वही है, वही उन्हीं का वंश चल रहा है, तो वो जो आदिम प्रजातियां हैं वो मॉडर्न है, अगर मैं उसको आधुनिकता के तराजू में तोलूं तो वो ज्यादा मॉडर्न है हम लोगों की बजाय, और जहां पर किसी तरह की मुश्किल, वहां पर बच्चे जो होते हैं वो टोलियों के बच्चे होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: जैसे एक कपल के बच्चे नहीं कहलाते कि ये फला फला के बच्चे हैं, वो टोलियों के बच्चे कहलाते हैं, तो इतना मान सम्मान के साथ, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो उसी पर ये कहानी है ढीणे रख दे रे ढोला, कि वो किस तरह से एक महिला जो है घुमंतु वो किस तरह से एक चरवाहे के साथ अपने प्रेम को किस तरह से कहती है, और उसमें राजस्थानी गीतों को भी मेंशन मैंने किया है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है,
0: कुछ गुनगुना सकते हैं हमारे लिए अगर आप गाते हैं तो, छोटा सा कुछ
1: से, हाँ उसी में से दो लाइनें सिर्फ
0: जी जी
1: गाऊंगे, हीर रांझे जेड़ा यार कठे लैला मजनू जेड़ा प्यार कठे, हीर रांझे जेड़ा यार कठे लैला मजनू जेड़ा प्यार कठे, ओ थारी मोहब्बतड़ी रखायल करेगी रे, ओ थारी मोहब्बतड़ी रखायल करेगी रे, तो
0: बहुत ही मजेदार
1: ऐसे ही गीतों की दो दो तीन तीन पंक्तियां जो है वहां पर है, और बड़ी ही प्यारी सी कहानी जो भाई साहब मुझे बड़े पसंद बहुत पसंद है, वो कहानी मेरी जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई कहानी है, कि उसमें जो दो दोस्त हैं अलग अलग अलग अलग धर्म से आते हैं, उन दोस्तों को आप कभी अलग नहीं कर सकते,
0: बिल्कुल
1: सोच भी नहीं सकते हैं, उनकी जिंदगी की खूबसूरती क्या है वो आप कहानी में पढ़ सकते हैं, कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इसको कैसे तोड़ोगे, इसको कैसे अलग करोगे, और या अलग करके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, कि इमेजिन करें कि हम कि इसको कैसे हम इस कहानी में इन पात्रों को कैसे हम अलग करें, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
0: इससे मेरे जहन में जो हाल ही में मूवी रिलीज हुई है और बहुत इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई है हमारी फिल्म होमबाउंड, उसकी याद आती है।
1: एग्जैक्टली बस हमारे रिश्ते बहुत बहुत खूबसूरती के साथ, मैंने जैसे कि कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं सांस ले रही हूँ हवा में, बिल्कुल उतने खूबसूरत रिश्ते रहे हैं और आज भी जी रहे हैं, हल्का जो इस संस्कृति, क्योंकि बहुत ये बहु संस्कृति है, बहुआयामी संस्कृति है, तो हाँ कोई कोई सा दौर ऐसा आता है जब ये इसके ऊपर कुछ हल्के आप ये सोचे कि बादल मंडराए या हमें ये लगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये फिर उठ खड़ी होने वाली संस्कृति है।
0: सही कहा,
1: इसको खत्म नहीं किया जा सकता या इसको तोड़ा
0: नहीं, नहीं जा सकता। सही कहा,
1: तो ये संस्कृति फिर उठ खड़ी होने वाली है। तो जहाँ बहु आयाम होते हैं, बहुरंग होते हैं, वहाँ कभी कभार हमें लगता है कि कुछ खिंचाव हो रहा है, लेकिन खिंचाव के बाद फिर से वो रिश्ते वैसे ही चलने लगते हैं। और मैं ये बात कहते हुए आह्लादित हूँ, मतलब खुश हूँ कि मैं कितने अच्छे रिश्तों में जी रही हूँ और उस देश में हूँ जहाँ पे बहुत सारे रंग मैंने जिए हैं, बहुत सारे रंग में जी रही हूँ और आगे भी जीती रहूंगी। तो ये बहुत यही चीज है जो दुनिया में हमें भारतीयों को हमें अलग करती है। हम ज्यादा सौहार्दपूर्ण हैं, हम ज्यादा लिबरल हैं, हम ज्यादा मुलायम हैं। तो ये जो मुलायम होने की जो खासियत है, ये बड़ी मुझे पसंद है और मैं चाहती हूँ कि ये हमारी चेतना में रहे, हमारी चेतना में रहे और हमारी जो चेतना है वो इसे बनाए रखे।
0: बहुत ही खूबसूरत मैम, सच में जब आवाज दिल से निकलती है, दिल के भीतर से निकलती है, दिल की गहराइयों से निकलती है, तो उसे दबाना मुश्किल हो जाता है और उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सतरंगी जीवन को जन्म देती है। जिस तरह की बातचीत आज तस्नीम जी से हो रही है, मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ ये बातचीत चलती रहे, बट जैसे मैंने कहा कि समय आगे चलता है और हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, ए जिंदगी गले लगा ले।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं, वेलकम बैक तस्नीम जी। हम बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो बहुत ही एक जिम्मेदारी भरा, एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आज लिखने वाले तो बहुत हैं, पर चर्चा करने वाले और डायलॉग करने वाले लोग खत्म होते जा रहे हैं, और उसी का कहीं ना कहीं इफेक्ट और इम्पैक्ट मैं देख रही हूं कि लिखने पर भी आ रहा है। तो आज के जो यंग लिसनर्स हैं, हमारे श्रोतागण हैं, जो लिखना चाहते हैं, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं डर है, दबाव है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस है, राजनीतिक हवा है, समाज का डर है, हर कुछ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कंफ्यूज्ड हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि आप क्या मानती हैं आपके जीवन से कलम ने आपको कितनी ताकत दी है, और कलम कितनी ताकत दे सकता है समाज को बदलने में, इसको और खूबसूरत बनाने में, और कैसे आज के यंग लेखक अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं?
1: देखिए, ये जो है, सबसे पहले तो हमें डर निकालना पड़ेगा वो समाज के लिए, क्योंकि हम उसका हिस्सा हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हम वहां से होते हैं। तो जो लोग क्या कहेंगे वाली लाइन को सबसे पहले डिलीट करना पड़ेगा। और वैसे भी अब एआई जनरेशन है, जेन जी के बाद अल्फा बीटा सभी आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो ये जो लोग क्या कहेंगे वाली लाइन जो है वो डिलीट हो जाए हमारी जिंदगियों से। जब हम कुछ सबसे पहले हमें तय करना है कि हमें क्या करना है, और जब आपने तय कर लिया तो आप वो कीजिए। आपको क्यों डर होना चाहिए किसी का भी? देखिए, डर जो है वो आपको बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं वो नहीं करने देता है। हम जब अखबार में काम करते हैं, हमारे पास कई सारी लड़कियों के खास तौर से सवाल आते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, इस डर से मैं घर के बाहर नहीं निकलती, मैं नीचे गर्दन करके स्कूल से आती हूँ जाती हूँ, मैं क्या करूँ, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा। इस तरह के सवाल आज भी अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि अभी तो हमें बहुत सारा काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। तो इस समाज को सबसे पहले आप हर मनुष्य के लिए, हम सभी मिलकर हर मनुष्य के लिए एक आसान बनाएं, इसको एक सुरक्षित समाज बनाएं कि यहाँ पर जब हम हंसें, खेलें, तेज आवाज में बात करें तो ऐसा हो कि कोई कुछ नहीं कहेगा, सभी को हमारी हंसी अच्छी लगती है, सभी को हमारा चलना अच्छा लगता है, सभी को हमारा बाहर घूमना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल, तो सपने देखिए और उनको पूरा करने के लिए कभी नहीं डरे। और लेखन ने मुझे जो निडर होना सिखाया वो लेखन ने सिखाया, और इससे पहले पढ़ने ने सिखाया। और इसमें भी ये इम्पैक्ट होता है कि आपके विचार जब परिष्कृत होते जाते हैं, आपकी सोच जब क्लियर होती जाती है, तो आप डरना छोड़ देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपको, आपके पास में सॉल्यूशन होते हैं। जिन लोगों के पास सॉल्यूशन, देखो समस्याएं हमेशा होती है, हर एक की जिंदगी में होती है। अगर किसी को लगता है कि सिर्फ उसी के पास समस्याएं हैं तो ये उसकी गलत फहमी है, लेकिन समाधान क्या है? जिसके पास समाधान है आज वही सबसे ज्यादा खुश है।
0: बिल्कुल,
1: तो समाधान, हम समस्याओं पर बात करने की बजाय या समस्याओं पर को बताते रहने की बजाय सॉल्यूशन पे बात करें। देखिए, हम उसी दोस्त के पास जाते हैं जिसके पास सॉल्यूशन होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो हमारे पास हमारी जिंदगी के हर मसले के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो। तो पढ़ाई, करियर, नौकरी, ये इसको मैं हमेशा प्राथमिकता से देखती हूँ, तो ये प्राथमिक हो। और लेखन का जहाँ तक है, जब आपको विचार आपके क्लियर हो जाते हैं और जब आप कुछ बदलना चाहते हो तो लिखना भी आसान हो जाता है। और विषय कुछ ऐसे हो जो जमीन से जुड़े हो, जो लोगों की पीड़ाओं से जुड़े हो, उन पीड़ाओं से जो ठीक की जा सकती हैं लेकिन लोग ठीक नहीं होने दे रहे हैं, तो उन पीड़ाओं को हम उठाएं, उनको ठीक करने का सॉल्यूशन हम ना रख सकें तो कम से कम लोगों को बताएं कि ये पीड़ा है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो एक गलत
0: शोषण है, हो रहा है,
1: शोषण हो रहा है उनका, वो शोषित है, उनको पता भी नहीं होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कम से कम हम लिखकर ये बताएं कि ये गलत है, ये शोषण है। इससे हमें खुद को आवाज उठानी चाहिए कि आप किसी के शोषण का हम शिकार ना बने।
0: बिल्कुल,
1: और लेखन के लिए सबसे जरूरी होता है कि आप जो, आपका कमिटमेंट क्या है इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, आपके आसपास के लिए, इन सब के लिए आपका कमिटमेंट क्या है, है ना? जो आप आपको सच दिख रहा है, जो आपको गलत दिख रहा है, गलत को गलत कहना, सच को सच कहना, ये लेखन का बेसिक है और बहुत जरूरी है।

0: हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम लेखन की ओर जाते हैं तो इसमें पढ़ने को इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो बुक्स लें, उसको पढ़ें, किसी भी जॉनर की हो सकती है वो बुक्स, किसी भी तरह की हो सकती हैं वो बुक, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, तो पढ़ने को इन्वेस्टमेंट करें पढ़ने, और उसके बाद लेखन की ओर जाएं। और ये बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर आप अपना सब कुछ कह सकते हैं, सब कुछ वहां पर जो आपने जिया या दूसरों की जिंदगी में देख रहे हैं सब कुछ कह सकते हैं, यहां पर कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई आपको जज नहीं करेगा।
1: बिल्कुल तस्नीम जी, बहुत ही खूबसूरत बातचीत आपसे आज रही, सिर्फ साहित्य की नहीं थी बल्कि ये समय के साथ साथ जो हमारा समाज है उसमें एक झांकने के, एक झरोके की तरह एक बातचीत थी कि हमने थोड़ा झांका हम किस समाज में रह रहे हैं, किस समय में हैं और क्या उस समय की यू नो रियलिटीज हैं, उसकी वास्तविकता है और उसका क्या वो क्या चाह रहा है हमसे कि हम किस तरह से अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाएं, कुछ कुछ समाज को दें, कुछ समाज से लें। तो बहुत ही एक सुंदर जीवन आपने जिया है जैसे कि मैंने आपसे बातचीत में समझा है और बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही है आपसे। और सच है कि समाज में सॉल्यूशंस ढूंढने, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ तो नहीं बदल सकते, सब कुछ नहीं बदलेगा पर कुछ जरूर बदलेगा, तो उस कुछ को बदलने के लिए जो आप कर सकते हैं वो करें। और पढ़ना, जैसे कि तस्नीम जी ने कहा कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो वो रीडिंग है, बिकॉज दोज हु रीड दे लीड। तो इसको समझें और इसको अपने जीवन में उतारें। थैंक यू सो मच तस्नीम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, गीतों के संग में आने के लिए जी।
0: और आपने गीत भी मेरी पसंद के सारे यहाँ पर सुनाए, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी।
1: जी जी, थैंक यू सो मच तस्नीम जी। तो दोस्तों, कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो समाज को समझती भी हैं, समझाती भी हैं। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे जिंदगी के रंग गीतों के संग। सोचिए, पढ़िए और फिर लिखिए, क्योंकि कलम अभी भी जिंदा है।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

मैं आपका दोस्त आलोक कुलश्रेष्ठ आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपसे मुखातिब हूँ। प्रोग्राम का नाम है आलोक के साथ रूबरू। इस प्रोग्राम में हम हमारे समाज के उन लोगों से बातचीत करेंगे जिनके पास भले ही अकूत धन संपदा ना हो, लेकिन जिन्होंने अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया, जिन लोगों के पास भले ही सेलिब्रिटी का स्टेटस ना हो, लेकिन अपनी सोच से समाज के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। इन लोगों ने भीड़ के साथ चलने की बजाय अपना रास्ता अलग से बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज जिन मेहमान से हम रूबरू होने वाले हैं उनको बुलाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हमारा देश जहां एक ओर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में हमारे समाज का ताना बाना कुछ कुछ उलझ सा गया है। इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों पर। जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बदलाव से सबसे अधिक कौन प्रभावित हो रहा है? जी हाँ, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य या हमारे बुजुर्ग। उनकी देखभाल करने के लिए आज परिवार के किसी सदस्य के पास समय नहीं है।

0: हम सब जानते हैं बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लॉन्गेविटी बढ़ रही है, यानी कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके साथ बात करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए परिवार में किसी के पास समय नहीं है। अधिकतर संतानें या तो विदेश में सेटल हैं या महानगरों में अपना कैरियर बनाने में व्यस्त हैं। दोस्तों, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के पास हर समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, उन्होंने इस समस्या को हल करने का बीड़ा उठाया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर पी सी जैन, जो कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर चेयरमैन हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यह एक बैंक के चेयरमैन हैं, लेकिन उस बैंक में पैसा या रुपए जमा नहीं होते, बल्कि समय या टाइम जमा होता है। है ना कुछ दिलचस्प, कुछ नया और यूनिक सा? डॉक्टर जैन नमस्कार, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आलोक जी, नमस्कार।
0: चलिए जैन साहब, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि टाइम बैंक है क्या और ऐसा क्या हुआ या वो कौन सा ट्रिगर था जिसने आपको इस कार्य करने की प्रेरणा दी?
1: आलोक जी, आपने ब्लड बैंक का नाम सुना होगा, आपने आई बैंक का नाम सुना होगा, तो बैंक से हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि ऐसी कोई भी संस्था जहां हम कुछ जमा करते हैं। ब्लड बैंक में रक्त जमा होता है, आई बैंक में कॉर्निया जमा होता है, और जो फाइनेंशियल बैंक है उसमें धन जमा होता है
0: जी।
1: तो इसी प्रकार से ये एक बैंक है जिसमें ना तो धन जमा होता है, ना रक्त जमा होता है, ना कॉर्निया जमा होता है। इसमें वो चीज जमा होती है जिसके लिए हम कहते हैं कि उसे पकड़ के नहीं रखा जा सकता, अर्थात समय जो बहता चला जाता है उसे हमने थामने की कोशिश की है, तो हम इसमें समय को जमा करते हैं।
0: बहुत अच्छा, और क्या हुआ ऐसा जिसने आपको ये प्रेरणा दी?
1: आपने देखा होगा कि आज सबसे ज्यादा कमी है तो समय की है, बावजूद इसके कि सबके पास पर्याप्त समय है। समय की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी समय नहीं है।
0: जी जी जी।
1: आप किसी को फोन कर लें तो वो छूटते पूछता है कि बताइए क्या काम है, अर्थात सामान्य अगर हम बात करना चाहें, मित्र से बात करना चाहें कि चलो यार थोड़ा मन हल्का करते हैं, दो घड़ी बात करते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि किसी काम से फोन किया होगा। और ये स्थिति आपने देखी होगी कि कोरोना जब आया था, कोविड-19 आया था, आइसोलेशन में लोग थे जिनको कोरोना हुआ, शुरुआत का जो दौर था बड़ा डरावना था। उस समय डॉक्टर भी पूरा पीपीई किट पहन के आते थे और अलग से उनको रखा जाता था, किसी दुनिया से संपर्क नहीं रहता था, यहां तक कि मोबाइल भी उनके हाथ में नहीं दिए जाते थे, बाद में तो मोबाइल भी देने लग गए। लेकिन वो जो पीरियड उनका रिकवरी का पीरियड था, उसमें चूंकि वो पूरे संसार से कटे हुए थे तो इतने त्रस्त थे, इतना भयावह स्थिति थी उनकी कि कोई मिले बात करने को। और आपने देखा होगा कि जैसे कोविड खत्म हुआ तो मेल मिलाप का दौर चल पड़ा, यानी कि बेसिकली मनुष्य मनुष्य को चाहता है, हम एक सामाजिक प्राणी है, हम अपने संग साथ के बगैर नहीं रह सकते। उनके साथ में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जो अब समाज में मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनका आना जाना बंद हो गया। हम आप जो अभी इस स्थिति में है, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, हम इतने वृद्ध भी नहीं हुए कि हम अकेले नहीं जा सके, तो हम कहीं भी फंक्शन होता है, समाज में कोई एक्टिविटी होती है, दोस्तों के यहाँ जाना है, हम चले जाते हैं। लेकिन उन बुजुर्गों का क्या जो आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि वे घर से अकेले निकल नहीं पाते। अब वो हमेशा इस बात का प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कोई दो घड़ी उनके पास में आए, बैठे, बतियाए, उनका मन लगे इस बहाने, लेकिन किसी के पास इस चीज के लिए समय नहीं है। तो ये ऐसा पॉइंट था जिसने ये मुझे सोचने को मजबूर किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। मेरी माता जी भी जो उस समय लगभग 92 ईयर्स की थी, 92 साल की थी, और शारीरिक रूप से इतने समर्थ नहीं थे कि वो अकेले कहीं जा सके, तो उन्हें हमेशा ये रहता था कि कहीं जाना है तो बेटा तू घुमाला चल, कार में बिठा के एक चक्कर ही लगाया बाजार का, फलानी मेरी सहेली से मिला ला, या उन्होंने अपना कुछ ग्रुप बना लिया था, जो महिलाएं आती थी वो सत्संग करती थी, भजन कीर्तन करती थी।

0: लेकिन आप सोच के देखिए, ये स्थिति समाज की हमारी धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। महानगरों में बड़ी समस्या है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपको फर्स्ट डोर नेबर के बारे में नहीं पता होता। जहां
1: जी
0: पहले हम
1: बिल्कुल
0: कभी भी ऐसे ही घंटी बजा के चले जाते थे बिना अपॉइंटमेंट के, आज फोन करके अपॉइंटमेंट लिए बगैर अपने घनिष्ठ मित्र के पास भी जाने में संकोच होता है। और ऐसा एक समाचार एक आया, जो हमारी विश्व की नई यूनिवर्सिटी है, जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसमें दुनिया भर का ज्ञान होता है, तो सामान्यतः इसमें इतने मैसेजेस होते हैं कि हमें डिलीट ही
1: हाँ
0: करने पड़ते हैं। पर कभी
1: हाँ
0: कभी कोई ऐसे मैसेज होते हैं या ईश्वरीय कोई कृपा होती है कि आपका ध्यान वहां अटक जाता है। ऐसा ही एक संदेश टाइम बैंक के बारे में आया था। स्विट्जरलैंड की एक स्टोरी किसी बच्चे ने साझा की थी कि वहां पे ऐसे समय बैंक चलता है, और मेरी लैंड लेडी थी, वो जाती थी समय जमा करती थी, फिर वो एक दिन गिर गई, अकेली थी तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उसकी हड्डी वड्डी टूट गई। तो उसने कहा कि यार अब कौन संभालेगा, तो उस लैंड लेडी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैंने अपने समय बैंक में समय जमा कर रखा है, और अब वो लोग आएंगे और मुझे समय देंगे। तो मैं जो दिन में जाती थी, तो मैं किसी काम पे नहीं जाती थी, बल्कि किसी बुजुर्ग की सेवा करने जाती थी, और उसकी सेवा के बदले में मैं समय जमा कर रही थी। इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि क्या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई संदेश है, या वास्तव में ऐसा कुछ है भी। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, देखा तो ये वाकई स्विट्जरलैंड में सरकार की ओर से ये योजना चलती है, और बकायदा वहां जमा खर्च होता है समय का। और फिर मैंने और सर्च किया, तो मैंने देखा कि और भी कई देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, ये टाइम बैंक की अवधारणा प्रचलित है। कहीं पे ये एनजीओ के माध्यम से चल रही है, कहीं सरकार के माध्यम से चल रही है। फिर यहाँ भारत में मैंने इसको ढूंढने का प्रयास किया, तो मुझे भारत में कहीं पे भी टाइम बैंक नहीं मिला। अब आप तो जानते हैं आलोक जी, बैंक से रिटायर हुए हैं, ऐसा कोई समाज सेवा का कोई अनुभव नहीं था कि संस्था कैसे बनती है, कैसे चलाई जाती है। मन में विचित्र सी स्थिति थी कि यदि हम इसे शुरू करेंगे तो इसमें क्या क्या कठिनाई आएगी, क्या परेशानी आएगी, तो इस पे क्या करें। एक ये भी दिमाग में होता था कि एनजीओ के का मतलब, एक दिमाग में प्रश्न पहुंचता है कि एनजीओ बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके लिए फिर वो पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, उगाते हैं, मेंबरशिप फीस रहती है, फिर उसका क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पता नहीं। कई बार संस्थाओं में इसी बात को लेके झगड़े होते हैं, पद को लेके झगड़े होते हैं। तो एक ये मन में था कि संस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो,
1: चलिए चलिए,
0: ऐसा करें कि
1: अच्छा
0: जिसमें मतलब मिनिमम पैसे से काम हमारा चल सके। लेकिन
1: तो
0: आगे कैसे बढ़े। हाँ आप कुछ कह रहे हैं।
1: हाँ, तब इसका मतलब है कि यहां पैसे की बजाय टाइम जमा होता है, और जो अपना टाइम देता है वो उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट हो जाता है।
1: हाँ
0: तो इसको शुरू करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बुजुर्गों से बात की जाए। मुझे ध्यान है कि एक बार एक केंद्रीय विद्यालय के पेंशनर्स का कोई सम्मेलन हो रहा था, अखबार में खबर आई कि आज
1: अच्छा
0: फलानी जगह ये सम्मेलन होगा। तो मैंने कहा कि यार चलते हैं, यहाँ बात करके देखते हैं। मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन वहां चला गया। उनको जाके मैंने आयोजकों को कहा चलती मीटिंग में कि साहब ऐसा ऐसा एक कंसेप्ट है कि बुजुर्गों की देखभाल करनी हो तो समय दे के हम आपस में एक दूसरे की देखभाल करें।

0: बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं, अगर अनुमति दे तो। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कहीं पे भी आप जानते हैं कि कोई सभा चल रही होती है तो उनका पूरा शेड्यूल होता है और किसी भी अनजान व्यक्ति को बोलने की अनुमति होती नहीं, क्योंकि उनका सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। लेकिन उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दे दी कि बोले आप ठीक है, अपनी 5 मिनट में अपनी बात आप रख सकते हैं, 5 मिनट का हम समय देते हैं। तो मैंने 5 मिनट में अपनी बात वहां पे कही और कह के मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं या इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर लें, मैं अपना मोबाइल नंबर आपके आयोजकों के पास छोड़ता हूं, क्योंकि मेरा 5 मिनट का टाइम हो गया था।
1: ठीक।
0: तो मैं मन से मैंने उनको कहा कि सर आपके पास मेरा नंबर है, अगर किसी को जरूरत हो तो आप दे दीजिए। वहां मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोगों ने वहीं से आवाज लगाई कि साहब आप तो बोल दो, यहीं से बोल दो, हम नोट कर लेंगे।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा देखिए मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं इसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता, तो आप यहाँ से ले लें। तो वो आयोजक ही खुद बोले कि साहब कोई बात नहीं, आप तो बोलो और ये नंबर नोट कर लेंगे।
1: ठीक।
0: और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चों की तरह उन्होंने अपने मोबाइल में या नोट पैड पे मेरे नंबर नोट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा।
0: और जहां अटक रहे थे वहां रिपीट करने शुरू कर दिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: इसके बाद में मैं और कई लोगों से मिला, प्रबुद्ध लोगों से मिला, मैंने चर्चाएं की कि भाई ये एक ऐसा अवधारणा मुझे शुरू करनी है तो आप बताइए इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों ने सुन के पूरा पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया, उसके बाद पहला ही सवाल लोगों के दिमाग में आया कि साहब सीनियर सिटीजन एक सॉफ्ट टारगेट है, इनके साथ में कुछ हो गया। आपने कहा कि वो उनके घर जाएंगे, उनका अकेलापन दूर करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बतियाएंगे, उनको लेके जाएंगे, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन है तो वहां पे देखभाल करेंगे। लेकिन अगर घर पे जाते हैं तो अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा उसका? अब इसका जवाब मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था, क्योंकि अगर तो सही बात है सरकार के स्तर पे कुछ हो रहा है तो सरकार देखेगी, एनजीओ के स्तर पे कुछ हो रहा है तो बड़ी मुश्किल होगी जी।

0: चल, तो ये अपन आगे चर्चा जारी रखते हैं। थोड़ा मेरे को इसकी ये बात बताइए कि अभी टाइमिंग क्या आपका एक दो शहरों तक ही सीमित है या कई शहरों में इसकी उपस्थिति है?
1: आलोक जी, अब तो ये बहुत शहरों में हो गया है, काफी विस्तार ले चुका है। लगभग यूं कहें कि देश के जो हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं, प्रमुख शहर होते हैं, सब
0: हाँ
1: जगह इसकी उपस्थिति इसकी दर्ज हो चुकी है और अच्छा
0: तो अभी
1: चल रहा
0: कितने
1: है।
0: मेंबर्स हैं इसके अभी फिलहाल?
1: फिलहाल हमारे इसमें तकरीबन 9,000 मेंबर हैं, हाँ,
0: अच्छा,
1: देश भर की
0: और
1: शाखाओं में,
0: कई कई स्टेट्स में हैं।
1: कई स्टेट्स में है।
0: अच्छा, अब ये बताइए मुझे कि बैंक के सदस्य किस प्रकार की सहायता दूसरे सदस्यों को देते हैं, जैसे किन किन मेडिकल कंडीशंस में उनकी मदद करते हैं?
1: इसमें सबसे पहला तो हमारा ये है कि जो घर पर अकेले हैं, जिनके पास में कोई बैठता नहीं है, उनके पास आप बैठे हैं ताकि उनका एक तरह से देखभाल भी हो सके और उनका मन भी लगा रह सके। मैं आपको शेयर करूं कि एक एशियन पेंट्स का एक सीरीज आई थी, हर घर कुछ कहता है, उसमें
0: अच्छा
1: उन्होंने धर्मेंद्र का इंटरव्यू लिया था
0: अच्छा
1: और कई एपिसोड में था उसका ये इंटरव्यू, जिसमें उसके पूरे
0: जी
1: जीवन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। उसमें से एक क्लिपिंग मुझे मिली, जिस क्लिपिंग में वो पूछते हैं कि जब आप बॉम्बे आए थे और आपके परिवार भी यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो आपको कैसा महसूस होता था, तो बोले कि वो मैंने बाऊजी और वो माता जी को पता नहीं क्या कहते थे, तो वो लोग
0: हाँ
1: वहां पे आ गए और ये बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। पैसा था, कोठी थी, नौकर चाकर बंगला सब कुछ था। तो वो तो शूटिंग से लौटते थे, कई बार कई कई दिन होते थे, महीनों लग जाते थे, घर आते थे, माता जी के पास बैठते थे, उससे पूछते थे कि आपको कोई दिक्कत है, कुछ काम है, वो ऐसे ही बैठी रहती थी उदासी सी। बोले नहीं बेटा, सब कुछ तो है, क्या कमी है, तेरे तो सब कुछ कर रखा है ना, किसी तरह की दिक्कत तो है नहीं, तो कोई बात नहीं। फिर वो बाबूजी के पास जाते थे तो वो ऐसे हाथ से एक्टिंग करके कह रहे थे कि वो ठुड्डी पे हाथ रख के बाबूजी बैठे होते थे। मैं पूछता था कि बाबूजी क्या चाहिए, बोले बेटा कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो तूने दे रखा है, गाड़ी है, नौकर चाकर बंगला है। बड़े मायूस से होके कहते हैं कि लेकिन बेटा तू थोड़ा जल्दी आ जाया कर। उनका अभिप्राय कि मतलब बेटा उनके पास में बैठे थोड़ी देर के लिए, इतने नौकर चाकर की भीड़ में भी वो अकेले हैं,
0: सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है
1: अकेलेपन की समस्या।
0: आजकल।
1: तो पहला काम तो हमारा यही है कि उनका अकेलापन दूर हो, जिनके पास में कोई आने जाने वाला नहीं है। दूसरा काम हमारा होता है कि ऐसे बुजुर्ग जो सक्षम नहीं है, उन्हें छोटे छोटे काम के लिए लोगों का मोहताज होना पड़ता है। चश्मे की डंडी टूट गई है, अब कोई मिलेगा तो वो जाके बनवा के ला पाएंगे, अन्यथा वो बैठे हुए हैं ऐसे। उनको
0: जी।
1: डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, यहाँ तक कि मंदिर जाना है या सुबह घूमने जाना है ना। आपने
0: हाँ
1: देखा होगा जो काफी बुजुर्ग होते हैं, उनका पोता या कोई सर्वेंट या कोई उनका बेटा, वो हाथ पकड़ के
0: हाँ
1: साथ साथ लेके आता है, पैदल चल रहे हैं लेकिन वो अकेले नहीं जा पाते, उनको डर लगता है गिरने का, कुछ हो जाने का, तो
0: जी
1: साथ जाते हैं। तो ऐसे में उनको
0: हाँ
1: साथ ले जाना, ले
0: चाहिए
1: आना, उनके
0: चाहिए
1: काम करा के घर छोड़ दे। और तीसरा काम है हमारा कि जब अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं
0: हाँ
1: तो वहां पे अटेंडेंट के तौर पे आपको व्यक्ति नहीं मिलता।
0: जी।
1: आपने
0: आजकल ये
1: देखा
0: बहुत
1: होगा,
0: बड़ा
1: हम और आप सब इससे गुजरे हैं कि हमारे
0: जी
1: कोई मित्र अस्पताल में भर्ती हो गए तो हम देखते थे कि विजिटिंग आवर्स क्या है, उस समय जाते
0: हाँ
1: हैं, 5-7 मिनट बैठते हैं और वापस आ जाते हैं,
0: हाँ फॉर्मेलिटी से
1: लेकिन
0: निभाते हैं।
1: फॉर्मेलिटी से निभाते हैं। वो भी इसलिए कि वो ठीक होने के बाद ये नहीं कहे यार तू तो
0: बिल्कुल सही बात,
1: देखने
0: बिल्कुल
1: भी
0: सही
1: नहीं
0: बात
1: आया। और कई बार तो हम अनजाने में उसका नुकसान और कर जाते हैं, वो
0: जी।
1: ऐसे कि वहां बैठते हैं, हम सबके सब तो डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े है ना, तो अच्छा
0: सब
1: अरे तू यहाँ कहाँ यार, हॉस्पिटल में आ गए, ये हॉस्पिटल तो बड़ा बदनाम है ना, लूटता है, तेरे को उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अच्छा
0: बिल्कुल
1: किस
0: सही
1: डॉक्टर से
0: बात।
1: इलाज चल रहा है, इस डॉक्टर से, अरे यार ये
0: अच्छा
1: डॉक्टर अच्छा नहीं है, इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, वो
0: दूसरे
1: फलाना
0: जगह।
1: डॉक्टर
0: हाँ
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल
1: कहेगा
0: सही।
1: हल्दी में मिला के ये खा लेना, कोई कहेगा फिट करके गरारे कर लेना, तो वो
0: हाँ
1: बेचारा जो उसका
0: बिल्कुल
1: विश्वास है उस डॉक्टर पे और हॉस्पिटल पे, उसको शेक करके और आ जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: लेकिन अगर उसने कह दिया कि यार मेरे पास यहाँ पे कोई है नहीं, तुम क्या दिन भर छुट्टी लेके मेरे पास में या हॉस्पिटल में रुक सकते हो, तो वो
0: हाँ
1: दाएं बाएं हो जाएंगे
0: दाएं
1: यार,
0: बाएं
1: आज
0: बाएं
1: तो मेरे ये काम है, आज तो
0: जी
1: नहीं, मैं कल कल देखता हूँ, है ना, वो तो कल होके आगे
0: जी
1: होके वो
0: बिल्कुल
1: पूछेंगे भी नहीं कल कि भाई वो तेरी जरूरत थी, मैं आऊं या नहीं आऊं। तो
0: सही बात
1: बहुत घनिष्ठ हमारे मित्र हैं, जिनको हम लंगोटिया यार कहते हैं, जो ये तकलीफ उठा के भी अपना काम धंधा छोड़ के हमारे पास आ सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, हमने परिवार के सदस्य हैं, केवल वही लोग
0: आते हैं
1: आपके पास आ सकते हैं, यहाँ टाइम खर्च करके आपके पास रुक सकते हैं, बाकी किसी के पास टाइम नहीं। तो टाइम बैंक वहां पे उनकी देखभाल
0: तो आराम से करता है।

0: डालोगे।
1: अब मुझे ये बताइए कि अगर किसी सदस्य को मदद चाहिए तो वो किस प्रकार से रिक्वेस्ट करे, क्या कोई चार्जेस देने पड़ते हैं?
2: नहीं नहीं, इसमें चार्जेस तो मैंने बताया कि हमने कुछ रखा ही नहीं है, पैसे का तो कहीं कोई लेन देन है ही नहीं, ना इसकी सदस्यता के लिए कोई शुल्क है और ना ही उसको किसी सेवा के बदले में कोई पैसा देना है।
1: ओके,
2: और ना संस्था सेवा देने वाले को कोई पैसा देती है।
1: अच्छा, तो जो
2: सदस्यता के
1: जो सदस्य बनने के लिए भी कोई चार्जेस नहीं है?
2: ना ना, कोई चार्जेस नहीं, फ्री है मेंबरशिप।
1: ओके ओके, कोई एलिजिबिलिटी अगर मेंबरशिप लेने की क्या है, क्या जिसको पात्रता कहते हैं अपन?
2: हाँ, पात्रता जरूर है। पात्रता ये है कि हम एक टी कंसेप्ट कहते हैं कि चाय पीनी हो तो आप टाइम बैंक के सदस्य बन जाइए। और टी का टी ई ए का टी स्टैंड फॉर टाइम।
1: ओके,
2: अगर आपके पास टाइम है देने के लिए या लेने के लिए, आपको समय चाहिए दूसरों से या आप किसी को समय दे सकते हैं तो आप सदस्य बनिए। दूसरा है ई, ई फॉर एनरोलमेंट, अगर आपके पास टाइम है तो आप एनरोल कीजिए, सदस्य बनिए। और तीसरा है ए, ए मीन्स एटीट्यूड, आप में सेवा का जज्बा है, अगर ये तीन चीजें हैं तो आप सदस्य बन जाइए। सेवा का जज्बा होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, एनरोल करना है, आपको देने के लिए या लेने के लिए समय होना चाहिए। बस इतना सा है कि चूंकि किसी भी संस्था में जुड़ने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं, उसको एक्सेप्ट करना होता है टर्म्स एंड कंडीशन को, तो एक तरह से ये एग्रीमेंट जैसी चीज है। तो हमने ये रखा कि 18 साल से कम की उम्र के बच्चे इसमें सदस्य नहीं होंगे। 18 साल से ऊपर का किसी भी उम्र का हो, हमारे यहाँ पे 98-99 के भी सदस्य रहेंगे।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है सीनियर सिटीजन्स के अलावा जो यंग लोग जिनमें जज्बा है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं?
2: हाँ, बिल्कुल, कोई भी बन सकता है, किसी भी सर्विस क्लास का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, प्रोफेशन का हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, IAS हो, प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, रिक्शा चलाने वाला हो, कोई भी हो सकता है। हमारे ट्रक ड्राइवर भी मेंबर बने हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को देश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया गया, आपके अधिकांश मेंबर्स वरिष्ठ नागरिक हैं, इनकी सहायता करते समय इनकी सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करते हैं?
2: हाँ, ये आपने बहुत उचित सवाल पूछा, क्योंकि यही सबसे ज्वलंत समस्या है। जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो यही बात सामने आती है, जो खासतौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं तो वो भी पूछते हैं। तो हमने इसकी सुरक्षा के लिए कई सारे लेयर्स लगाए, जैसे जैसे हमें समझ आती गई बातचीत करते हुए, लोगों ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा
1: जी।
2: तो हमने ये देखा कि

0: जब कभी भी हमें मदद की जरूरत होती है, मान लीजिए कि आपकी को हॉस्पिटल जाना है और कोई ले जाने वाला नहीं है, आप अकेले नहीं जा सकते, आपको कोई साथी चाहिए, ठीक है ना, तो पहले आप अपने बच्चों को, परिचितों को, रिश्तेदारों को ढूंढेंगे, ठीक है ना, जो पास में हो आपके, और अगर वो नहीं होंगे तो आप अपने पड़ोसी को कहेंगे, अपने किसी मित्र को कहेंगे, है ना। तो जाने अनजाने हम जिसको भी ढूंढते हैं, जिसको भी मदद के लिए पुकारते हैं, उसमें हम तीन क्वालिटी देखते हैं
1: जी।
0: पहली क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारा जानकार हो, विश्वसनीय हो
1: जी।
0: दूसरी क्वालिटी देखते हैं कि वो हमारे पास में हो, नजदीक हो, बहुत दूर नहीं हो, क्योंकि बहुत दूर होगा तो वो हमारे लिए इतना काम का नहीं होता। तीसरी चीज हम देखते हैं कि वो उपलब्ध भी हो, ठीक है ना। उपलब्ध से मेरा मतलब है कि जैसे आप आपके पड़ोस में ही कोई रहता है और आपका मित्र भी है, आपका विश्वसनीय है, सब कुछ है, लेकिन वो उस दिन शहर से बाहर गया हुआ, तो वो उपलब्ध नहीं है,
1: नेचुरली
0: है ना। पहली दो क्वालिटी पूरी होने पे भी तीसरी क्वालिटी उस पैरामीटर में खरा नहीं उतरता। तो ये तीन चीजें हैं जिसके ऊपर हमने काम किया। अब इसमें जो आपने सुरक्षा की बात की, उसमें हमने कई सारे लेयर्स लगाए।
1: अच्छा,
0: पहला लेयर तो ये है कि जो रजिस्टर करेगा, ऑनलाइन मेंबरशिप है, वेबसाइट पे जाके कोई भी मेंबर बन सकता है, timebankofindia.com हमारी वेबसाइट है। तो जब वो रजिस्टर करता है तो उसमें जो डाटा है वो किसी को भी उपलब्ध नहीं होता है, कोई मेंबर हो या नॉन मेंबर हो, कोई भी ये नहीं देख सकता कि इसमें कौन कौन मेंबर हैं, उनके नाम पते क्या हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या हैं, उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट का क्या हाल है, किसी को कुछ नहीं पता होता, सिर्फ अपनी डिटेल देख सकता है और किसी की नहीं देख सकता। पहली लेयर हमने ये लगाई। दूसरी लेयर लगाई हमने केवाईसी की, कि जो मेंबर बनेगा वो अपनी फोटो भी डालेगा, अपनी केवाईसी का डॉक्यूमेंट भी डालेगा, अपनी डिटेल भी पूरी भरेगा, एड्रेस भी पूरा भरेगा, सारी चीजें कंप्लीट करते हैं उसमें, और रजिस्ट्रेशन भी ओटीपी के माध्यम से हम करते हैं ताकि कोई फेक नंबर से कोई रजिस्ट्रेशन ना करे,
1: ठीक है।
0: इसके बाद अगली हमने रखी है जो लेयर, कि जो मेंबर ऑनलाइन रजिस्टर करता है वो बाय डिफॉल्ट इनएक्टिव होता है,
1: ओके,
0: उसे अप्रूव करते हैं तो फिर वो एक्टिव मेंबर कन्वर्ट होता है। तो हमारे यहाँ एक्टिव इनएक्टिव की कैटेगरी है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी रजिस्टर होगा वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल की कैटेगरी में जाता है। और हमारा जो यूनिट्स है, जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है, पोस्टल पिन कोड या और भी छोटी यूनिट्स होती है, उनके संचालन के लिए एडमिन होते हैं, जो वॉलंटियर्स में से ही, हमारे मेंबर्स में से ही कोई होते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसका वेरिफिकेशन करे, वो उसके घर जाकर, उससे वीडियो कॉल करके, उससे फोन करके, मीटिंग के दौरान उसकी संतुष्टि होनी चाहिए कि जिनाइन व्यक्ति है, तो वो उसे अप्रूव करता है
1: जी।
0: तो जो हमारा अप्रूव सदस्य है, सेवा लेने में या देने में वही भाग ले सकता है, ना तो अनअप्रूव मेंबर सेवा लेने के लिए अनुरोध कर सकता है, ना सेवा पूरी करने के लिए वो उसको एलिजिबिलिटी होती है, तो अप्रूव होना जरूरी है। यहां तक हमने सब कर लिया। फिर किसी ने कहा कि साहब आप आई कार्ड और इश्यू कर दो इनको, तो हमने कहा कि भाई आई कार्ड इश्यू तो कर दें, लेकिन अब मुझे आप बताइए कि जिस देश में पैन कार्ड और पासपोर्ट और आधार डुप्लीकेट बन जाते हैं, तो आई कार्ड का क्या होगा। तो बात यह आई कि विश्वसनीयता या मित्रता बनती तब है जब हम लगातार मिलते जुलते हैं,
1: मिलते रहते हैं।
0: हालांकि मैं बैंक में नौकरी करता रहा हूं, है ना, जहां ट्रांसफरेबल जॉब है, नए शहर में जाते हैं, ना तो स्टाफ जानकार होता था, ना कोई और पड़ोसी जानकार होता था, तो वहां हम अपने स्टाफ में तो चलो ज्वाइन करते थे तो जान जाते थे कि भाई ये मैनेजर साहब आए हैं, ठीक है, फिर हम उनके माध्यम से या ब्रोकर्स के माध्यम से मकान लेते हैं, जिस मोहल्ले में मकान लेते हैं जानते हैं आपके, वहां पे फिर हमें कोई भी जानकार नहीं होता, लोग दरवाजे से झांक के देखते हैं कि कोई नया मुर्गा इस मोहल्ले में आया है है ना, कि कौन आया है, थोड़ा सा वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। छोटा शहर होता है तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाते हैं कि साहब आप नए आए हो क्या, आपको कुछ चीज चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, लेकिन बड़े शहरों में कोई नहीं पूछता,

0: चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपकी संस्था ने इतने समय में इतनी प्रगति कर ली है, क्या सरकार से आपको कोई सपोर्ट या सहायता मिलती है?
1: सरकार से सपोर्ट और सहायता की बात करते हैं आप, तो ऐसा अगर ये कोई हम कहें कि कोई कोलैबोरेशन हुआ है तो वो यहाँ तो राजस्थान में नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश सरकार से जरूर हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि हमारा इसमें हमने ये शुरू से ध्येय रखा है कि पैसे का लेन देन इसमें नहीं होगा, इसलिए हमारी संस्था टेक्नोलॉजी पे काम करती है, वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से काम करती है। पूरे देश में हमारे कोई ऑफिस नहीं है और कोई कर्मचारी नहीं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगभग जीरो सी है। तो सरकार के पास भी हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए। अब यहाँ हम राजस्थान सरकार के पास जब जब गए तो उनके साथ में यही एक समस्या थी कि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती थी कि इनकी मदद कैसे करें, क्योंकि जो संस्थाएं उनके पास जाती हैं वो या तो अनुदान मांगती हैं, है ना,
0: या जमीन
1: या जमीन मांगती हैं, इसके अलावा उनके पास में और कुछ है नहीं। और वो कहते हैं साहब आप बताइए आपको जमीन चाहिए या कुछ और चाहिए, तो हमें बताएं कि हमें ना तो जमीन चाहिए ना आपका पैसा चाहिए
0: जी।
1: हमें तो आपसे प्रचार में मदद चाहिए, क्योंकि हमारे पास में प्रचार के लिए पैसा नहीं, हम पैसा इकट्ठा करते ही नहीं है, तो हमारे पास में प्रचार करने के लिए एडवर्टाइज करने के लिए खर्चा नहीं है, तो आप वो कर दीजिए। अब वो उनके बात समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमने एक तो जो पुलिस डिपार्टमेंट है,
0: अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट
1: है, तो हर पुलिस के थानों में अलग अलग बीट बनी हुई होती है। बीट का मतलब होता है कि एक थाने में ऐसा एक क्षेत्र जिसका एक प्रभारी एक पुलिस कांस्टेबल होता है, उस एरिया की जो भी क्रिमिनल गतिविधियां होती है उसकी सूचना देना, सुराग देना, इंफॉर्मेशन रखना, वो उस बीट कांस्टेबल का काम होता है
0: जी।
1: और यहाँ राजस्थान में उनकी ड्यूटी में एक ड्यूटी ये भी शामिल है कि उस बीट के जो बुजुर्ग हैं, अकेले बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखें, उनसे बीच बीच में जाके मिले, उनका हालचाल पूछे, ये उनकी ऑफिशियल ड्यूटी में है।
0: ऑफिशियल ठीक है।
1: हाँ, हमें किसी ने बताया तो हमने देखा कि भाई ये तो कभी तो देखा नहीं हमने किसी बुजुर्ग के पास इनको बीट कांस्टेबल को आते आते, तो हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे हमने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, आपकी जो बीट कांस्टेबल है उनके पास ऐसी ड्यूटी होती है, लेकिन चूंकि आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करनी, ये आपकी सेकेंडरी ड्यूटी है, तो वो इतना कर नहीं पाते, हमें इतना कर दीजिए कि ऐसे बुजुर्गों को बीट कांस्टेबल के माध्यम से हमारे साथ जोड़ दीजिए, देखभाल का काम हम कर लेंगे।
0: ओके।
1: तो उन्हें हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन्होंने लिखित में सारे थानों को ये आदेश जारी किया कि वे अपने बीट कांस्टेबल्स को टाइम बैंक के साथ में कनेक्ट करें। तो एक तो ये सरकार के साथ हमारा कनेक्ट है ना, क्योंकि पुलिस भी डिपार्टमेंट आसानी से ऐसे पत्र देती नहीं,
0: ठीक है, सही,
1: विश्वसनीयता देख के ही उन्होंने ऐसा पत्र जारी किया।
0: जी जी जी जी।
1: दूसरा जो है, जब हम यहाँ एक जो समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय होता है जो इस तरह के समाज कल्याण से संबंधित कामों को देखता है, उनके पास गए, उन्हें हमने कहा ये, तो ये बात तो उनको समझ में आई नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कर दिया कि जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ सीनियर सिटीजन से संबंधित काम होते हैं, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अपना जो देवस्थान विभाग है जहाँ वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा योजना होती है, नगर निगम है ना, तो वहां पे ऐसी जरूरत पड़ती है, तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट से उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी कि साहब जो भी टाइम बैंक से संबंधित आवश्यकता हो आप इनकी यथासंभव मदद करें।
0: चलिए,
1: तो उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का हमारे साथ में बड़ा अच्छा तालमेल हुआ।
0: नहीं, पुलिस से अगर ये मदद मिल जाए, कम से कम सरकार ने ऐसा सर्कुलर इशू तो किया है, यही बहुत बड़ी बात है।
1: हाँ हाँ हाँ।

0: अच्छा ये बताइए कि आंध्र प्रदेश सरकार से आपके टाइम में इनका क्या जुड़ाव हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए मुझे।
1: उसमें क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश सरकार को स्वयं ये विचार आया कि अपने बुजुर्गों के लिए, क्योंकि साउथ में बुजुर्ग ज्यादा हैं नॉर्थ के
0: जी
1: कंपेरेटिवली, है ना, जहां
0: अच्छा
1: पे भी, हाँ जहां पे भी अपने शैक्षणिक स्तर जहाँ अच्छा है वहां
0: हाँ
1: पे बर्थ कंट्रोल भी अच्छा है और
0: हाँ
1: वहां पे फिर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। तो
0: ज्यादा
1: आंध्र
0: अच्छा
1: प्रदेश सरकार को ये विचार आया कि ऐसा कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि बुजुर्गों की देखभाल हो सके, तो उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया इस काम के लिए। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम डायरेक्ट,
0: अच्छा
1: उनके थ्रू ये काम चला। उन्होंने अपने स्टाफ को लगाया कि पता करो साहब यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है। उन्होंने
0: अच्छा
1: जब काफी रिसर्च की तो देखा कि एक टाइम बैंक ऑफ इंडिया देश में ऐसा काम कर रहा है और
0: ओके
1: कोई संस्था उनको मिली नहीं। तो उन्होंने पूरी वेबसाइट हमारी अच्छे से छानी, देखी, समझने का प्रयास किया। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, कुछ सवाल थे वो हमसे बात की उन्होंने, हमने उनके जवाब दिए, उससे वो काफी संतुष्ट हुए। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आईएएस लेवल पे एक मीटिंग हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई,
0: अच्छा
1: जिसमें उनके बड़े उच्च स्तर के पदाधिकारी थे और हमारे यहाँ के टीम के भी लोग थे। हमने
0: हाँ
1: पूरा प्रेजेंटेशन बना रखा था कि हम कैसे सरकार के साथ काम कर सकते हैं। वहां पे भी हमारा यही था कि सर हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे जमीन नहीं चाहिए, हमें आपसे जो जो चाहिए वो एक तो प्रचार में मदद चाहिए हमें खासतौर पर, और दूसरा हमें कि अगर हम यहाँ से कोई आते हैं वहां पे तो हमें एक प्रोटोकॉल की तरह मिल जाए कि तो हमें कम से कम रहने का खर्चा तो नहीं हो, ट्रेवल का खर्चा हम कर लेंगे, रहने का और ट्रांसपोर्ट का खर्चा हमारा बच जाए, प्लस हमारी जो मीटिंग्स होती है उन मीटिंग्स के लिए आपके पास बहुत सारी जगह है,
0: हाँ तो
1: डे केयर सेंटर्स होते हैं, वो हमें आप दे दीजिए, उसमें आपका कोई पैसा लगना नहीं। तो वो इसके लिए तैयार हो गए, उन्होंने एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेज दिया वहां पर। बोले आप कैसे शुरू करेंगे, हमने कहा कि एक आप पायलट प्रोजेक्ट कर लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट का, उससे
0: अच्छा
1: आपको भी तसल्ली होगी हमें भी तसल्ली होगी, एक साथ
0: अच्छा
1: पूरे प्रदेश में लागू करने के बजाय हम ऐसे चले तो ज्यादा बेहतर है।
0: जी
1: उन्हें ये विचार अच्छा लगा और उन्होंने हमसे ही चुनने के लिए कहा। हमने विशाखापट्टनम को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना और 18 मार्च 2025 को
0: अच्छा
1: सरकारी स्तर पर आयोजित समारोह में, जहां पे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के सभी लगभग अधिकारी उपस्थित थे, डिस्ट्रिक्ट
0: अच्छा
1: कलेक्टर थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, कलेक्टर
0: जी
1: के हाथों से इसका उद्घाटन करके हम पायलट प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम में शुरू
0: शुरू
1: करके
0: कर
1: आ चुके हैं और वहां पे हमने अपने एडमिन्स मनोनीत कर दिए और वहां पे अब काम हमारा चल रहा है।
0: चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आपके कई राज्यों में उपस्थिति हो गई है टाइम बैंक की। आप मुझे
1: जी
0: ये बताइए कि श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टाइम बैंक ऑफ इंडिया अगर आप गूगल करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे और इसके बारे में सारी जानकारी आपको टाइम बैंक के बारे में मिल जाएगी। और जैसा कि अभी अभी बीच में जैन साहब ने भी बताया था इसके बारे में।

0: चलिए, अब टाइम बैंक का ये सफर बहुत लंबा रहा है आपका, इस दौरान कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जो आपसे हमसे शेयर करना चाहें, जिसे आप भूल नहीं पाते हो, ऐसी कोई बात हो तो बताइए।
1: हाँ, ऐसी बात है सर। बीच में कुछ अखबार में खबरें आई थी, कभी कभी अभी भी आ जाती है
0: जी,
1: कि बुजुर्ग दंपति घर में अकेले थे, नौकर आता था काम करके चला जाता था, चांस की बात है कि नौकर छुट्टी पे था
0: जी।
1: और उस बुजुर्ग दंपति की डेथ हो गई, क्योंकि वो इतने बुजुर्ग थे कि घर से आने जाना संभव नहीं था
0: जी।
1: अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छे नौकरी से रिटायर हुए थे, जिनके बच्चे भी अच्छे सेटल हैं, शहर से बाहर हैं, दूर हैं, और पड़ोसियों ने खबर करके ये पुलिस को बताया कि साहब इस घर से बदबू आ रही है, और तब जाकर ये पता लगा कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो ये बड़ी पीड़ादायक, मुझे इसने बड़ा झकझोर दिया कि देखिए क्या स्थिति है आज हमारे समाज की, कि जहां पर हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि किसी को ऐसे उससे गुजरना पड़े और कोई भी ना हो। तो ये बड़ा एक मेरे को उससे दुखित
0: किया। एक
1: इंसिडेंस और मैं शेयर करना चाहूंगा
0: जी,
1: कि मतलब हम ये तो नहीं कहते कि सारी पीढ़ी ही ऐसी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार का ध्यान नहीं रखते, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते हैं, और सरकार ने भी इसके लिए वृद्ध जन भरण पोषण अधिनियम बनाया है, जहां जो ध्यान नहीं रखते उनको पाबंद किया जाता है, उनके ऊपर केस भी किया जा सकता है। कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादातर तो बच्चे दुखी होते हैं कि वो अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पाते, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि मजबूर हैं, दूर हैं, विदेश में हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो यहाँ होते हुए भी, साथ रहते हुए भी उनकी कदर नहीं करते। तो ऐसा एक वाकया मेरे साथ आया था, हमें किसी ने फोन करके बताया, उन्हें कहीं से पता लगा हुआ टाइम बैंक के बारे में, उन्होंने फोन करके बताया कि साहब ऐसे एक अकेली लेडी रहती है, उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं है और वो बीमार हो गई है, हम तो उनके पड़ोसी हैं, हमने उनको SMS हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है, लेकिन हम तो नौकरी करते हैं और हम इतना टाइम दे नहीं सकते, हमने तो ये मार्जिन आधार पर कर दिया है, आप जाकर जो है ना उनकी अगर कर सकते हैं तो देखभाल कर लें। तो वो हमारे मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलिए मान्य आधार पर ऐसी स्थिति है तो हमें संभालना चाहिए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो संभालने के लिए होना भी जरूरी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो फिर भी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वहां पे हमने अपने मेंबर्स को कहा, हमारी महिलाएं जो थी वो महिला विंग वहां पर जाके उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला, रात को भी उनके साथ में रुकते थे और पूरा देखभाल उनका चलता रहा। जब वो थोड़ा सा ठीक हुई और थोड़ा सा बातचीत करने लायक हुई, तब उनसे हमने पूछा कि भाई आपका खर्चा कैसे चलता है, कैसे होता है, कौन है कौन नहीं, आपको भर्ती करा के गए थे, वो दोबारा आए भी नहीं कभी भी, क्योंकि अगर एक बार भर्ती कराया तो दिन भर नहीं रुक सकते, पर कभी कभी तो हाल पूछने आ ही सकते हैं पड़ोसी।
0: सही बात है।
1: तब हमें पता लगा कि वो उनके रिश्तेदारी थी, भतीजी और उसके दामाद थे, पड़ोस में ही रहते थे, लेकिन वो इससे बचने के लिए वहां पे भर्ती कराकर और
0: चले गए।
1: तो बताइए मतलब कितनी सुखद स्थिति है। तो समाज में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कम से कम इनकी देखभाल हो सके। ये कुछ घटनाएं थी जिन्होंने बड़ा झकझोर किया मुझे।
0: जय बात है, बिल्कुल। नहीं, बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं, जो पुरानी रिटायर्ड हीरोइंस हैं या हीरोज हैं, उनकी कई बार डेथ हो गई है और बाद में खबर नहीं आई है, ऐसी बहुत।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परवीन बॉबी का काफी सुनने में आया था।
0: परवीन बॉबी का एक और शुभा कुट है या दुर्गा कुट,
1: मतलब ऐसे भी देखे हमने जिनके पीछे लवाजमा होता था,
0: सेलिब्रिटीज
1: होते थे, और इस अंतिम घड़ी में उनके साथ में बड़ा
0: कोई नहीं।

0: बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जैन साहब आप। चलिए अब यह थोड़ा सा बदलते हैं इसको, आपके कोई खास शौक हो, कोई आपका फेवरेट गाना हो या कोई ऐसी चीज हो तो आप बताएं हमें, क्या क्या शौक है जैन साहब के, एक व्यक्ति के रूप में आपके क्या शौक है।
1: शौक तो ये है कि मतलब कभी कभी गाने गा लेते हैं। पहले
0: जी जी
1: तो
0: अरे
1: हम
0: वाह,
1: प्ले वगैरह भी करते थे,
0: जी जी जी जी
1: तो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते थे। डिबेट विबेट का शौक रहा है, तो
0: जी जी जी
1: अभी भी कभी कभी गुनगुना लेते हैं गाने वाले।
0: अरे वाह,
1: और
0: तो
1: कुछ
0: ये
1: गाने ऐसे हैं, आप भी गानों का शौक रखते हैं, मुझे पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे गाने बने हैं कि आप किसी भी मौके के लिए ढूंढ लीजिए, आपको गाना मिल जाएगा। लड़की
0: ओहो
1: विदा हो रही है तो बाबुल की दुआएं लेती जा, है ना। बारात दरवाजे पर आई तो आज मेरे यार की शादी है, तो बच्चे का जन्मदिन है तो हम भी अगर बच्चे होते हैप्पी
0: बच्चे होते, बिल्कुल सही
1: बर्थडे टू,
0: बात
1: तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो
0: जी।
1: जब हम सेवा की बात करते हैं तो राज कपूर साहब की फिल्म का एक गाना, अनाड़ी फिल्म का गाना, मुझे
0: हाँ
1: बहुत अच्छा लगता है ना,
0: जी
1: जिसमें वो लाइन आती है, माना अपनी जेब से फकीर
0: फकीर
1: है
0: है, हाँ
1: फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं, है ना। तो ये
0: जी,
1: जो गीत है ये मुझे बड़ा प्रिय लगता है।
0: चलिए मुकेश का गाना है ये, मुकेश
1: हाँ
0: का
1: मुकेश
0: जी
1: का
0: गाना,
1: गाना है।
0: मुकेश जी का गाया हुआ है,
1: हाँ
0: बहुत बड़ी बात। और राज कपूर
1: हाँ
0: साहब पे फिल्माया गया है, वाह बहुत ही बढ़िया गाना है, और आपके टाइम बैंक की थीम से भी ये बिल्कुल जुड़ता है,
1: हाँ किसी की मुस्कुराहट हो पे हो निसार,
0: किसी की
1: किसी का
0: मुस्कुराहट
1: दर्द
0: का
1: मिल
0: प्यार,
1: सके तो ले उधार,
0: अगर
1: किसी के
0: ये
1: वास्ते
0: दर्द
1: में हो तेरे दिल में
0: किसी दिल
1: प्यार,
0: में प्यार,
1: जीना इसी का नाम है।
0: जीना इसी का नाम। तो आप अपना समय दे रहे हैं, अपना लोग समय दे रहे हैं एक दूसरे के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो चलिए जैसा मैं अंत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभी अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर टाइम बैंक को राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है,
1: जी
0: और आपके प्रयासों के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से भी अवार्ड दिया गया है,
1: जी
0: हमारी
1: जी
0: तरफ से और हमारे श्रोताओं की तरफ से इस सम्मान के लिए बधाई स्वीकार कीजिए। आप इस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। इस अवसर पर यदि कोई संदेश आप देना चाहें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: संदेश सीधा सा और साफ है कि जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं वे पहला काम तो ये करें कि अगर उनके माता पिता हैं तो एक जो संयुक्त परिवार की हमारी प्रणाली थी, प्रथा थी, जिसमें हर एक का ध्यान रखा जाता था, तो वे उनका ध्यान रखें, उन वृक्षों का ध्यान रखें जिन्होंने जवानी में उनको फल दिए थे, छाया दी थी। आज उनके पास फल नहीं है, वो जर्जर हो गए हैं, उनकी देखभाल करें, उनका ध्यान रखें, पहला काम ये करें, ताकि हमारे देश में वृद्धाश्रमों की या किसी भी अकेले बुजुर्ग को किसी भी त्रासदी से ना गुजरना पड़े। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, किन्हीं के बच्चे भी नहीं हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, या आपके बुजुर्ग नहीं हैं आपके पास में, तो दूसरे बुजुर्गों का सहारा बने, उनका संबल बने, इस अभियान के लिए टाइम बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े। निःशुल्क काम है, वेबसाइट है timebankofindia.com, उससे जुड़े। इसमें कोई समय की बंदिश आपके पास नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको हर हफ्ते कुछ करना है या हर दिन कुछ करना है या महीने में कुछ करना है। ये वैसा बैंक है जहां आपके पास जब समय हो तो जमा कीजिए। बैंक में भी आप जब पैसा होता है तो जमा करते हैं, नहीं होता तो नहीं करते हैं, जरूरत होती है तो निकालते हैं। इसमें भी जब आपके पास समय होगा और कोई अनुरोध हेल्प का आएगा, आप कर सकें तो आप यस कीजिए। जो साथी कहते हैं कि मैं तैयार हूं, हम उन्हीं को ये रिक्वेस्ट असाइन करते हैं, तो जुड़
0: जी
1: जाइए, कोई नुकसान नहीं है इसमें जुड़ने में, ये संदेश हम देना चाहेंगे।
0: अब एक और, चूंकि हमारे इस रेडियो स्टेशन की ऑल इंडिया रीच है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में भी कोई प्रेजेंस है टाइम बैंक ऑफ इंडिया की।
1: जी हाँ जी हाँ, उत्तराखंड में देहरादून में हमारी यूनिट बन चुकी है। उत्तर
0: जी
1: प्रदेश में तो कई जगह है, कानपुर है,
0: अच्छा,
1: आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, कुछ शहर और भी है, एकदम मुझे याद नहीं आ रहे।
0: जी जी जी
1: उत्तराखंड में अभी हमारा देहरादून में है,
0: अच्छा,
1: हिमाचल में शिमला में है।
0: तो उससे रिलेटेड सवाल यह है कि अगर अपने शहर में कोई एक टाइम बैंक की उपस्थिति चाहता है या उसकी शाखा चाहता है तो वो क्या करना चाहिए उसको, किस तरह से आगे बढ़े वो?
1: देखिए, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मित्रता के लिए मिलना जरूरी है, ठीक है ना, और मेल मिलाप करने के लिए कुछ सदस्यों का होना जरूरी है। तो अगर कोई भी शुरू करना चाहता है वो थोड़ा सा इसका प्रचार करे और कुछ सदस्य बनाए। अगर आपके पिन कोड के क्षेत्र में, आपके आसपास के क्षेत्र में 10 मेंबर भी हो जाते हैं,
0: अच्छा,
1: ठीक है ना, तो हम आपका एक यूनिट अलग से बना देंगे, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, उसमें हम आपको एडमिन मनोनीत कर देंगे जिनका काम सदस्यों को वेरीफाई करना है और मंथली मीटिंग आयोजित करना है। और तीसरा काम होता है उनका कि जब कभी कोई हेल्प रिक्वेस्ट आ जाए तो उसको बाकी मेंबर्स को चैनलाइज करना है, वेबसाइट पे उसकी प्रविष्टि करनी है। और इन सब कामों के लिए किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है, किसी ऑफिस

0: उनको हाँ देख सके और उनको वेरीफाई कर सके।
1: जी जी जी बिल्कुल बहुत सुंदर। तो अगर आपको चाहते हैं कि टाइम वर्क ऑफ इंडिया की प्रेजेंस आपके शहर में हो तो आप जैन साहब से या संपर्क कर सकते हैं या इसकी वेबसाइट पर जाकर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह से आगे बढ़ना है।
0: तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, एक जानकारी और दे दूं श्रोताओं को कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें एक सेक्शन हमने दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति संपर्क करना चाहे अपने एरिया में अपने क्षेत्र में, तो वहां पर हमने अपने सारे एडमिन्स की डिटेल, हमारी गवर्निंग काउंसिल की डिटेल वेबसाइट पे डाली हुई है। वहां आप जाइए, आवर टीम इस नाम से एक सेक्शन मिलेगा आपको, बिना मेंबर बने हुए भी वो सेक्शन मिलता है। आवर टीम में जाएंगे, वहां पे हमारे ऑल इंडिया में जो जो एडमिन्स हैं उनके नाम मोबाइल नंबर उपलब्ध है। आप किसी शहर से हैं और वहां पे एडमिन है कोई हमारा तो उनसे संपर्क कर लें, नहीं तो हमारे नंबर है हमसे संपर्क कर लें। हमारी मेल आईडी है timebankofindia@gmail.com, आप मेल कीजिए उससे भी हो जाएगा। वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट अस का एक सेक्शन बना हुआ है, वहां आप अपना संदेश लिखिए उससे भी हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। तो डॉक्टर जैन आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना अमूल्य समय दिया, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके इस मिशन की सफलता के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, यही हमें हमारी आवश्यकता है क्योंकि हम विज्ञापन नहीं देते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या दृश्य श्रव्य माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से अपनी बात हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम उसी का प्रयास करते हैं। इसमें आपने योगदान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया,
1: थैंक यू।
2: जिंदगी के रंग हजार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

रहा तुम चलते हो चेहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहे भरते हो हर बात पे दिल भर जाता है।

0: जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाख में भला पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

देवानंद जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

चीज थी मिला के नजर भुला दी।

0: वो दिल मिल गए दिए जल गए हजारों।
1: आज तुम मिल गए तो गुल खिल गए हजारों।
0: वो दिल

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

आज के कलाकार प्रोग्राम में जिस कलाकार के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसे बहुत प्यार से जंपिंग जैक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जितेंद्र जी की। इन्हें कौन नहीं जानता, अपने जमाने के मशहूर अभिनेता, आज के टीवी और फिल्म निर्माता, साथ साथ बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर्स और ALT एंटरटेनमेंट के चेयरमैन भी हैं। ये अपने समय में अपने डांसिंग स्टाइल को लेकर बहुत फेमस थे। इन्हें साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों सुनते हैं जितेंद्र जी की फिल्म का ये गीत।

जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनका जन्म हुआ तो पंजाब में, लेकिन इनका बचपन मुंबई में बीता। इनके बचपन का नाम रवि कपूर था, जो कि बाद में इन्होंने बदल लिया। आइए दोस्तों सुने ये गीत।

इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल मुंबई से की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। तो लीजिए इनकी फिल्म का एक और फड़कता हुआ गीत।

जितेंद्र जी की उनकी पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई तब वो कुल 14 साल की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगी। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तब उनका

0: एशन शोभा के साथ शुरू हुआ जो 1972 तक चला और फिर इनकी शादी हुई। लीजिए दोस्तों एक और गीत
1: सुनो। एक तराना नया एक फसाना

जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत लंबा रहा। 1960 से शुरू होकर 1990 तक लगभग 30 साल। इन्हें पहला मौका मात्र 17 साल की उम्र में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका मिला 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों में, लेकिन सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। हो जाए इनकी फिल्म का एक और गीत।

फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपर हिट गाना रहा। इसमें इनके स्टेप्स लोगों को बहुत पसंद आए और साथ ही साथ इस गाने में उनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफेद जूता उनके ट्रेडमार्क बन गए। इसके बाद कारवां और हमजोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने गानों पर डांस किया और इनके इस डांस की वजह से बॉलीवुड में उन्हें जंपिंग जैक के नाम से जाना जाने लगा। तो हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

जितेंद्र ने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ और ही कलाकार होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में फिल्मों में काम किया। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ भी कई फिल्में की। लीजिए पेशे खिदमत है उनकी फिल्म का एक और गीत।

जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्मों में भी काम किया जिनके गाने सुपर हिट रहे। लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है उनके ये सुपरहिट गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।

काफिला सफर को तैयार है। दोस्तों, इस प्रोग्राम का आगाज हम इश्क और गज़ल के बेताज बादशाह गालिब की गज़लों और उनके कलाम से कर रहे हैं। गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। बाद में वो आकर दिल्ली में बस गए थे। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इश्क, दर्द और जिंदगी की गहराइयों को इस तरह बयान किया कि उनके अल्फाज आज भी हर दिल में जिंदा हैं। उनका हर शेर एक जिंदा दिल आशिक की तरह इश्क की हर एक रस्म निभाता है। बकौल गालिब, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। और दोस्तों, गालिब के कलाम को 4 चांद लगा दिए जगजीत सिंह जी की मखमली आवाज़ ने। मिलकर जैसे हो गया, क्या कहते हैं उसे, सोने पे सुहागा। लीजिए, आप भी लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत शाहकार का। दर्द को लेकर दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गजल सुनिए, उनको देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जगजीत सिंह की आवाज़ में।

दोस्तों, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा गालिब की ज़ुबान से कुछ ऐसे बयां हुआ कि दिल का हाल दर्द से बेहाल हो जैसे। वो कहते हैं, कैदे हयात ओ बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ये खूबसूरत गजल सुनिए हमारे जगजीत सिंह की सुनहरी आवाज में। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों।

दोस्तों, कुछ जख्म पूरी तरह से नहीं भरते और शायद सबसे ज्यादा दर्द वही देते हैं। गालिब साहब का अंदाजे बयां देखिए, फरमाते हैं, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खालिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तीरे नीम कश यानी आधा खिंचा हुआ तीर जो मेरे जिगर में फंस गया है और दर्द हो रहा है। यहाँ महबूब की नजर को तीर कहा गया है। जब वो पूरी तरह से नहीं मिलती तो अधूरापन और तड़प छोड़ देती है, बड़ी जानलेवा होती है। पूरी तरह से ना मिलने का दर्द पूरी तरह से मिलने से ज्यादा गहरा होता है। ये शेर बेपनाह मोहब्बत

मोहब्बत की उस हालत को बयां करता है जहां दर्द में भी एक लज्जत होती है, मजा होता है। चित्रा सिंह की आवाज में ये मशहूर गजल सुने, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।

वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज़ माह साल कहाँ। थी वो एक शख्स के तसव्वुर से, अब वो रानाई ये ख्याल कहाँ। ऐसा आसान नहीं लहू रोना, दिल में ताकत जिगर में हाल कहाँ। इस गज़ल में गालिब पुराने वक्त को याद करते हैं, जब उनके पास फुर्सत थी, महबूब का साथ और दिल में जज्बात की हलचल थी। कहते हैं, इश्रते कतरा है दरिया में फना हो जाना। गालिब यहाँ कह रहे हैं कि कतरे की सबसे बड़ी खुशी दरिया में फना हो जाने की है, और यही उसकी मंजिल भी है। और जब इंसान अपनी मैं या ईगो को मिटा देता है, तभी वो भी खुदा की सच्ची मोहब्बत को पाता है। फिर कहते हैं, मुश्किलों का हल भी यही है, जब मुश्किलें हद से बढ़ जाती हैं तो वो आदत बन जाती हैं और फिर तकलीफ देना बंद कर देती हैं। आगे गालिब कहते हैं कि रंज से खूंगर हुआ, रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। दोस्तों, गालिब हमें सिखा रहे हैं कि हौसला वो नहीं जो मुश्किलों से डरे, बल्कि हौसला वो है जो दुखों को इतना सहले कि दुख दर्द अपना दम तोड़ दें। सुनिए ये खूबसूरत कलाम जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। वो फिराक वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज़ माहो साल कहाँ।

दोस्तों, जब गालिब ने बहुत सुंदर एक शेर कहा है, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पहले भी मेरा रंग जर्द था। और फिर ये भी, हम भी तो दुश्मन नहीं हैं अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। चित्रा सिंह की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सी गज़ल है, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। दोस्तों, ये आखिरी गज़ल सुनिए चित्रा सिंह की आवाज़ में।

दोस्तों, आपके मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जे मनीष कार्यक्रम खेती बाड़ी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और तैयारी कर रहे होंगे आगामी फसल किस तरीके से करें। और खेतों की तैयारी के साथ साथ हमारे किसान साथी अब तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यानी खेती बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों तक वो छोटी छोटी बात को हम लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहती है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि पथरीला इलाका है और झाबुआ जिले को देखा जाए तो किसान साथियों के पास सीमित संसाधन, सीमित जगह होने के कारण किसान साथी अच्छी तरीके से खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप वैज्ञानिक विधि से या फिर आपको लगता है कि हमें छोटे ही रकबे में अच्छी फसलों को करना है तो आप संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी या फिर वैज्ञानिक की सलाह लेकर अपने खेतों को अच्छा हरा भरा बना सकते हैं और साथ में अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम उन छोटी छोटी बातों को लेकर आते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बातें खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम नीम की खेती, चूंकि नीम की खेती भारतीय संस्कृति में नीम को एक विशेष महत्व मिलता है और नीम को यहाँ बहुत सी मान्यताओं के साथ जोड़ा भी गया है। नीम की गुणवाणी औषधि का दर्जा भी दिया गया है और नीम की खेती भी इतनी लाभकारी भी साबित होती है जिसमें मौजूद औषधीय गुण इतने गुणकारी और मूल्यवान हैं जिनकी इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में कई स्थानों पर इसे पूजा भी जाता है और नीम का उपयोग दवाइयों के तौर पर किया जाता है। नीम से निर्मित तेल और निवोलियों से एकत्रित करके इसे बाजार में अच्छे भाव में बेचा जाता है। यह मैली ऐसी कुल का पौधा है, इसको मुख्य तह नाम दिया जाना जाता है। इसमें नीम पेड़, मुर्गासा पेड़, भारतीय बकाहन, सफ़ेद देवदार, स्वर्ण पेड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। साथियों, नीम के होने वाले फायदे के बारे में भी थोड़ा आपको बता देना चाहते हैं कि घाव पर असरदार भी होता है नीम का पौधा, क्योंकि नीम में उपस्थित एंटीबायोटिक गुण जो रहते हैं अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं। इसके पत्तों को पीसकर घाव पर लगाकर घाव को भराया जाता है। नीम की दातुन भी, क्योंकि आसपास नीम की दातुन नहीं मिलती है, शहरों में खासतौर पर ये नहीं मिलती है और शहर के लोग खास तौर पर इसको तलाशते हैं कि नीम की दातुन कहाँ मिले। और कोविड काल में अगर देखा जाए तो इसका तो जवाब ही नहीं है। वास्तव में नीम की निमोली और नीम की दातुन, नीम की कोंप को लोग देख रहे थे, कहाँ पर नीम का पौधा है वहाँ पर जाकर ताजी ताजी हवा ले रहे थे, नीम की कोंप खा रहे थे, जिससे हमारे खून भी साफ होता है। और दातुन की अगर बात है, रोजाना नीम का दातुन करने से दांतों में मजबूती बनी रहती है और दांतों में किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है। साथ में बालों के लिए भी नीम का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों को पीसकर यदि बालों में लगाया जाता है तो बहुत लाभकारी साबित होता है। नीम का काढ़ा, आपको पता ही होगा कि नीम के पत्तों को उबालकर यदि काढ़ा बनाकर हम रोजाना एक गिलास पिया जाए तो उसके शरीर में अत्यंत लाभकारी होता है। नीम के पानी से स्नान करना, नीम के पत्तों को मिलाकर यदि पानी में डालकर स्नान किया जाए तो इसके शरीर साफ होता है और बहुत से फायदे भी हमें मिलते हैं। खासतौर में मलेरिया में असरदार होता है। नीम मलेरिया में फैलाने वाले मच्छरों को दूर रखने में अत्यंत सहायक है। जिस वातावरण में नीम के पेड़ रहते हैं वहां पर मलेरिया नहीं फैलता है। नीम के पत्तों को जलाकर रात को धुआं करके मच्छर नष्ट हो जाते हैं और विषम ज्वर, जिसे मलेरिया कहा जाता है, उससे भी बचा जा सकता है। बिच्छू को काटने में असरदार होता है, क्योंकि बिच्छू को काटने पर नीम के पत्तों को मसल कर काटे गए स्थान पर लगाकर यदि लगाते हैं तो जलन नहीं होती है और जहर का भी असर कम होता है। उपयुक्त जलवायु के लिए, क्योंकि नीम की खेती करने के लिए आपको तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 400 से 1200 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसको उगाने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसको आप सभी प्रकार की मिट्टी में कैसे भी
और सभी प्रकार की भूमि जैसे शुष्क पथरीली इलाका हो, रेतीला इलाका हो, खासतौर पर अगर देखा जाए झाबुआ जिले को देखा जाए तो पथरीला इलाका है, तो यहाँ पर आसान तरीके से इसको उगाया जा सकता है। गहरी चिकनी मिट्टी हो वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, भूमि में आसानी से इसे उगाया जा सकता है। आरंभिक अवस्था में नीम के पौधों को पाले का खतरा बना रहता है, अतः वृक्षारोपण के बाद एक वर्ष तक पाले से बचाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात पाला सहन कर सकने में यह सक्षम होकर तैयार होता है। कैसे तैयार करें? वैसे तो नीम सभी तरह की मिट्टी में उगाया जाता है, फिर भी खेत को अनेकों बार जोतकर इसमें कंकड़ पत्थर अलग करके इसको खेती लायक बनाया जाता है। और बीज का उपयोग कैसे करें? बीजों को खरीद करके समय आपको इतनी गुणवत्ता का विशेष ध्यान देना होगा जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना आए। आप इसको किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त बीज भंडार केंद्र से खरीद सकते हैं। बीज के अंडे जैसे सफ़ेद और दीर्घवृत्तीय होते हैं। बुवाई का सही समय जो रहता है, नीम की बुवाई का समय जो रहता है, पनीरी लगाना अवश्य याद रखने के लैम रखना जरूरी रहता है। और नीम का कलम दार को आसानी से लगाया जाता है। 12 से 13 महीने पुरानी नर्सरी के पौधों की कलम को तैयार किया जाता है। सीधी बुवाई आसान होती है, इसे छिद्र रोपण छिटका विधि कतारों की बुवाई द्वारा लगाया जाता है। और यह खेतों पर निर्भर करता है कि आपके खेत कैसे हैं। तो ये सारी बातें हैं और अधिक बात के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, तो उसमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने नीम की खेती कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से फीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप लोग रेडियो अपनी बात है।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।
1: आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने इस वीली गीत को सुना। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस खास रिपोर्ट को हम सुनते हैं और जानते हैं नीम के कैसे हम खेती कर सकते हैं, नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आइए हम जानते हैं इस खास रिपोर्ट में।
2: कृषि प्रधान देश के लिए खाद आत्मा की तरह होती है और इस आत्मा की सलामती के लिए

0: किसान हमेशा तत्परता के साथ कोशिश करता रहता है। किसान की आजीविका का साधन खेती है और खेती खुशहाल रहे इसके लिए इसमें इस्तेमाल होने वाला खाद सीधे तौर पर उसका साथी होता है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सरकार ने अब यूरिया जैसे महत्वपूर्ण खाद में 100% नीम के इस्तेमाल की बाध्यता कर दी है। सरकार की इस बेहतरीन पहल के बाद से नीम की मांग बढ़ गई है। देश की कई अग्रणी संस्थाएं जो पहले ही नीम पर शोध कर रही थी उन्होंने अब बढ़ चढ़ कर इसके शोध और प्रयोग के दायरे को बढ़ा दिया है। हर रोज नीम से जुड़ी नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी पिछले कई सालों से नीम को लेकर अलग अलग शोध कर रहा है। शोध के दौरान ही संस्था ने एक ऐसी नीम की वैरायटी की खोज की जो न सिर्फ कम समय में फल देने के लिए तैयार हो जाता है बल्कि करीब करीब हर परिस्थिति में इसको उगाया भी जा सकता है।
1: पहली बार फूल आते हैं लगभग जो सामान्य प्रजातियां हैं सामान्य

0: जिन्हें उससे प्रेरित होकर हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर वी एस अवस्थी साहब ने अपनी संस्था के में निर्णय लिया कि इतना नीम का तेल आएगा कहां से और इतना निमोली कहां से पैदा होगी, इसके उत्पादन को बढ़ाना है और इसके नीम में कोई ऐसी शोध करके प्रजाति हमको लानी है जिससे नीम का तेल ज्यादा मिले, वो जल्दी बढ़े, जो भी निमोली किसान भाई एकत्रित करते हैं उनको क्रय करने की एक सुनिश्चित व्यवस्था अगर हम कर लें और उस सुनिश्चित व्यवस्था को क्रय करने के बाद में क्रय करके उसका जो आगे का काम है, उसके प्रोसेसिंग का काम है, विधायन का काम है, उसे उत्पाद बनाने का काम है, इसको भी अगर हम बढ़ावा दें तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने में, उत्पादन को बढ़ाने में और साथ ही साथ जितने भी रसायन मुक्त खेती के लक्ष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार ने बनाए हैं उन सबको पूरा करने में एक बहुत बहुत ही लाभकारी कदम होगा इसके लिए।
1: इसमें पॉली प्लांटिंग टेक्निक से एकदम टिश्यू कल्चर के माध्यम से नीम के पेड़ को ऐसा करें कि वे 3 या 5 साल के अंदर निमोली देने लगे तो उसके कारण दो चीजें होंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा और उसके कारण वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम होगा और दूसरा ये निमोली ये जल्दी आ जाएगी तो उसको 15 रुपए किलो पे हम खरीदते भी हैं और इस पे हम रिसर्च भी करा रहे हैं कि किस तरीके से नीम के और जो अच्छी चीजें हो सकती हैं जैसे बायोपेस्टिसाइड बन सकते हैं नीम से, उसमें बायोपेस्टिसाइड के माध्यम से हम किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं, उसकी आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर हमने फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट को कॉन्टेक्ट किया और उनको उनके साथ संपर्क स्थापित करके हमने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसको कि हमने टोटली फंड किया कि हमें नीम की वैरायटीज वो आप डेवलप करके दीजिए जो पॉलीप्लांटिंग तरीके से टिश्यू कल्चर के माध्यम से जल्दी से जिनका विकास हो और इसमें फूल और फल जल्दी आने लगे। तो इस दिशा में हमारे देश में तकरीबन 60 से ज्यादा वैरायटीज है नीम की।
2: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अपन ने वैरायटी को जाना कि नीम की कौन कौन सी वैरायटी है और खास तौर पर नीम की खेती किस तरीके से कर सकते हैं इसके बारे में जाना। कार्यक्रम में और बहुत सारी जानकारी है नीम से जुड़ी यानी खेती से जुड़ी, लेकिन इसको सुनने से पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात। Yeah.

आज समाज में बालिकाओं के प्रति पुरुष तो ठीक, महिलाएं भी परंपराओं का हवाला देकर अपनी फूल सी कोमल बच्चियों को अपनी जिंदगी को ठीक से जीने नहीं देती। हमारे समाज में अनेक बच्चियां रूढ़िवाद एवं सामाजिक प्राचीन परंपराओं के कारण माँ के कोख में ही खत्म कर दी जाती है। यदि जन्म लेती है तो परिवार पर बोझ बन जाती है, यह रूढ़िवादी परंपरा है। बच्चियां अपनी सिसकियां अपने हृदय में संजोकर अपने पिताजी की गोद में शायद यह जरूर अभ्यंतर से कहती होगी,

0: वन वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत और इनकी टीम पिछले कई सालों से वरिष्ठ वन वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में नीम पर लगातार शोध कर रही है। किसानों के लिए नीम की नई किस्म FRI ने जो विकसित की है, आखिर उसमें ऐसा क्या खास है, ये वो खुद बता रहे हैं।
1: इन प्रजातियों को तेल की मात्रा, अत्यधिक तेल की मात्रा सामान्य प्रजातियों से लगभग औसत 5-8% तेल ज्यादा, और अजाडिरिक्टिन इसका एक केमिकल मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, लिमोनाइड ग्रुप का होता है, वो सामान्य प्रजातियों में 3000 के आसपास, 2500 से 3000 ppm के आसपास ही पाया जाता है औसत, और हमारी इन 6 प्रजातियों में जिनमें मिनिमम 7000 का और मैक्सिमम 10000 ppm तक का है, इसका औसत 9000 आसपास है।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज जब की गई तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा गया कि अगर इसे खेत में लगाया जाता है तो फिर उस खेत में दूसरी फसल की पैदावार संभव नहीं है, जो किसानों के हित में नहीं था। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर किसान इसकी खेती कैसे करें।
2: जो गरीब किसान है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीन नहीं है, उसकी आय में बढ़ोतरी करने का है, और उसका जो खेत होता है वो छोटा खेत होता है, 1 एकड़ का, 2 एकड़ की जमीन है, अब अगर वो अपने खेत की बाउंड्री पे नीम के पेड़ अगर लगा दे और उसमें जो निमोडिया जो बनती है उसको मार्केट में बेच दे, तो उससे उसकी कमाई का एक एक्स्ट्रा साधन उसको मिल सकता है, जिससे कि उसकी आय जो खेती से जो आ रही है वो तो रहेगी, इसके अलावा ये एक एडिशनल इनकम उसके लिए बन सकती है। तो यही उद्देश्य है कि किसी भी किसान को अपनी बाउंड्री पे नीम के पेड़ लगा दे और उससे वो आय कमा सके।
0: किसान नीम की खेती कहाँ करें, या यूं कहें कि नीम के पेड़ को किसान उपजाऊ जमीन में ना लगाकर कहाँ लगाएं? इसकी सही सही जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल एक और बनता है कि आखिर किसान नीम की खेती क्यों करें?
1: लीफ से लेकर के तना, फल, तेल सभी की उपयोगिता विभिन्न प्रकार की दवाओं के रूप में भी किया जाता है। दैनिक जीवन में दातुन से लेकर के कॉस्मेटिक बनाना, टॉयलेटरीज बनाना, मेडिसिन बनाना, ये सारी उपयोगिता इसकी जो बहुत पहले से इस्टेब्लिश है, इसमें हमारा कोई नया नहीं है, लेकिन जो ये इसके लगाने का जो पर्पज है, अदर पर्पज को आप इनके बाद देखें कि सामान्य नीम अगर आप लगाते हो तो उससे ज्यादा इसमें उत्पादन मिलेगा। आप नीम के अच्छी प्रजातियों को लगा करके ज्यादा तेल की मात्रा के आधार पर उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अधिक उपज के बाद बस शीघ्र ही इसमें फल आएंगे आपके साथ में। क्रॉप के साथ कल्टीवेशन का किया जा सकता है, जो लेसर उपयोगी जमीन है उस जमीन पर इसका प्लांटेशन करके लाभ कमाया जा सकता है।
3: नीम एक दिन इकोनॉमिक एंड वाइबल मॉडल होगा एग्रीकल्चर के लिए, और जो कि आज भी है, केवल हमको उसके गुणों को पहचानने की आवश्यकता है, उसकी कीमत को महसूस करने की आवश्यकता है और उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।
4: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी अपन ने गुणों को किस तरीके से पहचान कर सकते हैं हमारे किसान साथी, उस पर हमारे विषय विशेषज्ञ की इस खास बातचीत को सुना कार्यक्रम में। और भी बहुत सारी बातचीत है ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने के लिए, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके RJ मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है।

0: एफआरआई की टीम नीम की इस प्रजाति पर पिछले कई सालों से काम कर रही थी। लगातार रिसर्च का काम चल रहा था, लेकिन एफआरआई की रिसर्च को मजबूती मिली साल 2015 के बाद। और वो कैसे, ये खुद बता रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमाकांत।
1: भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद देहरादून के विभिन्न संस्थानों जैसे जोधपुर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इसमें कार्य तो 91, 92, 93 में ही प्रारंभ कर दिया था, लेकिन वो कार्य अनुसंधान कार्य लगातार नहीं चला, छुटपुट हुआ, आइसोलेटेड पार्ट्स में हुआ। इसके बाद में हमने 2015 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने इफको की सहायता से इफको के साथ मिलकर के एक अनुसंधान कार्यक्रम नीम सुधार अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की।
0: एफआरआई ने जिस नीम की नई प्रजाति की खोज की है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये बाकी नीम की प्रजाति से कैसे अलग है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं संस्था के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार।
2: डॉक्टर अशोक भी पिछले कई सालों से इस नई प्रजाति पर शोध कर रही टीम का ही हिस्सा हैं।
3: जो हमारी नई प्रजाति हमने जो डेवलप की है वो 2 से 3 साल में फ्लावरिंग करना चालू करती है। दूसरा इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, नीम में करीब जो आम नीम है उसमें 25 से 30% के आसपास ऑयल मिलता है, लेकिन जो हमारी प्रजातियां हैं इनमें करीब करीब 38 से लेके और 41% तक जो है नीम ऑयल पाया जाता है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है, इसमें एक अजैक्टिव कंटेंट होता है। ये कंटेंट नीम में आम नीम में करीब 2500 से 3000 ppm के आसपास होता है, जबकि जो ये हमारी उन्नत जो किस्में हैं इनमें 8000 से लेकर के और 10000 के आसपास तक ये वेरी करता है। सो ये तीन जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने ये वैरायटी जो है डेवलप की है।
0: डॉक्टर अशोक ने नई प्रजाति के बारे में तो बताया, लेकिन किसानों को ये जानना भी जरूरी है कि अगर किसान इसकी खेती करें तो उसे क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी, नीम की खेती में किसानों को कितना खर्च आएगा, अगले साल की शुरुआत से किसानों के लिए ये बाजार में उपलब्ध होगा।
3: मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी किसी इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं है। उनको अच्छी किस्म के पौधे अभी तो ये हमने निजात किए हैं, धीरे धीरे नर्सरीज में जाएंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इन पौधों को खरीद के सिर्फ लगाना है और इस तरह से लगाना है ताकि जो उनकी जो एक एक एक तरह से जमीन के किनारे पे है या फिर बैकयार्ड में उसमें लगाना है ताकि कुछ नीम के पेड़ अगर वहां रहेंगे तो वो 2 से 3 साल बाद में फिर वो प्रोडक्शन करना चालू करेंगे, उनमें बीज का उत्पादन होगा जिसको सेल करके एक अच्छी आमदनी उसमें मिल सकती है। और मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसान को किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी।
0: नीम की इस प्रजाति को खोजने में कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कई सालों से लगातार इस पर काम कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में

0: को लेकर शोध किए गए, तब जाकर उनकी टीम इस प्रजाति को खोज पाई।
1: बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, पूरे देश से अच्छा जर्मप्लाज्म इकट्ठा करना, उस जर्मप्लाज्म को मेंटेन करना, और सबसे बड़ा जो इसमें चैलेंज है, मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि नीम के बीज को आप केवल 15 से 20 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद में उसका जो जर्मिनेशन का पावर है वो खत्म हो जाता है, वायबिलिटी खत्म हो जाती है। तो इन 15 दिन में पूरे बीज को लाना, उसको रिसर्च स्टेशन में इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी बुआई करना, उसको मेंटेन करना और आगे बढ़ाना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा काम था। इसके बाद जो इस प्रोसेस में है कि हमको अलग अलग रीजन्स में इन सभी जो हमने जर्मप्लाज्म इकट्ठा किया है उसको इवेल्युएट करना होता है, उसमें ये देखना होता है कि जो आनुवंशिक जो इसके गुण है और जिस पर्यावरण में जिस वातावरण में ये उग रहा है उसमें आपस में इनका किस तरह का इंटरेक्शन है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
0: नीम की इस नई प्रजाति की खोज में टिश्यू कल्चर का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। FRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजय ठाकुर बता रहे हैं कैसे टिश्यू कल्चर ने इसमें मदद की।
2: जब हमने आनुवंशिक सुधार के बारे में के बाद जब पौधे बनाए उसका परफॉर्मेंस देखा तो हमने क्या किया कि क्लोनल मेथड बोलते हैं, क्लोनल मेथड में हम किसी चीज की हूबहू कॉपी तैयार करते हैं। तो टिश्यू कल्चर में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि बड़े पैमाने पे कम समय में हूबहू कॉपी तैयार करेंगे और जब वो पौधा बाहर निकलता है तो वो बीमारी फ्री होता है। जो भी तेल निकलने वाले पौधे होते हैं और वो इमारती मतलब लकड़ी वाले पौधे होते हैं उनमें कुछ टिश्यू कल्चर का बहुत चैलेंज होता है। पहला चैलेंज ये होता है कि वुडी हम लोग बोलते हैं ना कि जो काष्ठ प्रवृत्ति के होते हैं तो उनमें बहुत ही मैच्योर पौधे होते हैं, मतलब बूढ़ा गए हो सकते हैं, पुराने हो गए होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि उसको थोड़ा पुनर्जीवित करना। तो हम अपने मेथड के द्वारा उसमें बहुत तरह की जो है हम PGR बोलते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन होता है जैसे हमारे ह्यूमन में भी होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है इंसुलिन है तो वो पूरा हमारा शर्करा जो शुगर का है उसका डिसाइड करता है, उसी तरह प्लांट के कुछ जो है हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सिन है और साइटोकाइनिन है, उसके विधि द्वारा हम उसको पुनर्जीवित करते हैं। और पुनर्जीवित करके पहले तो हम एक बीमारी फ्री पौधे का एक प्रारूप तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं कि पहला तो हम प्रारूप तैयार करेंगे कार्बन कॉपी से पहले। जब हमको वैसा मिल जाता है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होता है तो एक शूट, एक जो उसका तना है या एक ब्रांच जो निकलता है या एक छोटा पौधा निकलता है उससे हम कई पौधे बनाते हैं।
0: हालांकि टिश्यू कल्चर की तकनीक पर काम करने के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, साथ ही साथ इस प्रोसेस के दौरान कई बार निराशा भी हाथ लगी।
2: कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो पहले तो हम बताया कि एक जो हम कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पिछला रिपोर्ट को देखते हैं, तो हमने उन रिपोर्ट के बेसिस पे काम जब किया तो हमने पाया कि जो जिन पौधों पे हम काम कर रहे हैं उस तरह का हमको उसमें रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि किसी ने एक हार्मोन को कहा था कि अगर एक यूनिट देंगे तो किसी ने कहा था कि उसको 40 यूनिट देंगे। तो हमने दोनों को लगा के देखा तो हमने देखा कि हमारे उसमें नहीं काम कर रहा है। तो हमने पहले तो अपने शोध को हमारे जो पौधे थे उसके हिसाब से विकसित किया। हमने पाया कि जो जितने लोगों ने बोला था उसका हमने 8 गुना कम किया, तब जाके हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इससे दो फायदे हुए कि हमको एक तो केमिकल की आवश्यकता या हार्मोन की कम पड़ी, दूसरा उसमें उसके क्लोनिंग में कोई छेड़खानी नहीं होती, यानी वो अपने क्लोनल स्वरूप को मेंटेन करता है। दूसरा उसका चुनौती था कि जब हम ये पौधा लाना, कि जब भी हम लाते हैं तो 24 घंटे तक में इसको लाना जरूरी होता है, तो हम इसको बहुत ही स्पेसिफिक तरीके की सिस्टम हमने डेवलप की थी। एक हम कूल बॉक्स ले जाते थे, कूल बॉक्स में हमेशा आइस पैक के साथ हम उसको लेके वहां से लाते हैं और ऐसी व्यवस्था करते हैं या तो उसको हम हवाई जहाज से या तो हम AC वाले कंपार्टमेंट वाले ट्रेन से या फिर हम अगर वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कई जगह हमको GP मिलता है तो AC वाले वाहन से हम उसको पौधे को काटते थे सवेरे में काट देते थे, क्योंकि सवेरे के टाइम में सबसे ज्यादा सबसे शांत केमिकल माहौल होता है, और उसके बाद हम उसको पैक कर देते थे और पैक करके उस कूल बॉक्स में डाल के आइस पैक के बीच में करके हम उसको अगले वहां ले आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरह की चुनौती थी, बहुत निराशा हाथ लगी। देखिए टिश्यू कल्चर में हम दो चीज कहते हैं, एक तो क्लोन होता है और दूसरा क्लोन नहीं होता है, उसको कैलस बोलते हैं। तो शुरुआती दौर में हमको कैलस मिलता था, जब भी कैलस होता है तो उसमें क्लोनिंग नहीं होके वेरिएशन हो जाता है, उसमें मतलब चेंजेज आ जाती है, तो हमारा पर्पस ही डिफीट हो जा रहा था। तो ऐसा हमने बहुत जब किया तब हम उसको, हमने क्या किया उसके हार्मोन को घटाना या बढ़ाना उस तरीके के कम से कम उसके 17 या 18 एक्सपेरिमेंट किए। जब 17 या 18 प्रयोग के बाद हमने पाया कि इसमें हार्मोन लेवल, हमने हर प्रजाति के लिए अलग अलग हार्मोन लेवल डेवलप किया, किसी के लिए 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था, किसी के लिए 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से था। शुरुआती दौर में हमने 10 मिलीग्राम प्रति लीटर भी इस्तेमाल किया था। तो हमने इस पूरे प्रकरण में हमें साल लग जाता है सेट करने में।
0: FRI नीम को लेकर कई और शोध और खोज करना चाहती है, लेकिन उसके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे अपने शोध के लिए दूसरे संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।
3: जो हमारा सेटअप है, हम लोगों के पास अपनी ट्रायल के लिए कोई जमीन नहीं है, जिसके लिए हमें या तो किसानों पे या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो इश्यू आता है वो है लैंड का। इस केस में इफको, क्योंकि हम लोगों के जो है कि फंडिंग एजेंसी था, तो इफको की वजह से हम लोगों को कुछ इसमें सपोर्ट मिला है, लेकिन इन जनरल एक चुनौती यह है। और दूसरा यह है कि सीमित जो हम लोगों के पास जो वित्तीय संसाधन है वो निश्चित रूप से इसमें बाधा करते हैं। अगर वित्तीय संसाधन हमें मिलते हैं तो हम लोग और भी जो है स्पेसीज पे, उनकी वैरायटीज पे और क्लोन डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं।
0: नीम की खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले रासायनिक तत्व न सिर्फ मिट्टी को ताकत देते हैं बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं।
4: इसमें जो लिमोनॉइड श्रेणी के जो रासायनिक घटक होते हैं उनका जो है कीटनाशक गुण बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए इस तेल का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। जो घटक इसके एंटी फंगल घटक खासकर जो है उनका उपयोग जो है चर्म रोग में भी किया जाता है। तो इस ऑयल, इस जो ये जो तेल है, नीम का तेल जो है, ये औषधीय और कीटनाशक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो यौगिक है उसका नाम है एजाडिरेक्टिन। एजाडिरेक्टिन के भी कई श्रेणियां हैं जिसमें मूल रूप से एजाडिरेक्टिन ए जो है ज्यादा सक्रिय माना गया है। ए से लेके एस तक के इसके वेरियंट जो है ज्ञात है। ए जो है एजाडिरेक्टिन ए, ये जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: नीम का इस्तेमाल आयुर्वेदिक औषधियों में सदियों से होता आया है। नीम का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है।
5: नीम के औषधीय गुणों की बात करें तो स्किन के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी त्वचा की जितनी बीमारियां हैं, उन सभी में लगभग नीम बहुत अच्छा काम करता है। हम एलर्जी की कंडीशंस लेते हैं, यदि हम इस तरह की बॉयल्स हो जाते हैं, फुंसियां हो जाती हैं, जो गर्मियों में भी हो जाती हैं और इन्फेक्टेड फुंसियां भी होती हैं, बॉयल्स बोलते हैं जिनको, या नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं जो कि हील नहीं हो पा रहे, खासतौर से डायबिटिक पेशेंट्स को, यहां तक कि नीम जैसे कि डायबिटीज में भी बहुत उपयोगी है, शुगर को कम करने में भी कारगर है, और शुगर के पेशेंट्स को अक्सर देखा गया है कि स्किन डिसऑर्डर्स बहुत होते हैं और उनको अगर कोई चोट लग जाती है, अल्सर हो जाते हैं, तो वो नॉन हीलिंग वूंड्स या नॉन हीलिंग अल्सर्स कहलाते हैं, वहां पर भी नीम बहुत अच्छा काम करता है। इवन हम ऐसा भी एडवाइस करते हैं कि जो चोट आपकी ना भर रही हो उसमें नीम के पत्तों का काढ़ा बनाकर उसको वॉश करें और फिर बैंडेज या जो भी आपको चिकित्सा बताई गई है उसे करें।
6: नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम कल्प वृक्ष की संज्ञा दे सकते हैं। इस धरती के ऊपर जितनी भी तरीके की वनस्पतियों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने हमारे जानवरों में रोग या कीड़े लगते हैं, जितने मनुष्यों में, मानव जाति में जितने रोग और कीड़े हैं, उन सबको मारने का, उन सबको नष्ट करने का, उन सबका समन करने का एक कोई उपाय है, वो नीम है।
0: नीम की ये नई प्रजाति किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार और देश की अग्रणी संस्थाएं जिस तरह से नीम की खेती और उसके अलग अलग उत्पाद को प्रोत्साहित कर रही हैं, उससे आने वाले दिनों में नीम किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत बन सकेगा।
7: रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुना हमने, जाना किस तरीके से नीम के खास गुण होते हैं और किस तरह से औषधीय पौधे के रूप में इसको देखा जाता है और किस तरीके से इसको बाजार में बेचा जाता है और इसमें कितने सारे खास गुण रहते हैं, इसके बारे में जानकारी को जाना। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अब समझ गए होंगे कि हम अपनी एक नई खेती को कर सकते हैं, नई चीज है, नए खेती है, इसको किस तरीके से कर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया था कि इस तरीके की खेती हमारे किसान साथियों को औषधीय खेती करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हमारे किसान साथियों की आय में बढ़ोतरी हो। इसी के साथ साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से बीली गीत को। नमस्कार।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे वर्षा
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष,
1: लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए खेती किसानी से जुड़ा हुआ कार्यक्रम खेती बाड़ी।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में किसान साथियों के लिए हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत लेकर आते हैं और खास तौर पर उन छोटे छोटे सेगमेंटों पर हम बातचीत करते हैं जो हमारे झाबुआ जिले के किसान साथियों के लिए बेहद जरूरी रहती है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि खेती बाड़ी करना कितना मुश्किल हो गया है आज के इस जमाने में, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज्यादा लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि पथरीली इलाका, अगर झाबुआ जिले की बात करें तो वहां पर पथरीला इलाका है और ऐसे में किसानों को खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है।
1: बिल्कुल, तो इन्हीं सब समस्याओं के समाधान को लेकर रेडियो टांटिया भील आप सभी के लिए लेकर आया है ये खास कार्यक्रम खेती बाड़ी का।
2: और खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम तीन सेगमेंटों पर बातचीत करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सेगमेंट हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट होगा कि हमारे किसान साथी मिश्रित खेती के बारे में किस तरीके से उनका रुझान है और किस तरीके से हमारे किसान साथी मिश्रित खेती कर सकते हैं, खासतौर पर पथरीले इलाकों में। अगर देखा जाए, यदि मिश्रित खेती पर हमारे किसान साथी ध्यान केंद्रित करें तो आने वाले समय में वो इससे लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट होगा कि पशुपालन का हमारा सेगमेंट रहता है। पशुपालन पर भी हम खास तौर पर चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान अपने पास में लगा हुआ है, गुजरात भी पास में लगा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी कौन सी नस्ल की हमारे गाय भैंस पालन कर सकते हैं, खासतौर पर गायों पर विशेष तौर पर

0: ध्यान केंद्रित कराएंगे। और तीसरा सेगमेंट होगा कि अब मई माह में किस तरीके से पशुपालन की देखरेख हमें किसान साथी कर सकते हैं। और चौथा, हम अपने सफल किसान की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे किसानों की कहानी लेकर आते हैं, उनसे सीखकर हमारे किसान साथी अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, अपनी खेती बाड़ी में बदलाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, तो आइए हम देर नहीं करते हैं और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम।
0: और लेकिन इस कार्यक्रम को सुनने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, सुनते हैं इस प्यारे से भीली गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष
1: और आपके आरजे वर्षा के साथ में। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

0: स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें। साथियों अभी आपने सुना इस भील गाने को और आगे हम आपको बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं पहले सेगमेंट की ओर
1: और इसमें जानते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से मिश्रित खेती को कर सकते हैं और किस तरीके से मिश्रित खेती से लाभ कमा सकते हैं। यदि हमारे किसान साथी इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान साथियों की आय में जरूर वृद्धि होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे झाबुआ जिले में जो KBK बना हुआ है या फिर कृषि विभाग की जो ऑफिस है वहां पर जाकर हमारे कृषि विस्तार अधिकारियों से वैज्ञानिकों से सलाह और संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, सुनते हैं इस कार्यक्रम में मिश्रित खेती के बारे में।
2: कम जोत में भरपूर फसल लेने के लिए किसान मिश्रित खेती का सहारा लेते हैं। इस तकनीक में मुख्य फसल के साथ सहायक फसलें लगाई जाती हैं। इसमें किसान 3 से 4 फसलें तक ले सकते हैं। इस विधि की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें खेत के हर हिस्से का इस्तेमाल हो जाता है और आय की आवक बनी रहती है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति का सही इस्तेमाल लिया जा सकता है। मई माह से खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए किसान खरीफ की फसल में एक साथ 3 से 4 फसलें उगा सकते हैं जिनकी पैदावार कम पानी में हो जाती है, जैसे तिलहन, अनाज, दलहन और एक मसाले वाली फसल लगाकर एक साथ 4 फसलें आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मिश्रित खेती को जमीन के बड़े हिस्से में एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बड़े हिस्से में फसलों की देखरेख थोड़ा कठिन काम होता है। इसलिए जब भी किसान मिश्रित खेती की शुरुआत करे तो जमीन के छोटे हिस्से में ही करे। इस तरह देखा जाए तो मिश्रित खेती छोटी जोत के किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। किसान बुआई करने से पहले फसल का चयन अपने स्थान के हिसाब से करें, जैसे तिलहन में मूंगफली और तिल, दलहन में मूंग, उड़द और अरहर, ज्वार, बाजरा, सूखा सहन करने वाली धान की प्रजाति जैसे सहभागी, हल्दी व अदरक। मिश्रित खेती में बुआई करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। किसान सीड ड्रिल विधि से तिलहन फसल में मूंगफली या तिल की बुआई करें।

0: किसान अपनी सुविधा के हिसाब से भी फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे मूंग और उड़द दोनों, या किसी एक दलहन फसल, या फिर कम पानी में होने वाली धान का भी चुनाव किया जा सकता है। सीड ड्रिल विधि से बुआई करने के भी लाभ है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में फसल को वातावरण से पोषक तत्व मिलते रहते हैं, खेत में बीज कम लगता है और उत्पादन ज्यादा मिलता है। सीड ड्रिल से बुआई करते समय दूसरी तरफ से लौटती सीड ड्रिल की दूरी 1.5 से 2 फीट का स्थान छोड़कर बची जगह की पहली कतार में अरहर जैसी फसलें लगाई जा सकती है, क्योंकि इस तरह की फसलें स्थान ज्यादा लेती है और लंबे समय तक खेत में बनी रहती है। दलहनी फसल से करीब 2 फीट की दूरी पर मसाले फसलें लगाई जा सकती है, जैसे हल्दी और अदरक। ये मसाला फसलें 8 से 10 माह में तैयार हो जाती है। इनकी बुआई का काम हाथ से करना उचित होता है। इसके बाद सीड ड्रिल द्वारा छोड़ी गई हर अगली कतार में ऊंचे बढ़ने वाले अनाज जैसे बाजरा और ज्वार या तिलहन फसल, सूरजमुखी फसल लगाना चाहिए। मिश्रित खेती से किसान कई गुना मुनाफे की अवधारणा को जीवंत कर सकता है। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत भी हो सकेगा और खेत के हर हिस्से का समुचित उपयोग भी हो सकेगा।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें। रेडियो टांडिया भील सुनने वाले सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजी वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और इस वक्त सुन रहे हैं आप झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, और अभी हम सुन रहे थे मिश्रित खेती के बारे में। आगे हम आपको और भी जानकारी देने के लिए हाजिर हैं और ले चलते हैं आपको कि कैसे आप पशुपालन करके अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं।
2: तो आइए दूसरा कंपोनेंट हम सुनते हैं और इसमें जानते हैं पशुपालन किस तरीके से हम कर सकते हैं, किस तरीके से गाय का रख रखाव और साथ साथ में मई माह का कैलेंडर पर भी विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, और इसमें जानेंगे किस तरीके से हम अपने जो हमारे गाय भैंस हैं उसका मई माह में, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, किस तरीके से उनका देख रेख कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
0: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देसी गाय पालन करके पशुपालन में बेहतर मुनाफा कमाया जाता है। देसी गाय पालन में गिर गाय हर पशुपालक की पहली पसंद है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक गिर गाय से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इस गाय की मुख्य विशेषता है। इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% में पाया जाता है। गिर गाय राजस्थान में भी काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं विशेषज्ञ की नज़र से। गिर गाय राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलित, इसमें गाभिन होने की ज्यादा क्षमता होती है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतर होती है। गिर गाय का दूध काफी पौष्टिक होता है। इस नस्ल में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती। देसी गाय पालन से जहां दूध की उपलब्धता बनी रहती है, वहीं खेती के लिए जैविक खाद और जैविक कीटनाशक आसानी से बनाए जा सकते हैं, जिससे खेती में भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। आहार और आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। समय समय पर पशु के स्वास्थ्य की जांच करते रहे।
1: साथियों, अभी आपने सुना इस रिपोर्ट को जिसमें हमें बताया गया कि पशुपालन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कैसे हम इनसे अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। आगे आपको कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं अपने विषय विशेषज्ञ से और ज्यादा जानकारी इस विषय को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम एक गीत के साथ मनोरंजन करते हैं।
2: बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ
1: और आपकी आरजे वर्षा के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम खेती बाड़ी। सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે. આપ સુન રહે છાબુઆ કા પહેલા સામુદાયિક રેડિયો સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: भारत के देसी दुधारू नस्लों में गिर गाय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है. मूलतः गिर गायें गुजरात के गिर जंगलों तथा राजकोट के जिले के आसपास में इनकी संख्या सबसे अधिक पाई जाती है और गिर गायें अपने कई गुणों के कारण बहुत ही विशेष स्थान रखती है. जैसे अधिक गर्मी सहन कर सकते हैं, दूध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है तथा पहली बार जो बछड़ी या ग्याबन होने की उम्र है वो भी इसमें बहुत ही सामान्य है. साथ ही जो इनके जो लक्षण हैं गिर गाय के, वो किसी अन्य नस्लों से बिल्कुल अलग हैं. आप दूर से ही पहचान सकते हैं कि ये गिर गाय हैं या नहीं है. इस गाय की एक बड़ी विशेषता ये है कि ये गाय चरने के बाद अगर आप दिन में थोड़ी चराई करा दें तो इनकी दूध उत्पादन क्षमता में बहुत ही आप देखते हैं बहुत ही वृद्धि पाई जाती है. ऐसी इस नस्ल का जो इसके लक्षण हैं, जो इसकी उत्पादन क्षमता है, वो भारत की दुधारू गायों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है. साथ ही गिर गायों में जो दूध देने की क्षमता है वो देसी गायों में बहुत ही विशेष स्थान रखती है. गिर गाय के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गायों का सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देसी गायें हैं और भारत की जो जलवायु है, खासकर राजस्थान की जलवायु है, उसमें पूर्णतः ये इनके अनुकूल हैं. साथ ही ये गायें अपने उत्पादन क्षमता को, जैसे गुजरात में जो उत्पादन क्षमता है वही हमारे यहाँ इसकी उत्पादन क्षमता है. साथ ही इनके जो ग्याबन होने की जो उम्र है या इनके मान लीजिए जो इनके ब्रीडिंग है वो बहुत ही लगातार है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है. और यहाँ की आब हवा और यहाँ के वातावरण के बिल्कुल अनुकूल है. राजस्थान में बहुत से किसान आज गिर गाय को रख रहे हैं जिससे इनका संरक्षण हो रहा है और साथ ही आने वाले समय में गिर गाय को और अधिक महत्व मिलेगा और अधिक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि गिर गाय का जो दूध है वह बहुत ही स्वादिष्ट और सभी को भाने वाला है. और कैलोरी की बात करें, विटामिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट की बात करें, इसका जो दूध है वो बहुत ही सुपाच्य तथा स्वाद वाला है. गिर गायों की आज के समय में जो किसान रख रहे हैं, जिसका बड़ा कारण है कि इनमें कोई भी प्रजनन संबंधी समस्या नहीं है, बीमारी की समस्या नहीं है. साथ ही उत्पादन जो उत्पादन क्षमता है वो किसान के लिए बहुत ही उनके लिए लाभकारी है.
2: तो किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर.
3: मई माह का पशु कैलेंडर 2021. मई माह में ध्यान देने वाली बातें. इस माह में अधिक गर्मी रहती है, साथ ही कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा भी रहती है. पशुओं को धूप व लू से बचाने का उपाय करें. गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें व पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें. पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए, इस हेतु लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पानी में मिलाकर दें. पशुओं के आहार में मौसम के अनुसार आवश्यक बदलाव करें. दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए उसे संतुलित आहार दें. चमोकन एवं पेट की कृमि से बचाव का उचित प्रबंध करें. खरीफ में हरा चारा लेने के लिए ज्वार एवं मक्का की बुआई करें. भेड़ पालक इस माह में भेड़ की ऊन कतरने का कार्य करें.
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो.

0: સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और अभी आपने पशुपालन कैलेंडर और साथ साथ में जो हमारे विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपने पशुओं की देखरेख करना चाहिए, कौन सी नस्ल हो हमारे किसान पालना चाहिए और उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी. साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए इस कार्यक्रम में आगे हम सुनते हैं सफल किसान की कहानी. लेकिन सफल किसान की कहानी से सुनने पहले एक छोटा सा विराम लेते हैं. बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है.
2: आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं. रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दुर्गामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं. यही वजह है कि किसान एक बार फिर जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं. जैविक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बैठाना आसान होता है. इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती है और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है. सीकर के किसान बाबूलाल जैविक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं. बाबूलाल पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें जैविक खेती की तरफ ले आई. वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं. पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद और जैविक कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है. राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं.
3: किसान पारंपरिक खेती करते हैं और धीरे धीरे क्या है, वो जैविक खेती के बारे में सुना ऐसे लोगों से कैसे करते हैं क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे. तो मैंने ऐसे बाजार ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो. और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत घन जीवामृत 10 प्रणियार वगैरह बनाना काम चालू किया. अभी क्या मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ. उन्होंने मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत घन जीवामृत और ये सब डाल के बना रहे हैं. बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है. धीरे धीरे ड्रिप इरिग्रेशन के बारे में ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला.
4: राजस्थान में पानी की कमी है,
3: राजस्थान में वैसे पानी की यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की जो क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से. और फिर क्या वो बोले कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी. अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से गोबर से गोमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत घन जीवामृत 10 प्रणियारक वगैरह सब बनाते हैं. और तुरंत फुरुत खाद जो अपने ह्यूमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इसमें बढ़िया रिजल्ट है. जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है. तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है,
4: नई
3: तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है.
2: बाबूलाल मानते हैं कि जैविक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है, जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है. खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं. इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज और टमाटर जैसी फसलें लगी हुई हैं. जैविक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है. वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है.
3: सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है. उसी हिसाब से जैविक रासायनिक होता है 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है. और अपने क्या है तुरंत बिक जाते हैं, इसे माल भी ग्राहक भी अपने कहते हैं यार आपकी चीज बहुत अच्छी है हमको आपका माल ही चाहिए, इसी तरह वो भी लेते रहते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, एक दो रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं, अपने आप बिक जाते हैं। किसानों को सलाह ये देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे ही करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है सुखी रहना है तो जैविक खेती अपनाओ, और उसमें जैविक खेती से स्वास्थ्य सुधरेगा, देश सुधरेगा, अपन आगे बढ़ेंगे, सब यही होगा।
2: बाबूलाल जैसे किसान जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथियों अभी आपने सुना सफल किसान की कहानी को कि किस तरह से उन्होंने खेती बाड़ी से अपनी आय को दोगुना किया है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं।
1: और साथियों एक चीज और बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम जो लेकर आते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी के माध्यम से, हम आपको बता देना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातें जरूरी हैं और हमारे किसान साथियों के लिए आय को दोगुना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। खासतौर पर उन किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनके पास थोड़ी जमीन है और वो भी पथरीली इलाका उनके पास है और पानी रुकता नहीं है, तो सबसे पहले उनको हम बता देना चाहते हैं कि अब आने वाले बरसात के दिनों में हम किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा झाबुआ जिले में समस्या है पानी को लेकर, तो किस तरीके से पानी को बचा सकते हैं, खेत का पानी खेत में कर सकते हैं, सरकार की स्कीम्स का सरकार की योजना का फायदा लेकर हम अपने आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में ऐसी खेती को हम विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी ऐसी खेती करें, ऐसी जैविक पद्धति से खेती करें जिसमें कम पानी लगता हो, उत्पादन अच्छा होता है, लागत भी कम लगती है, उत्पादन अच्छा होता है। तो ऐसे किसान साथी जो हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषि विस्तार अधिकारी के पास जाकर संपर्क कर सकते हैं, साथ साथ में केवीके भी है वहां पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों अब हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेती बाड़ी कार्यक्रम से जाने का, तो कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 94-25-41-36-03, इस नंबर पर कॉल करके आप हमें बता सकते हैं।
2: तो जी हाँ साथियों तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा दिए गए नंबर पर फोन करके हमें जरूर बताएं। अब इस कार्यक्रम से जाने के दीजिए हमें अनुमति, यानी कि आपकी आरजे वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत,
2: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: और चल चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे झाबुआ जिले में हम आखा तीज का पर्व मना रहे हैं। आखा तीज का पर्व मतलब खेती बाड़ी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं आज से। जो भी अपने गाय बैल बकरी का गोबर खाद होता है, जिसको उकेड़ा बोलते हैं, उसको खेत में डालना शुरू कर देते हैं और खेत की सफाई करना शुरू कर देते हैं। आखा तीज से किसान भाई सभी राड़े और खेत में पड़े हुए कचरे सबको इकट्ठा करके उनको अलग कर देते हैं और अपने खेत को ट्रैक्टर या हल से जोतकर बारिश के मौसम के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों को आखा तीज पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने झाबुआ की बात करते हैं तो झाबुआ जिले में आखा तीज का पर्व मनाया जाता है और इसके पहले बच्चे घर घर होड़कड़ी लेकर घूमते हैं और कुछ छोटा मोटा चंदा इकट्ठा करके अपना मनोरंजन करते हैं। और आखा तीज के पर्व के ऊपर सभी घरों में सेवाया बनाई जाती है और जिसको गुड़ में बनाकर आनंद से खाया जाता है। आखा तीज का पर्व हमारे झाबुआ में सदियों से चला आ रहा है। ऐसे में किसान भाई आखा तीज का पर्व मनाकर सेवाया मीठा खाकर उसके बाद अपने खेत को तैयार करना शुरू कर देते हैं। आखा तीज के बाद किसान भाई अपने खेत की तरफ रुझान लेते हैं और देखते हैं कि खेत में क्या क्या तैयारी की जाए, अपने खेत में कौन से ट्रैक्टर से खेत को जोता जाए या बैल से जोता जाए, कचरे पत्थर भी रहता है कूड़ा कचरा, उसको बीन कर खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं और बारिश के मौसम की तैयारी में आखा तीज के बाद लग जाते हैं। जैसे ही आखा तीज पूरी करेंगे उसके बाद गांव के किसान भाई हल जोतकर या ट्रैक्टर से अपना खेत तैयार करेंगे। और किसान भाइयों, मैं रेडियो टंटे भील सामुदायिक स्टेशन झाबुआ की आवाज की तरफ से बताना चाहता हूं कि कार्यक्रम खेतीबाड़ी में अपने घर पर हर रोज सुने और उसका पूरा फायदा उठाए। ये कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है और इसमें हम नई नई जानकारी लेकर आते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई घर बैठे अपने रेडियो टांटे भील सामुदायिक स्टेशन के माध्यम से सुन सकते हैं और नई नई योजनाएं और अपनी खेतीबाड़ी को उन्नत बनाने की और विकास करने में जो भी स्कीम होती है, जो भी योजना होती है और खेती करने का तरीका और अपने खेत में क्या क्या लगाया जाए, बीज दवाई, इसके बारे में हम रेडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई हमेशा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। तो हमारा रेडियो सुनते रहिए और हमसे चर्चा कीजिए। हमारे फोन नंबर है 94251-36-03 और हमारा पता है चेतना हाई स्कूल गढ़वाड़ा परिसर झाबुआ। इस पर हमें कार्यक्रम के बारे में जरूर संपर्क कीजिए। और अभी जाते जाते हम आपको सुनवाते हैं बिल्ली गाने और बिल्लू गानों का आनंद लीजिए और आखा तीज का पर्व का आनंद उठाइए। किसान भाइयों,
1: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: कहीं तो प्यारे किसी किनारे मिल जाओ तुम अंधेरे उजाले।
2: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो अपना परिचय दें।
3: जी नमस्कार, मेरा नाम है अर्चना अर्चन और मैं एक पत्रकार हूँ, एक कवित्री हूँ, लेखिका हूँ और उसके अलावा अपने बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि मैं भविष्य में एक अच्छी उपन्यासकार भी हो सकती हूँ, क्योंकि कुछ मैं लिखने में लगी हुई हूँ इस समय और इतना काफी है मुझे लगता है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
3: अब शुक्रिया।
2: हमारे दोस्तों के लिए कौन सा गीत अपनी पसंद का आप लेके आई हैं आज?
3: एक पुराना गीत है, बम्बई का बाबू फिल्म का, दीवाना मस्ताना हुआ दिल।
2: क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया। तो लीजिए दोस्तों, अर्चना जी की पसंद का ये पहला गीत आपके लिए पेश है।

0: अर्चना जी, आपका जन्म स्थान क्या है, उसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दीजिए।
1: जी, मेरी पैदाइश कानपुर की है, उत्तर प्रदेश की। फेमस शहर है कानपुर, बहुत सारी फिल्मों का बैकड्रॉप कानपुर हो चुका है। तो कानपुर के बारे में काफी लोग जानने लगे हैं अब। और स्पेशली अगर मैं रोचक बात कहूँ तो कानपुर में लोगों की रंगबाजी जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: बात करने का स्टाइल और हम कह के जो एक बात करने का तरीका होता है ना, तो वो सबसे ज्यादा रोचक है वहां का, कानपुर का। जी,
0: तो अर्चना जी, हमारे लिए कौन सा गीत सुनाएंगी आप?
1: कश्मीर की कली फिल्म का।

0: अर्चना जी, अभी आप कहाँ रह रहे हैं और उस जगह के बारे में क्या कुछ रोचक है?
1: मैं अभी फिलहाल पिछले बीते 25 सालों से नागपुर में रह रही हूँ, रोजी रोटी के सिलसिले में। तो यहाँ बस गई हूँ तो बहुत, अब तो शुरू में नहीं लगता था पर अपनापन लगने लगा है। अब बहुत अच्छा शहर है, साफ सुथरा शहर है, ग्रीनरी काफी है, हरियाली आपको नजर आएगी। और जो मुझे अच्छी, ज्यादा अच्छी बात लगती है वो महिलाओं के लिए काफी सेफ शहर है, क्योंकि अपने काम के सिलसिले में अक्सर मैं रात में 12 बजे 1 बजे तक भी लौटी हूँ, घर अकेले लौटी हूँ, मुझे काफी सेफ लगता है।

0: और मैं जब शुरू में आई थी यहाँ पे तो यहाँ पे क्राइम का नामो निशान नहीं था। अब समय के साथ तो खैर सभी जगह बढ़ गया है, पर इस लिहाज से मुझे काफी कम है क्राइम भी यहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है शहर।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ये संयोग की बात है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ जहां आप पैदा हुई और जहां आप रह रही हैं, कान से बस नाक तक ही आना हुआ आपका।
0: जी,
1: कानपुर से नागपुर तक ही आए आप।
0: जी,
1: चलिए तो हमारे दोस्तों को कुछ बढ़िया सा गाना सुनवा दीजिए।
0: मुझे पसंद है क्रिमिनल फिल्म का तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
1: बहुत सुंदर, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: अर्चना जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं और कब से हैं?
1: जी जी, मैंने पत्रकारिता शुरू की थी 95 में। मैंने कानपुर में दैनिक जागरण में काम किया। उसके बाद रोजी रोटी का ही जो था मुझे यहाँ ले आई नागपुर में। यहाँ पे मैं 1999 से हूँ और अभी मैं पत्रकार हूँ, न्यूज एडिटर हूँ लोकमत ग्रुप में
0: जी।
1: और इसके अलावा मैं मुझे जो पसंद है, मैं लिखने पढ़ने में ज्यादा ध्यान रहता है मेरा
0: जी।
1: और जी जी, और खबरों में, खबरों के बारे में सजग रहने में और अपने विचार रखने में भी मुझे आनंद आता है।
0: तो अब कौन सा गीत है आपके पास हमारे सुनने वालों के लिए?
1: जी, बहुत बहुत पसंदीदा गाना है एक नजर फिल्म का, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं।
0: चलिए तो फिर इसी गीत को सुनते हैं।

0: अर्चना जी, आपका सबसे पसंदीदा गायक या गायिका कौन है और क्यों?
1: पसंदीदा गायक वैसे तो बहुत से हैं, पर सोनू निगम मुझे बहुत पसंद है,
0: जी
1: और उसकी वजह ये है कि बहुत वर्सेटाइल है वो। भजन भी गाते हैं। अभी मैंने महाराजा फिल्म देखी, उसमें एक भजन था उनका, वो भी बहुत खूबसूरत था।
0: जी
1: रॉक भी गा देते हैं वो, कुछ कुछ भी गाना वो बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, और आवाज उनकी मुझे बहुत पसंद है।
0: क्या
1: जी
0: बात है। तो कौन सा गीत सुनवा रहे हैं अब?
1: अब उसमें तो चूज करना थोड़ा मुश्किल है, सोनू निगम का गाना ही सुनवाना चाहूंगी मैं,
0: जी,
1: तो तेरा जादू चल गया, इसी फिल्म से। तेरा
0: तेरा जादू चल गया। किस फिल्म से? अच्छा,
1: जादू चल गया मतलब ये थी वो टाइटल सॉन्ग है।
0: ओके ओके ओके। लीजिए दोस्तों, इसी गीत को सुनते हैं जो अर्चना जी का पसंद है।

0: अर्चना जी, अगला सवाल मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा अगेन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, कि आपका सबसे पसंद का गीत कौन सा है और क्यों?
1: अच्छा, पसंद के गीत बहुत सारे हैं, पर आप जब क्यों लगा देते हैं सवाल में तो मुझे चूज करना पड़ेगा। गीत है स्वदेश फिल्म का गाना यूं ही चला चल रहा ही, और पसंद इसलिए है कि इसका मैसेज बहुत अच्छा है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, खुशियां कैसे जीवन में ढूंढ लेनी चाहिए
0: जी।
1: और मुसीबतों से या समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, इस तरह से बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छा गाया गया है गाना।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या यही गीत आप हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आइए दोस्तों, स्वदेश फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

0: अर्जुना जी, आपकी हॉबीज क्या हैं? थोड़ा सा उनके बारे में बताएं।
1: जी, मैंने जैसा कि बताया आपको कि मैं लिखना लिखने पढ़ने की शौकीन हूँ। मैं कविताएं पढ़ती हूँ, मैं गजलें कहती हूँ और मंच पर भी जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो ये मेरा फेवरेट काम है। मतलब कभी भी खाली समय हुआ तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ नया लिख सकूँ। और इसके अलावा मुझे थोड़ा सा कुकिंग का भी शौक है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ पर खाना बनाना मुझे पसंद है।
0: तो दोस्तों, आज हमारी अर्चना अर्चन जी जो कि एक शायरा हैं, उनसे बातचीत हो रही है। तो मैं अर्चना जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि या तो अपना कोई एक शेर पढ़ दीजिए या कोई एक नज्म सुना दीजिए।
1: कवियों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप उनको आप लिमिट में नहीं रख सकते। आप कहें कि एक शेर पढ़ दीजिए, थोड़ा जाती हो जाती है ये। तो मैं एक गजल के दो तीन शेर बस कहूंगी जल्दी से कि दूर तक परवाज भरना चाहती हूँ
0: जी,
1: दूर तक परवाज भरना चाहती हूँ, एक दफा हद से गुजरना चाहती हूँ, चाहती हूँ मौत से नजरें मिलाना और वो समझता है कि मरना चाहती हूँ। और बहुत खूबसूरत शेर है, ध्यान दीजिएगा, कि जिंदगी को भरते भरते गुल्लकों में, जिंदगी को भरते भरते गुल्लकों में थक चुकी अब खर्च करना चाहती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत
1: शुक्रिया,
0: बहुत बहुत सुंदर। अब खर्च करना चाहते हैं, क्या बात है। तो कौन सा गीत सुनवाएं हम अपने दोस्तों को? अब
1: ये सुर फिल्म का है, आ भी जा ए सुबह आ भी जा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लीजिए दोस्तों, इस गीत को सुनते हैं।

0: अर्चना जी, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल मैं आपने से पूछना चाहूंगा जिसका आप कंफर्टेबली जवाब दीजिएगा कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगी कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: देखिए, कुछ चीजें तो मैं बता सकती हूँ। आप कह सकते हैं कि वरिष्ठ पत्रकार है, कवित्री है, गजलकारा है, और इसके अलावा आप चाहें तो जितनी भी तारीफ आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। हाँ, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। मैंने अभी पिछले 2 साल पहले एक लंबे अरसे के बाद अपने बेटी की उम्र के बच्चों के साथ मास्टर्स किया मास्कॉम में, और मैंने गोल्ड मेडल भी जीता है।
0: क्या बात है
1: जी। अभी मैं सीखने में लगी रहती हूँ। मैंने फ्रेंच सीखी, मैंने स्पेनिश सीखी, बेसिक नॉलेज। मैंने अभी कुछ दिन पहले भरतनाट्यम की क्लास ज्वाइन करने का सोचा था, पर किन्हीं कारणों से अभी टल गया है फिलहाल। तो मैं सीखने में बहुत विश्वास रखती हूँ और मुझे पसंद है नई नई चीजें सीखना। आप इस तरह से परिचय दे सकते हैं मेरा।
0: सुंदर सुंदर। तो चलिए फिर हमारे दोस्तों को ही एक गाना सुनवाइए।
1: ये हंसते जख्म फिल्म का एक गाना है कि तुम जो मिल गए हो।
0: वाह,
1: तो ये लगता है।
0: ठीक है, आइए दोस्तों इस गीत को सुनते हैं।

0: अर्चना जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप हर दिन अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए क्या करती हैं? ऐसा क्या है जो बस आपको खुश कर देता है और आप पूरे दिन उसी एनर्जी में काम करती रहती हैं?
1: जो मुझे खुश कर देता है वो है मेरी बेटी के चेहरे पर स्माइल। बहुत दूर रहती है मुझसे, पिछले करीब 2.5-3 साल से वो कनाडा में है और एक ही बेटी है मेरी, तो सुबह शाम उससे वीडियो कॉल जब होती है तो अगर मैं मुझे उसके चेहरे पे शरारत या स्माइल दिख जाती है तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और मैं हमेशा हमेशा उसको मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। उसी के लिए मैं कोशिशें करती रहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ तो वो मुस्कुरा के बात करे मुझसे।
0: बहुत सिंपल सी बात है और कितनी खूबसूरत बात है, और सारा दिन आपका एनर्जी के साथ गुजरता है, कितना सिंपल है। तो दोस्तों, अर्चना जी से गुजारिश करूंगा कि अपना अगला भी गीत बताएं जो हम आपके लिए बजाएंगे।
1: जी, ये घर फिल्म का एक गाना है कि आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राग है।
0: बिल्कुल ठीक, लीजिए दोस्तों, पेशे खिदमत है।

0: अर्चना जी, अब वक्त आ गया है जब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए कुछ संदेश दें।
1: मुझे लगता है लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। इतने सारी समस्याएं हैं, इतने सारे टेंशन है, तो अपने आप को भरपूर पॉजिटिव रखें और उसके लिए ऊपर वाले पर, ईश्वर पर विश्वास रखिए। वो जो करेगा अच्छा करेगा।
0: थैंक यू सो मच अर्चना जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
1: आपका भी
0: आपके
1: बहुत शुक्रिया।
0: जी, आपके गीत सुनकर, आपकी बातें सुनकर लोगों को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: लेकर हम दीवाना दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

नमस्कार श्रोताओं, रेडियो की इन मधुर तरंगों पर आप सभी का स्नेह भरा स्वागत है। संगीत जो शब्दों को एहसास देता है और खामोशी को भी आवाज। आज के हमारे कार्यक्रम आज के कलाकार में हम मिलेंगे उन गायकों और संगीतकारों से जो हिंदी गीतों में आज के जमाने की धड़कन भर रहे हैं, कभी मीठे सुरों में तो कभी सच्चे जज्बातों में। आइए शुरू करें सुरों के इस सफर पर, चलें जहां हर गीत कुछ कहता है और हर धुन दिल से बस जुड़ जाती है। स्वागत है आपका।

0: लीजिए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सौंधा सौंधा सा आज के कलाकार को लेकर मैं हाजिर हूं। आज जो टैलेंट, आज जो प्रतिभा, आज जो कलाकार, जो गायक हमारे साथ हैं, उनकी बातचीत सुनिए, उनके व्यक्तित्व को जानिए, आपको लुत्फ आ जाएगा साहब, मजा आ जाएगा। मेरे साथ हैं गोविंद राज जी। बाकी मैं गोविंद राज जी से ही पूछूंगा, क्योंकि मैं उनके बारे में बताऊं वो खुशबू नहीं आ पाएगी। गोविंद राज जी अपने बारे में बताएंगे तो हमें कुछ बेहतर समझ में आएगा। गोविंद राज जी, आपका बहुत बहुत आभार। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। प्लीज हमारे सुनने वालों को, जो आज आपके फ्रेंड्स फैंस बनने वाले हैं, उनके लिए अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, भला कौन है आप?
1: श्योर। पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि गोविंदराज, हालांकि मेरे पेरेंट्स ने रखा नाम गोविंदराज, पर ऑलमोस्ट मेरी जिंदगी में कॉलेज के टाइम में एक निकनेम जो जुड़ा है मेरे साथ, दैट वो अटका है मेरी जिंदगी में। आई हैव यूज्ड इट इन माय एंटायर कॉर्पोरेट लाइफ एंड इट्स कॉल्ड गोचा, GOCHA।
0: गोचा
1: एक ब्रांड भी बन गया मेरे लिए। तो जिधर भी हो, तो एंड आई वॉज इन द IT।

0: बहुत ही प्यारी शुरुआत और अमेजिंगली अमेजिंगली गुड स्टार्ट। चलिए,
1: थैंक यू सर।
0: गोविंद राज जी, जैसे आपने कहा कि अभी कोविड के दौरान आपको ये महसूस हुआ कि गोविंद 2.0 इज आल्सो अवेलेबल एंड अभी तक आपने उसे एक्सप्लोर नहीं किया था एंड देन यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग इट, यू नो। ये चीज दरअसल पर्सनली मेरे को बड़ी इंस्पायरिंग लग रही है सर, क्योंकि ठीक है बहुत समय से बातचीत कर रहा हूं, वॉइस ओवर कर रहा हूं और आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, बट आप लोगों से इतनी जलन होने लगी है मुझे, क्योंकि आप इतना अच्छा अच्छा गाते हो, तो मेरे को लगता है कि व्हाई नॉट, अभी आपने जो टर्म दिया उसी को यूज कर रहा हूं, व्हाई नॉट समीर 2.0।
1: एब्सोल्युटली।
0: एनीवेज, मजाक अलग सर, आई एम नॉट अ सिंगर, बट आपने जो गायकी की शुरुआत की, आपको जो इंटरेस्ट आया संगीत में, म्यूजिक में, क्या वो कोविड के दौरान से ही आया या उससे पहले से था?
1: पहले अंदर था, बाहर नहीं आया था। आई वॉज नॉट इवन ए बाथरूम सिंगर, पर फिलहाल मैं बहुत बहुत हिंदी फिल्में देखता था, बहुत हिंदी फिल्में इन द कॉलेज स्कूल डेज, ऑलमोस्ट लॉर्ड ऑफ द शमी कपूर एंड दैट एरा का फिल्म बहुत देखा था। सो गाना तो अंदर था, तो आई थिंक कोविड वॉज अ कैटलिस्ट ये सब बाहर लाने के लिए।
0: ओके।
1: एंड फिर घर पे यार बिना काम का बैठा ही था, तो मौका भी था, एंड देन somebody told me that मेरा गाना करके एक प्लेटफॉर्म में ट्राई कर लो।
0: ओके।
1: ट्राई किया।
0: ओके। एंड देन सडनली यू फाउंड कि अरे वाह, दिस इज वन थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू एंजॉय।
1: यस। और मैं उस दिन से शुरू, दैट वाज अराउंड 2020, राइट? तो तब से शुरू करके ए, हर दिन मैं गाना ये ऐप में रिकॉर्ड करके यूज पब्लिश इट टू ऑल माई फैन फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड वेलविशर्स।
0: ओके।
1: एवरी डे वन आई यूज टू कॉल इट द ब्रेकफास्ट सॉन्ग, उत्तर बातम सॉन्ग।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर 3 years, आई डिड दैट।
0: ओप्स। अच्छा, देखिए दोस्तों, ये बड़ी खूबसूरत बात गोविंद जी ने बताई है कि सिर्फ 3 सालों की ये म्यूजिकल जर्नी क्या खूबसूरती से हमारे सामने एक टैलेंट को लेकर आई। मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्त आप शुरू करें, और पीछे में कुछ इंटरव्यूज में ये भी बात हो रही थी कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। तो गाना यानी कि म्यूजिक एक ऐसी

0: मेडिटेशन है, एक ऐसी पूजा है जो हमें एक लेवल ऊपर लेके जाती है।
1: Yes,
0: बहुत बढ़िया, अमेजिंगली ब्यूटीफुल गोचा साहब। तो चलिए,
1: थैंक यू,
0: पेश करें आपका ही गाया हुआ एक बेहद खूबसूरत सा नगमा जो हमारे सारे दोस्तों को हिला के रख देगा। लीजिए, पेश करते हैं।
1: जरूर जरूर।

0: ब्यूटिफुल। अब आपको थोड़ा सा और बेहतर जानते हैं गोचा साहब, 3 साल हुए, चलिए मैं मानता हूं 2 साल और पीछे ले लीजिए क्योंकि आपका 2.0 कहीं छुपा हुआ था। ऐसा कौन सा गीत है, ऐसा कौन सा सॉन्ग है, गाना है जो आपके यू नो पूरी पर्सनालिटी को, आपकी चरित्र को, आपकी शख्सियत को डिस्क्राइब करता है? जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपको इजी हो जाएगा, पर्सनली मैं अपने बारे में कहूं तो आजाद फिल्म जो धर्मेंद्र के ऊपर फिल्माई गई थी उसका जो गाना है राजू चल राजू अपनी मस्ती में तू, मैं उससे बहुत रिलेट करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि दैट सॉन्ग एक्चुअली डिस्क्राइब्स मी। तो आपका कौन सा सॉन्ग है जो आपको डिस्क्राइब करता है?
1: गुड क्वेश्चन। मेरा मकसद जिंदगी पूरा रहा कि मैं भी खुश रहूं, मेरे आजू बाजू में जो भी है उसको भी खुश देखना चाहता हूं। तो एंड एंजॉय लाइफ, वो मेरा फिलॉसफी था। तो सॉन्ग्स अराउंड जिंदगी इज व्हाट, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, ऐसा गाना यू नो दैट डिफाइंस मी आई गेस, एंजॉय लाइफ।
0: ओके दैट्स ब्यूटीफुल। सो दोस्तों देखिए, I had been trying to create a know yourself Google form for somebody, और उसमें बड़े सारे सवाल मैंने पूछ डाले और उसके बाद मैं सोचता रहा कि अगर मैं इन क्वेश्चंस का जवाब दूं तो क्या निकलेगा, तो मेरे को बड़ी देर तक सोचना पड़ गया बिकॉज मैंने अपने बारे में कभी ध्यान से सोचा ही नहीं था। तो इसीलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने डाल देता हूं कि एक बार आपको सोचने का तो मौका मिल जाए, मजबूरी में ही सही अपने को जान पाए हम, तो वेरी नाइस। संगीत है, गाने हैं, हमसे रिलेट करते हैं। चलिए आप सोचिए, आपका कौन सा सॉन्ग आपके चरित्र को डिफाइन करता है, बताएं या ना बताएं, तब तक एक प्यारा सा गीत पहले सुन लेते हैं गोचा साहब की आवाज में।

0: amazingly beautiful.
1: Thank you, sir. Thank you. Good that you're liking it.
0: गुजर साहब, मुझे ये बताइए, पहला सॉन्ग कौन सा था जो आपने रिकॉर्ड किया?
1: है पहला ये मेरा गाना वाला फेस आई डोंट हैव मच मेमोरी बिकॉज वो एज ट्रायल एंड एरर था. व्हेन आई गॉट ऑन टू स्म्यूल द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई रिकॉर्डेड वाज मेरे नैना सावन बाग.
0: हाँ, मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर की किसी भी, चाहे वो स्टार मेकर हो चाहे स्म्यूल हो, जिधर पे भी आपने रिकॉर्ड किया, तो पहला सॉन्ग था मेरे नैना सावन भादो. वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल. अगेन पर्पस यही था सर कि आपने जहां से शुरुआत की, जो पहला स्टेप आपने उठाया था, उसे हमें कभी भूलना नहीं है सर, उसे याद रखना.
1: आई
0: मीन दैट वाज सो ब्यूटीफुल सॉन्ग जिसने आपकी इस जर्नी की शुरुआत कर दी. अमेजिंग. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ें. लीजिए, पेश करता हूं एक और प्यारा सा गीत को जसाब की ही आवाज में.

0: बहुत सुंदर। जर्नी की बात करें गोचा साहब, तो ठीक है, 4-5 साल की जर्नी हो गई या 3 साल की जर्नी हो गई कह लें संगीत में। ओके, आप पहले टॉडलर थे, फिर जल्दी से बड़े हो गए, फिर आप दौड़ने लग गए हैं संगीत में, तो सबसे ज्यादा चैलेंज कहां पर आया जब से आपने शुरू किया से लेकर आज तक में? व्हाट चैलेंज यू फेस्ड इन सिंगिंग?
1: ओके, पहले पहले पहले पहले पहले वाला चैलेंज था कि खुल के गाओ। सब लोग बोलते हैं अरे खुल के गाओ, खोल के गाओ, क्या है वो, एक क्या है खुल के गाओ? Nobody is able to, you know, define it to me. It's not a formula कि ऐसा करो कर। तो मेरा एक दोस्त था, he encouraged me a lot in singing. He said, Gocha, you got a voice to sing, you should sing. I asked him, बस ये खोल के गाना क्या है? He said, just lock yourself in a room. सोचो कि और कोई नहीं आजू बाजू में, और फिर बिंदास गाओ।
0: Okay, बस।
1: And that's all I did. I mean, if you believe it, you know, that's all I did. चार पांच गाने करने के बाद I got the knack how to do that open singing.
0: Okay.
1: Then I realized, अच्छा ये होता है. If I sing, oh, मेरे नैना सावन भादो, for example, I can sing, मेरे नैना सावन भादो versus मेरे नैना सावन भादो. तो आई फाउंड दोस डिफरेंसेस एंड आई सेड हाँ हाँ ये है.
0: वाओ,
1: सो दैट इज द फर्स्ट चैलेंज. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव डिफरेंट पड़ाव एज यू गो थ्रू सिंगिंग, यू नो, हाई पिच कैसे पकड़ना है, टाइमिंग कैसे पकड़ना है, ब्रेथ कैसे कंट्रोल करना है, एंड फाइनली व्हेन यू गेट ऑन टू द स्टेज इट्स टोटली अलग सा बॉल गेम है उधर. बिकॉज ऑडियंस में जान पहचान का बहुत लोग होंगे, वो दे आर लुकिंग एट यू, यू कैनॉट फेल, यू नो, सो दैट प्रेशर इज समथिंग एल्स विच आई लव.
0: क्या बात है, क्या बात है. मैं दोबारा से कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे को देखिए, मैं अपने को इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आई एम रिप्रेजेंटिंग यू. आप लोगों की बातचीत मैं यहां पर गोचा साहब से कर रहा हूं, तो मुझे तो एक जबरदस्त मैसेज मिला है अभी अभी जो गोचा साहब ने बताया कि खुल के गाइए. इन्होंने अपने दोस्त से पूछा ये खुल के गाना क्या होता है, फिर इन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अपने को दबाइए मत, ठीक है ना, दरवाजा बंद कीजिए और चीख चीख कर गाइए कोई भी गाना जो ऐसा हो, तो वो आपकी आत्मा को, आपकी शख्सियत को खोल के रखेगा. आपको मालूम पड़ेगा कि कहां आपको गाना है, क्या आपको गाना है. वेरी वेरी ब्यूटिफुल टिप विच यू हैव गिवन मी फॉर ऑल द न्यू सिंगर्स और जो लोग सोच रहे हैं सिंगिंग शुरू करने के लिए. उनके लिए एक पैरागॉन हो गए आप, उनके लिए आप रोल मॉडल हो गए गोविंद जी. तो आइए दोस्तों, और बहुत सारे सिंगर्स का इंतजार करते हुए आगे बढ़ते हैं. और गोचा साहब ने जो सॉन्ग हमारे लिए रिकॉर्ड किया, उसे सुनते हैं.

0: बहुत खूब, आपको और बेहतर समझते हैं, आपकी लाइकिंग, आपकी हॉबी, आपकी पसंद को और समझते हैं, क्योंकि सिंगिंग इज योर लाइकिंग, सिंगिंग इज योर हॉबी कह लीजिए. सो हाउ डू यू चूज अ सॉन्ग? आप कौन सा, किस तरीके का सॉन्ग पसंद करके उसे चूज करते हो कि ओके लेट मी प्रिपेयर दिस, इसको तैयार करता हूं, कैसे, हाउ डू यू चूज?
1: ओके, गुड क्वेश्चन. पहले आई यूज टू हैव आई वुड रैंडमली पिक एनी सॉन्ग बिकॉज शुरुआत है, कोई भी गाना गाऊं तो खुश होगा मैं. देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग दैट अरे ये गाना मैं गाया हूं ऑलरेडी, ये गाना किसी और ने गाया, तो लेट मी पिक समथिंग अलग सा. सो इट हैज बीन माय इंटेंट टू पिक समथिंग डिफरेंट व्हिच पीपल आर नॉट हर्ड. द सेम ओल्ड सॉन्ग्स वी कीप सिंगिंग पीपल मे गेट बोर्ड. सो इतने सारे गाना, हिंदी गाना है दैट वी कैन पिक अप एंड सिंग, वी शुड बी एबल टू पिक अप एनीथिंग एंड सिंग. सो आई वुड ट्राई टू पिक अप समथिंग पीपल आर नॉट नेसेसरली कि मुश्किल गाना, बट सुना नहीं गाना, ऐसा वाला गाना आई ट्राई टू पिक अप. एंड आजकल मैं क्या करता हूँ, आई हैव बीन मेंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑन माय फोन व्हिच आई डोंट नोट इट. किधर भी जाऊंगा मैं नोटिस करूंगा, अच्छा इसने ये गाना गाया, आई वुड नोट इट डाउन इमीडिएटली, तो मुझे ये गाना गाना.
0: Okay.
1: So I'm making that list. So that's, I go with that list these days.
0: All right. Isn't that beautiful? बहुत खूब दोस्तों. देखिए, यू नो, गोचा जी ने दरअसल एक एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझाया है कि हम गाने किस तरह से चूज कर सकते हैं. उन्होंने एक तरीका बताया है. आप अपना खुद का तरीका 100% ईजाद कर सकते हैं. एवरीबॉडी इज फ्री. कभी किसी गाने को सुनकर दिल से आवाज आ जाए कि नहीं बस सुन के मजा आ गया, बस यही गाना गाना है साहब, वो भी एक तरीका ठीक है. आप अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से किसी गाने को चूज करें कि आप सैड सॉन्ग्स गाएंगे, हैप्पी सॉन्ग्स गाएंगे, रोमांटिक सॉन्ग्स गाएंगे, गजल्स गाएंगे, तो आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से भी गाना चूज कर सकते हैं, जैसा गोचा साहब सजेस्ट कर रहे हैं. ब्यूटीफुल. मे बी ट्यून पर डिपेंड कर जाए, मे बी लिरिक्स पर. या
1: आई वांट टू ऐड जस्ट वन मोर थिंग.
0: प्लीज डू.
1: एज यू आर सेइंग, मैंने सोचा आप जैसे बोलते रहे हैं, आप ऐसा गाना चूज आपका जो पर्सनैलिटी के लिए फिट हो, मेलेडी वाला है या एक्शन वाला है, यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज दैट इज मोर सैटिस्फाइंग.
0: दैट इज वेरी राइट. दैट इज वेरी वेरी वेरी राइट. दोस्तों वही चीज तो गोचा साहब ने हम लोगों को सजेस्ट की, एंड दैट इज सो ब्यूटिफुल. आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने मैनरिज्म को, मे बी आप थोड़े से जोशीले हैं तो जोशीले वाले गाने, ओके वी कैन ऑलवेज डू दैट. एंड जरूरी नहीं है कि
1: सही पकड़ा आपने.
0: या बॉस, जरूरी नहीं है कि वन पर्टिकुलर सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार इज मोस्ट मोस्ट फेमस और सभी लोग उस गाने को गा रहे हैं तो मुझे भी गाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं. दोस्तों संगीत, गाने सभी बहुत प्यारे हैं. बहुत खूब, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक और गीत का मजा उठाते हुए, और बहुत जल्द गाना कंप्लीट हो जाने के बाद वापस आते हैं गोविंद जी के पास.

0: ब्यूटिफुल, बहुत खूब।
1: थैंक यू
0: गोविंद जी, जाहिर सी बात है हम लोग अभी नए नए सिंगर्स हैं, मतलब आप तो हैं ही हैं, मैं तो ट्राई कर रहा हूं, आई डोंट नो वेदर मैं हो पाऊंगा या नहीं, वो बात अलग है। हम लोग ट्रैवल करते हैं, घर में इधर उधर घूमते हैं, मे बी वॉशरूम में होते हैं और गुनगुनाते हैं। सो डू यू डू दिस, आपको लगता है ऐसा करना अच्छा लगता है कि आप वो एक रील देखी थी ना मैंने कि एक मेट्रो में एक आदमी कोई फोन पे देख रहा था ईयरफोन्स लगा के, एंड देन ही माइट बी वॉचिंग सम कॉमेडी एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग वेरी लाउडली, तो पूरी ट्रेन हंस रही है उसको देख देख के,
1: हंसने लगे। हाँ, देखो
0: डू यू डू दिस कि ट्रेन में गाना गाने लगे और सब लोग आपके साथ मिलके कोरस कर रहे हो?
1: अभी तक किया नहीं, बट
0: दैट्स अ गुड आइडिया,
1: मन के अंदर तो गुड आइडिया, डेफिनेटली गुड आइडिया है।
0: ओके,
1: ट्राई करना है नेक्स्ट बार, बट मन के अंदर तो गाना चलता रहता है। yes. जैसे कि आई डू अ लॉट ऑफ ट्रैवल, जैसे एज यू नो, एंड एज यू रीच द माउंटेन्स, नो ये पहाड़ी वाला गाना आता है ऑटोमेटिकली, बड़ा यू नो ऑटोमेटिकली आता है वो।
0: Absolutely.
1: सर, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि जोर से गाऊं, लेट्स सी कोरस आ जाएगी कि नहीं।
0: भाई देखो ऐसा है ना बॉस कि अभी इस उम्र में और इस टैलेंट के बाद तो कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला तो नहीं होगा, बस सिर्फ एक बोल्डनेस चाहिए, एक आउटगोइंग पर्सनालिटी चाहिए। तो मेट्रो में खड़े होकर आंखें बंद कर लीजिएगा और गाना शुरू कीजिएगा, देखते हैं थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद आंखें खोल के देखिएगा क्या लोग सुन रहे हैं या गा रहे हैं।
1: Yeah.
0: मजा आ जाएगा। I mean, it's so beautiful. Why not? पूरी जनता को साथ में लेकर चलने में भला क्या बुराई है?
1: कम से कम सबके चेहरे पे मुस्कान
0: तो आ ही जाएगी,
1: पक्का आ ही जाएगी।
0: That is so beautiful. I mean, सोचिए ना, how cute is that कि आप गा रहे हो मस्त होकर और लोग बाग मुस्कुरा रहे हैं, एक्चुअली दे वर लविंग यू। बड़ा सीन दोस्तों, सब लोग इमेजिन कीजिए अगर चारों तरफ ऐसा होने लग जाए ना, तो मेट्रो में ट्रैवल करना या मे बी ट्रेन में ट्रैवल करना या कहीं पे भी ट्रैवल करना कितना म्यूजिकल हो जाएगा। थिंक हाउ ब्यूटिफुल दैट वुड बी। चलिए एक बार फिर से हम झूमते हैं संगीत पर, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं कोचा साहब की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गोचा साहब, आपकी जर्नी तो बिल्कुल नई नहीं है, एंड यू आर गोइंग वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट, यू आर कवरिंग सो मच ऑफ अ ग्राउंड इन अ सो स्मॉल टाइम। तो मेरे को सलाह दीजिए ना, आई एम अ न्यू गाय, व्हाट शुड आई डू, हाउ टू गो दैट फास्ट, और क्या करूं, स्टेप वन टू थ्री बेबी स्टेप्स, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, प्लीज गाइड मी हाउ टू स्टार्ट सिंगिंग।
1: I think पहले तो हंगर होना चाहिए, assume that जिसको भी गाना गाने का शौक है तो हंगर है, तो बस वो बाहर लाना है। पहले आई थिंक पहले आप आपके लिए खुद के लिए गा सकते हो, गाओ, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम गाना गाने के बाद रिकॉर्डिंग को सुन ले कैसे लग रहा है, बिकॉज देन यू विल नो किधर किधर